0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, अरबी जबान में जब कोई शख्स बहुत ज्यादा सखावत और फयाजी का दावा करे तो

0: लोग मिसाल देते हैं हातिम तई। हातिम तई असल में एक तारीखी शख्सियत हैं, हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद तई, जो दौर जाहिलियत के मशहूर शायर और बेमिसाल सखी इंसान थे। उनका ताल्लुक मौजूदा सऊदी अरब के इलाके हाइल से था और उनका जिक्र न सिर्फ अरबी अदब में बल्कि तारीख इंसानी के सफहात में जूद व सखा की अलामत के तौर पर महफूज है। उनकी शोहरत ये थी कि वो शेर में भी फयाज थे और अमल में भी। उनकी दयानत और फयाजी इस हद तक मशहूर हुई कि जब कोई अपनी सखावत पर नाज करे तो कहा जाता है, क्या तू हातिम तई है? हमारे यहाँ भी इस तरह के मुहावरे या फिर नाम इस्तेआरा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे दाता गंज बख्श। बहरहाल दोस्तों, याद रखिए, सखावत का असल मकाम वही है जो अमल से जाहिर हो, दावा नहीं बल्कि हकीकी अमल ही इंसान को हातिम तई बनाता है। इसीलिए आज भी जब कोई अपनी सखावत पर गुरूर करे तो कहा जाता है, अरे जितना भी तू कुछ कर ले, हातिम तई तो नहीं है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: wish can I do?
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम, आज हम एक ऐसी सिफत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी अजीम सुन्नत और सिफत है जो इंसान के किरदार को संवारती है, उसकी जबान को पाकीज़ा बनाती है, उसकी निगाहों की हिफाजत करती है, उसके रवैये में शाइस्तगी पैदा करती है और उसे हर बुराई से बचाने का जरिया बनती है। आज का मौजू है हया, जो मोमिन का जेवर है। आज के दौर में बाज़ लोग हया को कमजोरी समझते हैं, बाज़ लोग इसे एतमाद की कमी करार देते हैं और बाज़ तो ये कहते हैं कि अगर इंसान बाहया होगा तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन इस्लाम का तसव्वुर हया इन सब से मुख्तलिफ है। हया का मतलब है वो एहसास जो इंसान को बुराई, बेहयाई, बदतमीजी और गुनाह से रोक दे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया मिन अल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली कुंवारी लड़की से भी ज्यादा बाहया थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को नापसंद करते तो हम उसे आपके चेहरे के तअस्सुरात से पहचान लेते थे। सबने करम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ये नहीं था कि हर बात पर सख्त लहजा इख्तियार करें, हर गलती पर बुलंद आवाज में डांटे या हर मामले में लोगों को शर्मिंदा करें, बल्कि अगर कोई नापसंदीदा चीज देखते तो अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तअस्सुरात ही बता देते कि आप इससे खुश नहीं हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपके चेहरे को देखकर समझ जाते थे कि यह अमल पसंदीदा नहीं। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई दर्जे के बाहया थे, लेकिन जब अल्लाह की हदूद पामाल होती, किसी पर जुल्म होता या दीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं रहते थे, बल्कि हक बात पूरी वजाहत के साथ बयान फरमाते। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
2: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

जाए कुर्बान हम सौ दफा जाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन जो हैं वो लेते हैं, तो उससे बहुत सा फ़ायदा भी हो सकता है और खुदा नखास्ता ख़तरनाक भी हो सकती हैं। अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़िंदगी बचाती हैं, और अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से नुकसान होते हैं। बहुत सी जो गलत फहमियाँ हैं कि आमतौर पर समझा ये जाता है कि अगर ज़रा भी दर्द आप महसूस करते हैं तो फौरन पेन किलर ले लीजिए, लेकिन हर वक्त जो पेन किलर से वो फ़ायदा नहीं देते, और ख़ास तौर पर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लेना या ख़ुद से ही ले लेना, या ये समझना कि किसी और शख्स ने उसे इस्तेमाल किया है तो उसे फ़ायदा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों की जो अद्वियात हैं वो ज़्यादा या कम लेना ये भी ख़तरनाक हो सकता है। यानी जितनी जो दवा है वो दी गई है आप उतनी ही दीजिए, और डॉक्टर के मशवरे से। इसी तरह जो सबसे महफूज तरीका वो ये है कि डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई भी मेडिसिन आप ना लीजिए, और उसके कब टाइमिंग्स हैं और जो करेक्ट डोजेज है उसका ख़ास ख्याल रखिए, और जो ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स की हम बात करते हैं तो उसका कोर्स मुकम्मल कीजिए। अगर 5 दिन की दी है, 7 दिन की दी है, या जितने भी दिन की दी है, वो बेहद ज़रूरी है। बहुत अहम बात यह है कि दूसरों के मशवरे से कोई भी मेडिसिन ना लीजिए। या आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं और देखते हैं कि वो बहुत फ़ायदेमंद है बताया जा रहा है, तो वो भी नुकसान दे सकती है। या फिर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार ले रहा है तो उसके तजुर्बे से भी आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना कीजिए, और हमेशा डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से आप बिल्कुल मशवरा किए बगैर दवा कभी भी इस्तेमाल ना कीजिए। तो हमेशा, या मेडिसिन जो भी हम ले रहे हैं वो हमेशा अपने जो नॉलेज है और ख़ास तौर पर डॉक्टर की इजाज़त से आप लीजिए, अफवाह या फिर तजुर्बे से नहीं। यानी अब कहा जाता है कि ये जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रही है, तो आप वो मेडिसिन आप ना लीजिए, इससे नुकसान हो सकता है, और फिर सेहत है तो भी जहान है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे हमाद अली अल हंजब के बारे में। हमाद अली अल हंजब कतर के उभरते हुए स्विमर्स में से एक हैं जिन्होंने मुख्तलिफ रीजनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अपनी काबिलियत का इजहार किया है। बचपन से ही उन्होंने पानी के खेलों में दिलचस्पी ली और बाद में स्विमिंग को अपना मुस्तकबिल बनाने का फैसला किया। हमाद की पहचान उनकी सख्त ट्रेनिंग, मजबूत इरादे और कॉन्फिडेंस है। वो मुख्तलिफ स्विमिंग इवेंट्स में कतर की नुमाइंदगी करते हुए कीमती तजुर्बा हासिल कर चुके हैं और अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। फिटनेस, बैलेंस, गिजा और रोजाना प्रैक्टिस उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। हमाद का मानना है कि हर एथलीट को जिस्मानी तैयारी के साथ साथ जहनी मजबूती भी इम्पोर्टेंट है। दोहा की जदीद एक्वेटिक फैसिलिटीज और प्रोफेशनल कोचिंग ने उनकी तरक्की में मदद की है। उनकी कामयाबियां और उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं कतरी स्विमर्स को काफ़ी मुतासिर किया है और वो मुल्क में स्विमिंग कल्चर को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आने वाले अरसे में उनसे मजीद बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और बैन अक्वामी सतह पर कतर का नाम रोशन करने की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: पूछ रही है मेरी जस्तजू,

0: 107. दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक.
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला. आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से अफराद जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना. अब नाश्ता दिन की सबसे अहम ग़िज़ा समझी जाती है. रात भर सोने के बाद हमारा जिस्म कई घंटों तक बगैर खुराक के रहता है. जैसे सुबह का नाश्ता जिस्म और दिमाग को दोबारा तवानाई फराहम करता है ताकि हम अपने दिन का आगाज भरपूर अंदाज में कर सकें. एक मतवाजन और सेहतमंद जो शख्स है उसे सेहत बख्श नाश्ता जो है वो ज़रूरी है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मादनियात जो हैं वो होते हैं, और ये ग़िज़ाई अज्जा हमारी जो दिमागी कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने, याददाश्त को ज़्यादा करने और हमारी जो कंसंट्रेशन है या तवज्जो है उसे मरकूज कर रखने में मदद देते हैं. यही वजह है कि जो अफराद बाकायदगी से ब्रेकफास्ट करते हैं वो दिन भर ज़्यादा चुस्त रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं. ब्रेकफास्ट छोड़ देने से थकन, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. इसके अलावा आपको बाद में शदीद भूख लगने की वजह से फिर हम गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने का जो इरादा वो कर लेते हैं और उसका रुझान भी ज़्यादा होता चला जाता है. जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है उसमें एग हैं, उसमें ब्राउन या फिर होल व्हीट ब्रेड है, इसके अलावा पोरिज है, ताज़ा फल हैं, दही के साथ आप नट्स हैं वो ले सकते हैं, इसी तरह लो फैट जो दूध है या सीरियल वो आप ले सकते हैं, ताज़ा जो फ्रूट्स हैं उनकी स्मूदी बनाकर लिए जा सकते हैं. ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देर तक हमें फुलनेस का यानी पेट भरने का एहसास दिलाता है. बच्चों और नौजवानों के लिए नाश्ता ख़ास तौर पर बेहद अहम है क्योंकि इनके जिस्म और दिमाग नशोनुमा के मराहिल में होते हैं, और एक अच्छा नाश्ता उनको जो सीखने की सलाहियत है वो ज़्यादा करता है और इसी तरह कंसंट्रेशन में भी इजाफा करता है. और अगर आप सुबह मसरूफ़ होते हैं तो रात को ही अब नाश्ते की कुछ तैयारी कर लीजिए ताकि सेहतमंद इंतखाब आसान हो जाए. याद रखिए नाश्ता सिर्फ एक खाना नहीं है बल्कि आपके हमारे जिस्म और दिमाग के लिए तवानाई का अहम जरिया है.
0: आप सुन रहे हैं FM 107. FM 107. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी host.

डिजिटल टूल समझते हैं जो कि ठीक भी है. एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कमांड्स फॉलो करता है. हम सिरी से सवाल पूछ लेते हैं, एलेक्सा को म्यूजिक प्ले करने के लिए कह देते हैं, चैट जीपीटी से हम आंसर्स ले लेते हैं. लेकिन सोचिए अगर 2030 तक एआई सिर्फ एक असिस्टेंट ना रहे बल्कि एक रियल कंपेनियन बन जाए, एक दोस्त जो आपको समझे, आपके साथ ग्रो करे और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो कैसा लगेगा? सोच के थोड़ी सी उलझन होती है. लेकिन फ्यूचर का एआई सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो एंटिसिपेट भी करेगा. मतलब आप बोलने से पहले ही वो समझ जाएगा कि आपको चाहिए क्या. एआई कंपेनियन, जी हाँ, एआई कंपेनियन का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, एआई कंपेनियन असल में एक इंटेलिजेंट सिस्टम होगा, आपकी आदतों को समझने के लिए, आपके रूटीन को ट्रैक करे, आपके इमोशंस को आइडेंटिफाई करे और उसके मुताबिक रिएक्ट करे. ये एआई सिर्फ डेटा पर काम नहीं करेगा, ये इंसान की तरह इंटरैक्ट करेगा. अगर आप रोज सुबह एक ही वक्त उठते हैं तो एआई आपका अलार्म उससे पहले ही एडजस्ट कर देगा ताकि आप नेचुरली उठ सकें. अगर आपका दिन हेक्टिक हो, AI ऑटोमेटिकली आपके स्केड्यूल में ब्रेक्स ऐड कर देगा जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सके. फ्यूचर का जो AI है वो सिर्फ लॉजिक पर बेस्ड नहीं होगा बल्कि इमोशंस को भी समझेगा. अगर आप सैड हो, एलेक्सा से बात करो तो वो आपको उसके जवाब देगा. लेकिन कल का AI आपकी टोन, आपकी आवाज और आपके बिहेवियर से समझ जाएगा कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में है. उसे बताने की भी जरूरत नहीं कि आप स्ट्रेस में हो. अगर आप थके हुए हैं, AI आपको रेस्ट सजेस्ट करेगा. अगर आप अपसेट हैं, तो AI कामिंग म्यूजिक आपके लिए प्ले करेगा. अगर आप एंशियस हैं, AI ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग सजेशंस आपके लिए देगा. ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि AI अब ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझने के करीब आ चुका है. दोस्तों, AI कंपेनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद अभी हमारे और आपकी सोच से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे अडॉप्ट करने ही है. कभी ना कभी AI को अपना कंपेनियन तो बनाना ही है. AI कंपेनियन सबसे ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट हेल्थ केयर में ला सकता है. सोचिए आपके पास एक AI हो जो आपकी हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है, आपकी जो स्लीप पैटर्न है उसे एनालाइज कर रहा है, आपकी डेली एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है. अगर सिस्टम को कोई अनयूजुअल चेंज नजर आता है तो फौरन आपको अलर्ट मैसेज भेज देता है. तो ये सारी चीजें कितनी अच्छी हो जाएंगी. अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए तो आप अनयूजुअल थकान फील करते हैं, AI डॉक्टर को नोटिफाई करेगा या ऐप को चेकअप के लिए सजेस्ट करेगा बिफोर इट कम्स सीरियस. इसका मतलब है कि फ्यूचर मेडिसिन ज्यादा प्रिवेंटिव हो जाएंगी, रिएक्टिव नहीं रहेंगी. हर चीज मॉनिटर करना, हर चीज देखना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल एस्पेक्ट है. AI कंपेनियन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक डिजिटल दोस्त जैसी फील कराएगा. लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, थॉट्स डिस्कस करेंगे. आज भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, लेकिन कल हो सकता है कि ये लोग अपने AI कंपेनियन से डायरेक्टली बात करें. क्या AI इंसान की जगह ले सकता है? ये सवाल हमारे जहन में बहुत बार आता है. जवाब है नहीं. AI सपोर्ट दे सकता है, लेकिन रियल ह्यूमन कनेक्शन का सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता पॉसिबल है. हर टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी होते हैं और उसके फायदे भी, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आपकी प्राइवेसी के इश्यूज तो क्रिएट करती है. वहीं AI क्या डिसाइड करेगा और कैसे करेगा, ये सोचना थोड़ा सा अभी के लिए डिफरेंट और डिफिकल्ट है. लेकिन हाँ, AI फ्यूचर, AI कंपेनियन जो है वो फ्यूचर तो है. ये मशीन इंसान के बीच में एक नया रिश्ता क्रिएट करने के लिए तैयार है. 2030 तक हो सकता है कि हम सिर्फ डिवाइस के साथ नहीं बल्कि डिजिटल कंपेनियन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं. ये कंपेनियंस हमारी हर जरूरत समझे, हमारी हेल्थ का ख्याल रखे, हमारी लाइफ को आसान बनाए. लेकिन साथ ही ये भी सवाल होगा, क्या हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी हमें? भारत, AI हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम किस तरह से इस पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं इसका पता नहीं. फिलहाल तो मेरा मकसद आपको डराना या घबराना या किसी तरह से टेंशन में लेकर आना नहीं है, बस कहीं ना कहीं आपकी सोच को और आपको जहनी तौर पे तैयार करना है टुवर्ड्स 2030.
जो कि फ्यूचर है।

0: है, साथ साथ ट्रेनिंग इस बात की भी कि किस तरह हम इन फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करें और यानी आग से कैसे निपटें, ये भी ये ट्रेनिंग का मसला है। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो फायर जो इमरजेंसी मखारिज जो हैं, तो ये निकलने की जगहों को भी हम काफ़ी यानी खुला रखना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, बाज़ औक़ात लोग यहाँ काफ़ी सामान वगैरह लाद कर रख देते हैं, चूँकि जगह मिली है तो इसको हमने वो बना दिया, अपना स्टोर रूम बना दिया, तो ये गलत हरकत है। आपने वो जो निकलने की जगह है इमरजेंसी कि तो उसको आप खुला रखें ताकि किसी भी हंगामे हाथ में इसका सही यूज़ किया जा सके। तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मेहमान से हमारी काफ़ी बाकी काफ़ी सारे सवाल और भी रह गए हैं। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट खलील राशिद अन्नौईमी हमारे साथ हैं, सिविल डिफेंस के इदारे आमा से इनका ताल्लुक़ है। तो एक छोटे से वक्फे के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरी विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: जो उसे हम ब्लैंकेट कहते हैं, कंबल कहते हैं उर्दू में, तो इसका इस्तेमाल है. तो फायर ब्लैंकेट ज़रूर होनी चाहिए यानी ये किचन में. तो इसका इस्तेमाल के हवाले से उन्होंने बताया कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर इसको आप ऊपर से लेकर आके, यानी फायर ब्लैंकेट को लेकर ऊपर से ऐसे कढ़ाई पर रख दें, तो ये हरकत सही नहीं. चूँकि उन्होंने कहा कि मुसलस से ट्रायंगल बताया है, ये ट्रायंगल काफ़ी अहम है आग को बुझाने के हवाले से. और इसमें एक तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हरारत और चिंगारी, यानी मादा काबिल इश्तेआल. तो ये तीन, ये ट्रायंगल है, मुसलस है. तो इस मुसलस में से अगर एक अंसुर भी यानी इसको हम रोक सकते हैं तो आग बुझ जाएगी. तो जैसा कि अगर आग वहाँ कढ़ाई में, कढ़ाई को ऑक्सीजन मिल रही, वहाँ जो आग लगी, आग को ऑक्सीजन मिल रही, तो आग बढ़ती जाएगी. तो इस वजह से हम अगर फायर ब्लैंकेट को इसका सही इस्तेमाल करें, और इसका मकसद ये है फायर ब्लैंकेट के इस्तेमाल से कि ऑक्सीजन को बंद करना. तो अगर हम इसको ऊपर से डालते हैं तो वो ऑक्सीजन को आप जमा कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बंद नहीं कर रहे हैं. तो ऊपर से नहीं डालना है, बल्कि इसको बाजू से, दाएं जानिब से, आप बाएं जानिब या सामने की तरफ से पीछे की तरफ, यानी आपको यानी ऊपर से नहीं इसको इस कढ़ाई पर डालना है, बल्कि आप दाएं तरफ से या बाएं तरफ से इसको ऐसे खींच कर लाइए कढ़ाई के ऊपर. तो ये है तरीका फायर ब्लैंकेट के इस्तेमाल का. तो ये मुसलस, इससे ऑक्सीजन को हम रोक देते हैं, तो साथ साथ आग को वो एनर्जी और तवानाई नहीं मिलती. तो मज़ीद बाज़ोकात ये फायर ब्लैंकेट मौजूद हो या ना हो, आप इसी जगह में दूसरी किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरीका वो होना चाहिए जैसे कि हमने कहा. दाएं जानिब से आप खींच कर ऊपर लाइए उस कढ़ाई के ऊपर, या बाएं जानिब से खींच कर लाइए. ये है तरीका. किसी दूसरी चीज़ से, यानी कोई आपके पास वहाँ लोहे की कोई चीज़ है या कोई ढक्कन है, इसको आप जलता हुआ तेल के ऊपर ऐसे दाएं जानिब से आप ऊपर रख दें कढ़ाई के ऊपर. तो चूँकि आग की चिंगारी, वो आग ऊपर उड़ रही होगी, लेकिन साथ जब आप उसको दाएं जानिब से ऐसे ऊपर रख देंगे ना, तो अपने आप बुझ जाएगी. तो ये है आग को बुझाने का, ओवरऑल वहाँ हंगामी हालत में इस सिचुएशन को हैंडल करने का. बाज़ औक़ात लोग ये सोचते रहते हैं कि पानी छिड़क दें, ये कर दें, वो कर दें. अब पानी छिड़कने से वो और भी आग उछलेगी और मामला संगीन होगा. तो वहाँ अपना कढ़ाई की आग, तेल की आग है, तेल की आग से निपटने के अपना तरीका है. वो पानी से छिड़कने से वो तेल की आग नहीं बुझेगी. और आग के मुख्तलिफ अनवा हैं, सिलसिले में हमारे मेहमान बेदिल्लाह ताला वो बताएंगे कि हमें कैसे मुख्तलिफ आग के जो वाक़ात पेश आते हैं तो उनसे हमें कैसे निमटना है. मज़ीद हम बढ़ेंगे अगले महवर की तरफ, टाइम बाकी नहीं है ज़्यादा, मुख्तसर वक्त है तकरीबन हमारे पास, अब 12 से 13 मिनट तक है. तो हम वही जो सवाल करेंगे जिसके, जिस मौजू पर हमारी अभी गुफ्तगू हो रही थी कि मुख्तलिफ आग के अनवा होते हैं, तो इसको इन अनवा से हम कैसे निमटें. जैसे कि हमें बताया कि हर एक नौ की आग से निमटने का तरीका अलग है. गलत फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तो आग बुझने के बजाय मज़ीद बढ़ सकती है, या यहाँ तक कि इस्तेमाल करने वाला शख्स भी मज़ीद ख़तरे में पड़ सकता है. तो चलें मेहमान से हम इस सिलसिले में वजाहत तलब करते हैं, देखें वो हमें क्या सिलसिले में रहनुमाई करते हैं. ساعه الملازمه اول خليل راشد النعيمي من الاداره العامه للدفاع المدني التابع لوزاره الداخليه بدوله قطر. ساعه الملازمه اول يلاحظ ان كثير من الناس يعتقدون جميع الطفايات الحريق تؤدي الغرض نفسه, يعني فكره ممكن يعني تكون عند الكل يعني موجوده هيك, لكن طبعا هناك انواع طفايات الحريق ومتى يستخدم كل نوع منها.
1: نعم,
0: يعني حبذا لو توضح لنا الفكره.
1: الطفايات أنواع, 4 أنواع عندنا من الطفايات, وكل طفاية لها استخدامها الخاص فيها. جميل. ما عدا طفاية واحدة اللي هي طفاية البودرة.
0: أوكي.
1: طفاية البودرة نستخدمها في جميع أنواع الحرائق.
0: حلو.
1: وما نستخدمها, يعني يفضل أن احنا نستخدمها في الأماكن المكشوفة, لكن إذا احنا اضطرينا أن احنا نستخدمها في الأماكن المغلقة, نكبس كبسة واحدة.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: कतर 2026, अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे। देखो साल अभी भी बाकी है और अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। कतर के इवेंट्स लगातार हैं, कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसको खाली छोड़ दिया जाएगा। नो फ्री पीरियड, एवरी पीरियड इज अ लर्निंग। तो मैं आज आपका प्रोफेसर दोहा वाला कबीर आ चुका हूँ बताने के लिए कि कैलेंडर में क्या कुछ है जहां आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं एंड बहुत मौज कर सकते हैं। हर हफ्ते इस एपिसोड के लिए तैयारी होती है, कहां कुछ क्या हो रहा है, कोई भी छूट ना जाए। और अगर कुछ छूट जाए तो आप है ना, आप भी हमें बता सकते हैं भाई, हमें कोई ईगो शीगो नहीं है भाई। आप बताइए कि किस इवेंट में आप गए, कोई ऐसा इवेंट जो बड़ा खास रहा तो शेयर विद अस। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आप करेंगे तो और भी फायदा है, बाकियों को पता लग जाएगा। सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar। एंड टू बिगिन विद, सबसे पहली चीज जो इस पूरे कैलेंडर में बहुत जरूरी है, स्पेशली इन द समर वेकेशंस, इज टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। वेरी सिंपल, Qatar 2026। बहुत सारे जुगाड़ हैं यहाँ पर। मैं जुगाड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें वो जुगाड़ लगते हैं जबकि हमारे आंखों के सामने हमें लगता है वो कितने बड़ा काम किया हमने। इट्स सो इजी टू हैव गुड टाइम इन कतर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्योंकि यहाँ पर होटल्स वगैरह हर एक जगह पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं स्टेकेशन का जिक्र हर हफ्ते करता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना कि स्टेकेशन नाम की भी एक चिड़िया होती है। जो नए नए आए हैं उन्हें लगता है कि भाई अभी लगातार जॉब कर लिए, थोड़ा सा मेरे को फ्री माइंड करना है, तो फ्री माइंड करने के लिए आप स्टेकेशन कर सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आप फैमिली के साथ ही जाएंगे, जब तक मेरी फैमिली जाएगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और लोग मुझे इसलिए भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं पिछले हफ्ते कि यार आप अकेले वालों के लिए तो बताते नहीं, हम बैचलर्स का क्या, क्या सिर्फ फैमिली वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ गुच्छा बना के जाओ, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। होता ना कि फीमेल पार्टीज होती हैं, सारी सारी फीमेल्स क्लब करके एक साथ जाती हैं और सारे सारे बॉयज लोग आप भी जाइए कहीं ना कहीं घूमिए एंड ग्रुप में मस्ती कीजिए। कहीं कहीं स्टेकेशन इतने जबरदस्त हैं जिसका आपको लुत्फ उठाना चाहिए। और गर्मियों में इसका मजा है भाई, बाद में नहीं आएगा, बाद में कब कभी छूटेगी या मौसम बढ़िया नहीं होगा या बूंदाबांदी हो जाएगी, आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया। सो स्टेकेशन का मजा इसी समर वेकेशन में ले लीजिए। गर्मी में स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया लगता है भाई, ऊपर से खाना खुना एकदम बढ़िया और ऑफर भी अभी है, बाद में ना के भाई तब ना तो बेरा, मौसम बदलेगा सब बदल जाएगा। सो कतर के जो मौसम का हाल है वो भले गर्म रहे लेकिन आपका जिगरा ठंडा होना चाहिए बिल्कुल। तो मजे कीजिए स्टेकेशन में, वेदर यू आर विद योर फैमिली और यू आर जस्ट अलोन, बैचलर जिंदगी के मजे ले रहे हैं आप, या फिर आप चाहते हैं दोस्तों के साथ ले जाना तो प्लीज ले जाइए। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली एक्सपीरियंस स्टेकेशन, प्लीज गो एंड एक्सपीरियंस इट, ठीक है जी। अब जरा बाकी इवेंट जो तारीखों के हिसाब से उन पे बात कर लें। सबसे पहला इवेंट जो है वो है अंडर द स्टार्स एट 974 बीच, सितारों के नीचे एक सूदिंग साउंड। अब जरा जस्ट इमेजिन द पिक्चर, ओके, ऊपर तारे हैं, नीचे बढ़िया सी आवाज आ रही है भाई समुद्र की लहरों की, ये एक्सेप्शनल शाम जिसका कोई तोड़ ही ना हो। इसमें आपको द वॉर्मथ ऑफ फैमिली गैदरिंग्स और प्रॉबली गैदरिंग्स, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ। एंड सिर्फ वक्त बिताने की बात नहीं, यहाँ पे एक्टिविटीज भी हैं, यहाँ पे फेस पेंटिंग है, आउटडोर मूवी स्क्रीनिंग है, समझ रहे हैं, एंड स्टोरी टेलिंग है जो मुझे बहुत पसंद है। एंड

एक यूनिक फैमिली गैदरिंग के लिए बीच भी एक नंबर है. नंबर है 974 बीच. तो 974 बीच, एक तो मुझे लगता है आधे लोगों ने अभी भी विजिट नहीं किया. जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है, प्लीज प्लीज विजिट करें. दिस इज अ फेनोमिनल बीच बाय द वे. यानी बहुत टाइम से फेमस है और हुए जा रहा है, इसमें इवेंट्स होते ही रहते हैं. मैं यहाँ पे कुछ साल पहले गया था जब ये बिल्कुल नया नया फ्रेश इसका नाम वाम रख के इसे लॉन्च किया गया था. बड़ा मजा आया था तब भी, और अब तो ये बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है. तो सारी अमेनिटीज के साथ, बहुत सारे इवेंट्स के साथ ये तैयार रहता है हर महीने. और इस बार समर वेकेशन में, इफ इट्स नॉट वेकेशन फॉर यू टेक्निकली, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं. स्पेंड टाइम विद योर नियर एंड डियर वंस. सो 974 बीच पे अंडर द स्टार्स, यू कैन कॉल इट एन इवेंट, यू कैन कॉल वट एवर यू वॉन्ट, बट 974 बीच पहुंचिए. 3 जुलाई से ये इवेंट है, अभी तो चलेगा एक दिन जरूर है, लेकिन आप यहां पर होकर आए. और जब आप सुन रहे हैं, अगर ये हो चुका है सो डोंट वरी, 974 बीच के जो इवेंट्स हैं वो कतर कैलेंडर पर जाके देखते रहिए, बहुत सारे और भी इवेंट्स आते रहेंगे. मतलब ये 3 जुलाई को रखा गया एंड शाम के 7 से रात के 12 बजे. सो इन केस यू मिस्ड आउट ऑन दिस वन और आप मुझे सुन रहे हैं और ये तारीख जा चुकी है, डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स 974 बीच पे होते रहते हैं. दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू टू विजिट द बीच इमीडिएटली. अबे क्या भाई, विजिट कीजिए और मजे कीजिए. जया जी, दूसरा इवेंट बताइए भाई, दूसरे इवेंट की तरफ बढ़ते हैं. अगला जो इवेंट है ये आप देख ही रहे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स ने भर दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका, हर रील में यही नजर आ रहा है. तो मैं भी क्यों ना पीछे हटूं, नहीं क्यों ना पीछे हटूं, मैं क्यों पीछे हटूं, मेरी तो ग्रामर कैसे जैसी होगी. चलो तो 13th एडिशन ऑफ तीब अल हजम ऊद एंड परफ्यूम्स एग्जीबिशन इज ऑन, और अल हजम गैलरी में है ये कतर में. अगर अल हजम मॉल अभी तक आप नहीं गए हैं, आई नो आपको लगता होगा सिर्फ यहाँ पे तो रईस लोग, ऐसे कुछ नहीं, आप जाके देखिए. मैं भी इसी चक्कर में नहीं गया था बहुत सालों तक, एक मरतबा गया हूँ, बट आई फेल इन लव विद दिस मॉल. बहुत बहुत प्यारी एग्जीबिशन है, कमाल के ऑफर्स हैं परफ्यूम्स पे, एंड आप मतलब खुश होके आएंगे इस बात की गारंटी है. यहाँ पे प्रीमियम ऊद फ्रेग्रेंसेस परफ्यूम्स सब मिलेगा आपको, अलग अलग ब्रांड्स और प्रीमियम ब्रांड्स ने ऑफर्स रखे हैं. ये 25 जून से 4 जुलाई तक रखा गया है, और इस बीच अगर आप नहीं गए हैं तो भैया फिर तो आप वेट ही कर सकते हैं, और आप जा चुके हैं तो मुझे जरूर बताइएगा. ये एग्जीबिशन गेस्ट्स को वेलकम करने के लिए तैयार रही हर शाम, काफी एलिगेंट सेटिंग रही, एंड साथ साथ वो जो टाइमलेस ब्लेंड्स होते हैं ना, अलग अलग किस्म के सेंट्स के, जो आपको समझ में नहीं आते लेकिन खुशबू बढ़िया लग रही होती है, वो वाला फील आपको यहाँ में मिलेगा. दिस इज दोहाज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश डेस्टिनेशंस इन एग्जीबिशंस के लिए. एंड आप अगर डिवोटेड हैं फ्रेग्रेंसेस के, आप एंथुजियास्ट हैं तब भी सही है, या फिर आप सिंपली बस देखने के लिए जाना चाहते हैं तब भी आपको जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा है जब मैं बता रहा हूँ तो आपको ये इवेंट थोड़ा आगे पीछे हो चुका होगा. बट नॉनदलेस इफ यू हैव विजिटेड दिस तो हमें जरूर टैग कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अरेबियन परफ्यूमरी का पूरा खजाना है, खजाना. एंड दिस इज द परफेक्ट ओकेजन ऑल्सो, गर्मियों में क्या कहीं जाना भी पसंद होता है, कहीं ना कहीं एसी वूसी लगाओ, बढ़िया एग्जीबिशन मिल जाए, तो ये वो जगह रही. सो 25 जून से 4 जुलाई इसकी तारीख, एंड टाइम शाम के 6:30 बजे से रात की 11 अल हजम गैलरी एग्जीबिशन. यहाँ पे अगर आप नहीं हो के आए हैं, सो दिस इज अ रिमाइंडर कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा हो तो पहुंच जाना है विदाउट फेल. भाई इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, चीजें बार बार लौट के नहीं आती. बाकी अगर आपसे छूट भी गया सो डोंट वरी, बिकॉज इनके जो ऑप्शन है परफ्यूम्स के वो अभी ऑफर्स चलते रहेंगे इनके इंडिविजुअल स्टोर्स पे, सो यू कैन गेट देयर एंड स्टिल गेट द ऑफर्स. सो प्लीज गो देयर एंड हैव फन. बाकी एक और चीज, जितने भी लोग छुट्टी पे जाने वाले हैं अपने बच्चों के साथ वेकेशंस पे, उनको मैं कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट फॉर द ओकेजंस, फॉर द वेकेशन, आई एम सॉरी, एंड आल्सो फॉर द ओकेजन एज वेल, क्योंकि इस वक्त जो लोग नहीं जा पाएंगे उनके लिए कतर में अलग अलग जगहों पे समर कैंप्स लगाए गए हैं, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली इंडल्ज योरसेल्फ इन एक्टिविटीज. क्योंकि देखो मैं ये ज्ञान आपको जरूर दे रहा हूँ, हालांकि मेरा ज्ञान देना बनता नहीं, मेरे बच्चे भी हैं नहीं, इंशाल्लाह जब होंगे तो मैं उनके साथ इस ज्ञान को शेयर कर लूंगा. बट फॉर नाउ आई हैव सीन वन ब्यूटीफुल थिंग इन कतर, जहां पर लोग अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. एक ये होता है ले मैंने पैसे बढ़ दिए भाई, अब तू जाओ स्विमिंग सीखो जो करना करो. एक होता है कि आपने बच्चे को किसी समर कैंप में इंडल्ज किया या किसी और एक्टिविटी में, और आप खुद भी उसका हिस्सा बने. सो डू दैट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट. आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स डूइंग इट. हमारे पड़ोस में है, और मैं किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उनका किस्सा मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है. उन्होंने अपने बच्चों को स्विमिंग क्लासेस में ज्वाइन कराया,
एक दिन बच्चे ने कह दिया मम्मी आपको आती है स्विमिंग, पापा जी आपको आती है स्विमिंग, उन्होंने कहा ना

0: की हमें तो नहीं आता, तो बोले आप भी ज्वाइन कीजिए. सो दे ज्वाइंड एज अ फैमिली एंड नाउ दे वर जस्ट शेयरिंग दिस विद मी. बता रहे थे कि किस तरीके से ये वक्त उनके लिए बहुत खूबसूरत रहा. बच्चों के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना और महज फीस भर देना, ये दो अलग अलग चीजें. सो आपका एक ही कहना होगा कि टाइम कहाँ होता है यार. टाइम निकालिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप टाइम निकाल भी सकते हैं और आप इनकी एक्टिविटीज में इनके साथ इंडल्ज भी हो सकते हैं. बिकॉज देयर आर मेनी मेनी समर कैंप्स जो कतर में लगे हुए हैं एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ देम. ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे एक और बढ़िया एक्टिविटी की तरफ.
1: कतर 2026.
0: अब दोहा में सबसे बड़ा एक शॉपिंग एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं या कर सकते थे इफ यू हैव मिस्ड ऑन इट. सो दोहा समर ट्रेड फेयर ये वापस लौट कर आया था और आके चला गया. बहुत बहुत बड़ा इवेंट रहा. 23 जून से 4 जुलाई आपने क्या लिया क्या नहीं लिया मुझे बताइएगा. डीसी में इवेंट हुआ एंड फ्री एंट्री थी. अंदर जाके आप देख सकते थे वाइड वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डील्स और फैमिली फ्रेंडली सब कुछ चीजें एक ही रूफ के नीचे. जो यहाँ पे भाई साहब ने लूट मचाई है ना, बता नहीं सकता मैं आपको, मौज आ गई. एंड यहाँ पर सुबह से लेकर पूरा ये मिडनाइट तक का सामान लगा था और क्या क्या नहीं था वहां पे. घर का सामान, कपड़े, पौधे और भाई एक और चीज जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था यहाँ पे, वो डेकोरेटिव आइटम्स जिन्हें हम डेकोर कहते हैं, डेकोर, वो भी बड़े मौजूद थे. बड़े अच्छे तरीके से अच्छे प्राइसेस पे मौजूद थे. एंड जो ब्राउज करने का ऑप्शन होता है जैसे कि ऑनलाइन शॉप्स में होता है, वैसी वाली फीलिंग आई होगी अगर आप इस इवेंट में गए होंगे. बिकॉज आई नो बाय द टाइम आई एम टेलिंग यू इट इज ओवर फॉर नाउ. ये एग्जीबिशन फैमिलीज के लिए, दोस्तों के लिए एक बहुत बहुत मेजर अट्रैक्शन बना. मैं खुद यहाँ से घड़ी लेके आया भाई, मजे आ गए. बैटमैन की घड़ी लाया आपका भाई यहाँ से, मजे आ गए. तो दोहा समर ट्रेड फेयर जो है इस बार भी बहुत कामयाब रहा है माशाल्लाह. कतर ने काफी काफी सूदिंगली स्मूदिंगली इसको निपटाया है और बहुत अच्छे से निपटाया है. एंड अगेन एक बेंचमार्क सेट कर दिया है अगले आने वाले ऐसे ही फेस्ट्स के लिए, जहां पर शॉपिंग के दौरान आपको फीलिंग आती है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस किस से प्यार करूं. तो वाली फीलिंग है कि आप क्या क्या क्या क्या चीज खरीदेंगे, किस किस चीज से प्यार करेंगे, वो वाली फीलिंग इस इवेंट ने मुझे दी है डेफिनेटली. हाँ, ये भूल भुलैया है, पर ये ऐसी भूल भुलैया रही जहां पर लोगों को खो जाने में मजा आ गया. और ये इवेंट दोहा समर ट्रेड फेयर दोहा एग्जीबिशन सेंटर में एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ. एंड दिस हैपेंड बिटवीन 23rd ऑफ जून टिल 4th ऑफ जुलाई 2026, 8 बजे से सुबह के रात के 12 बजे तक हुआ ये. एंड सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात, एक सिंपल रजिस्ट्रेशन जो आप वहां जाके भी कर सकते हैं, उस सिंपल रजिस्ट्रेशन के बलबूते पे एंट्री मिल रही थी, फ्री एंट्री. कोई रोक टोक नहीं, कुछ मसला नहीं, आप सीधा जाएं और अपने रियाल जो है वो सही जगह खर्च करें. इफ यू वांटेड टू सेव मनी यू आर देयर. अगर आपने मिस कर दिया है तो आपके लिए एक साउंड इफेक्ट है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, कर सकते हैं. अगले डेट फिर के लिए इंतजार कीजिए. मैं इंशाल्लाह अगली बार भी आपको याद दिलाऊंगा, और जब याद दिलाऊंगा तो उम्मीद है कि आप तब तक जा चुके होंगे. दैट्स व्हाट आई वांट. पहले भी याद दिलाऊंगा, बाद में भी याद दिलाऊंगा. पहले याद दिलाऊंगा ताकि आप पहुंचे और बाद में याद दिलाऊंगा कि क्यों नहीं गए ना, आ गया स्वाद, तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी जैसे अभी आ रही होगी. आई नो. एंड इसका रिग्रेट बनता है बिकॉज बहुत बहुत बढ़िया इवेंट था. आई हैव बीन देयर मायसेल्फ. ओके, आगे बढ़ते हैं.
2: आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
0: देखिए अगला इवेंट जिसके बारे में मैं बहुत देर से बात कर रहा था, ये एक्टिविटीज जो कतर में हो रही हैं बच्चों के लिए, स्पेशली व्हेन देयर स्कूल इज ऑफ, वो उस लेवल की हैं जहां पे बाहर के भी लोग छू भी नहीं पाते. मतलब बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी इस किस्म के चीजें नहीं होती, वो भी लगातार तो बिल्कुल नहीं होती. सो जैसे जैसे सूरज जो है डूबना शुरू होता है, वैसी समर स्प्लैश शुरू होते हैं कतर में, वो भी इनडोर थ्रिल्स के साथ, जहां पर बीच साइड फन है, मैजिकल मोमेंट्स है, स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स एंड पॉ पेट्रोल, एंड इसमें लाइव शोज भी रखे गए हैं, इसमें कैरेक्टर मीटअप्स भी हैं, इसमें बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे एडवेंचर्स हैं पूरी पूरी फैमिली के लिए. मगर ये क्या है, ये है रिक्सोस प्रीमियम पताइफन आइलैंड में, और ये है मैरियल वाटर पार्क में. टिकट होल्डर्स जो टिकट लेकर वहां पर पहुंचेंगे वो एक्सेस कर सकते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में उन्हें सबसे ऊपर रखा जाएगा एंड 4 बजे से एंट्री मिल जाएगी. और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए, जो अटेंड करेंगे इसे फ्री में, उनको एंट्री मिलेगी.

0: शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक. तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा बिकॉज ये वाटर पार्क बहुत ब्यूटीफुल है. तो अगर आप टिकट्स वगैरह लेके जा रहे हैं तो आपको 2 घंटा पहले एंट्री मिलेगी प्रायोरिटी पे. और अगर आप ऐसे भी जाना चाहते हो जा सकते हैं, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है. एंड इफ यू डोंट पे दैट्स फाइन, बट आपको 2 घंटे के बाद एंट्री मिलेगी. ये सुनने में आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं बस समझने की कोशिश कीजिए. कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए पंचुअलिटी भी बड़ी जरूरी होती है. ये वैसा वाला इवेंट है जहाँ पे पंचुअल होना जरूरी है, और बच्चों के साथ तो आपको पंचुअल होना चाहिए, आप ही से सीखेंगे ना वो, तो इसका हिस्सा जरूर बनिएगा. एंड दिस इज एट मैरियल वाटर पार्क. जैसे मैंने कहा टिकट होल्डर्स 4 बजे, और अगर टिकट आप नहीं भी लेते तब भी एंट्री है. एंड यू विल गेट टू एंटर एट 6 PM to 7 PM. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट.
1: Qatar 2026.
0: अगर आप आज तक कतर नेशनल लाइब्रेरी नहीं गए, पहली बात तो वहां जाइए. आपको किताब पढ़ने का नहीं भी शौक होगा तो आप एक किताब लेके 4 पन्ने तो पढ़ ही देंगे और वो शौक आपके अंदर डेवलप होगा बिकॉज द एनवायरमेंट इज सच. इतना खूबसूरत एनवायरमेंट है कतर नेशनल लाइब्रेरी का. इफ यू हैवंट बीन देयर प्लीज खुद भी जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए. एंड अगर आपके साथ कोई एविड रीडर है तो उसे लेके तो जरूर जरूर जरूर जरूर जाइए. एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट गल्फ. तो ये नेक्स्ट लेवल की चीज है. अब लाइब्रेरी का जिक्र हो गया है और मैंने कल्चरल बुक डिस्कशन की बात करी, तो एक और लाइब्रेरी है जो कि बहुत बहुत मेन है कतर के लिए, दैट इज MIA लाइब्रेरी, जहां पर चल रहा है मजलिस बुक क्लब. इट इज ओपन टू रीडर्स जो कि इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि अपनी कॉन्वर्सेशंस और अपने आइडियाज आगे रखना चाहते हैं. देखो मैं खुद किताब नहीं पढ़ता हूं, तो मेरा बनता भी नहीं है आपको ये ज्ञान देना कि किताब पढ़ो कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड. आई नो दैट हम सबको पता है, लेकिन किसी किसी का शौक नहीं होता है. मगर कुछ लोगों का शौक ये होता है कि वो डिस्कशन का हिस्सा बन सके. आई वुड लव टू, अगर 2 avid readers आपस में बात करते हैं तो मुझे तीसरे को एज ए थर्ड व्हील मुझे कुछ चीजें सीखने को मिल जाती हैं, एंड आई गेट टू लर्न लॉट ऑफ स्टफ. सो अगर आप लाइब्रेरीज का हिस्सा नहीं बने, आई नो इट साउंड्स लेक्चरी एंड प्रीची कि अरे देखो प्रीच कर रहा है लाइब्रेरी जाने के लिए, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू गो देयर. अच्छा खाने का लालच दे दूं क्या भाई, पास्ता बहुत बढ़िया है कतर नेशनल लाइब्रेरी का, पास्ता बहुत बढ़िया है. अगर आप नहीं गए तो पास्ता जरूर ट्राई कीजिएगा. इस बहाने बुक के सेक्शन में जाएगा, और जब आप बुक के सेक्शन में जाएंगे आई कैन गारंटी कि आप एक बुक तो पढ़ ही लेंगे. मैंने यहाँ पे एक बुक पढ़ी थी स्पीशीज होमो सेपियंस, एंड वो जो स्पीशीज वाली जो बुक थी मेरे बड़ी काम आई है, और मेरी लाइफ में वो पहली और आखिरी बुक है अभी तक की. आखिरी नहीं कहूंगा, पहली बुक थी वो दैट आई रेड रिलीजियसली एंड आई लव्ड इट. तो इसके अलावा वहाँ पे कल्चरल किताबें भी हैं, इसके अलावा वहाँ पे आपको अगर रीजनल या फिर रिलीजन बेस्ड किताबें पढ़नी वो भी मौजूद हैं. एंड वो जो इन्वायरमेंट है पूरा लाइब्रेरी का, दैट इज जस्ट अमेजिंग. एंड MIA लाइब्रेरी इज नो लेस देन एनी अदर लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड. सो MIA लाइब्रेरी में तो मजलिस डिस्कशन हो रहा है. सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इवन इफ यू नॉट रीडर, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड सी वॉट कम्स आउट. हो सकता है कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें हो जो आपके दिमाग को खोले, बिकॉज ये चीजें अचानक से होती, दीज आर नॉट प्लान्ड स्टफ. किसी की कोई बात ऐसी दिल पे लग जाती है, कोई बात ऐसी हो जाती है जो आपको रिसर्च करने के लिए पुश करती है, एंड दैट इज व्हेन एवरीथिंग चेंजेस, एंड दैट इज व्हेन यू लर्न. हर मुकाम पे अपनी जिंदगी के सीखते रहना इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. आई नो इट इज अगेन साउंडिंग प्रीची, बट इट इज नॉट. आज भी हम सीख रहे हैं और आज भी सीख और कल भी सीखना है. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर Amazing event.
1: Qatar 2026.
0: अगला जी कतई जबरदस्त, एकदम कहते ना झंडा गाड़ने वाला इवेंट है. ये है PSA समर कैंप 2026, जहां पे बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट में एक एक्टिव समर प्रोग्राम के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश है. और ये है एट पर्लिंग सीजन इंटरनेशनल स्कूल, मेरे घर के सामने. एक घर बनाऊ तो मेरे घर के सामने है, बहुत ही शानदार जगह है. एंड इस कैंप में स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, फिटनेस एक्टिविटीज हैं, एंड काफी सारे फन गेम्स हैं जो कि प्रोफेशनल्स और सर्टिफाइड कोचेस की तरफ से हैं. सो अगर कोई इस तरफ है या पर्लिंग में आप कभी स्विमिंग वगैरह सीखने के लिए गए हैं तो जाइए, और नहीं गए तो जाना चाहिए आपको. अब मेरे तो घर के बिल्कुल सामने, तब भी मैं नहीं गया हूँ, बट आई एम नाउ थिंकिंग वेरी सीरियसली कि कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा. और आप ये कीजिए, इसमें वीकली डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 week, 1 day, 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 7 weeks, उस हिसाब से देख लीजिएगा, whatever suits you, whatever timing suits you, please go there and enjoy. नाउ इन बिटवीन अ रिमाइंडर जो मैं आपको देना चाह रहा था, रिमाइंडर मेरा इतना है कि आप अभी तक अगर स्टेकेशंस का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज बन जाइए, बिकॉज ये एक्टिविटीज जो समर एक्टिविटीज हैं इन्हीं का हिस्सा समझिए।

0: soon and then the prices will go higher and जो staycation के offers होते हैं वो खत्म हो जाएंगे. फिर आपको वो वाला मजा नहीं आएगा, वो cherish नहीं कर पाएंगे जो आप इस summer में कर सकते हैं. And क्योंकि weekends पर ये activities रहती हैं और events पे, sorry, weekends पे कई सारी चीजें आती रहती हैं, तो I believe आपको जाना चाहिए and be a part of it. मैं तो कहूँगा कि choose कीजिएगा ऐसे hotels जो कि हेरिटेज और कल्चर को कतर की आपकी नजरों के सामने रखते हैं. मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ वकरा में हैं, कुछ कतारा की तरफ हैं और कुछ मिडल में हैं, एंड फ्यू ऑफ देम हैव पर्सनालिटीज. सो बहुत सारे होटल्स कतर में हैं जो ऐवे ही नहीं है कि भाई ये राजी आपका कमरा, ये लो चाबी जाओ. नहीं, यहाँ पे होटल्स की एक पर्सनैलिटी है, एंड दैट्स वाई आई कीप ऑन पुशिंग यू गाइस टू हैव स्टेकेशन एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ. जब आप कतर में हो, कोई नया आए तो भाई उसको कतर में जरूर जरूर लेके जाओ. इट्स वेरी वेरी हेल्दी एंड वन शुड एक्चुअली गो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. ये कागज लेने का आधार है, देखो ये इसलिए क्योंकि बहुत बहुत सारे इवेंट्स आपके लिए.
1: Qatar 2026.
0: The next one is the Qatar Sports for All Federation. इनकी तरफ से इनविटेशन आया है माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए कि वो समर फॉर ऑल स्पोर्ट्स कैंप में, समर कैंप में हिस्सा लें. अभी जो समर कैंप है ये, बस समझ लीजिए मैं बात कर रहा हूँ तो शायद खत्म होने वाला होगा या हो चुका होगा, ये लुसेल स्पोर्ट्स हॉल में रखा गया. एंड इसका जो पहला फेज था वो शुरू हो गया था, इनफैक्ट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक दिन बाद यानी 29 जून को ये सब शुरू हुआ है. तो 29 जून से ये फेज शुरू हुआ है, मंडे टू थर्सडे सुबह के 9 से दोपहर के 1 बजे तक. और ये दोनों के लिए है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी. एज इसमें लिमिट रखी गई है, तो जो एज ग्रुप है वो है 7 to 11. और जो कैंप है इसमें बहुत कुछ है. अब वापस बच्चा बनने का मन कर जाएगा आपको बता रहा हूँ, तो अपने रिस्क पे देखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल वर्कशॉप्स हैं, स्किल बिल्डिंग सेशंस हैं और काफी सेफ एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट है. जब बच्चों को कहानियों के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए कुछ चीज सिखाई जाती है, यकीन जानिए ताउम्र वो उनके दिलो जहन में घर कर जाती है. एंड दैट्स वाई ऐसे इवेंट्स, ऐसे समर कैंप्स बहुत जरूरी होते हैं. सो इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ एनी कैंप लेटली या बचपन में, तो अपने बच्चों को ये मौका दें एंड लेट देम बी अ पार्ट ऑफ सच इवेंट, सच कैंप्स. इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, QSFA की वेबसाइट पर जाके अपनी फुल डिटेल्स भर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसकी ऐप भी है QSFA की, यानी द कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशंस. और यहाँ पे जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी थ्रू द ऐप. सो ट्राई डाउन एंड डू लेट मी नो. एंड इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ आप भी कहना चाहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होंगे जहाँ आप गए होंगे या जाने वाले होंगे, तो जरूर बताइएगा 6622107 पर, 6622107 पर. Alright, moving on to another event जो कि बहुत बहुत मेजर है. इसमें अभी टाइम है लेकिन ये मान के चलिए कि अभी से शुरू हो चुका है, आपके जहन में शुरू हो जाना चाहिए, बाकी तारीख के हिसाब से फिजिकली प्रेजेंट ये आपको इवेंट दिख जाएगा. सो कतर सस्टेनेबिलिटी वीक जो है, जो कि कतर का नेशनल कैंपेन भी है, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. और इसका मकसद है एंगेजमेंट लेके आना कम्युनिटी में, ताकि सारे लोग जो भी कतर में आने वाले हैं, आ चुके हैं, कोई रिसर्च करा, सबको ये एक ही चीज पता होनी चाहिए, सब एक सेम पेज पर होने चाहिए कि कतर का मकसद आगे बढ़ने का सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दौलत ही दौलत हो, शौहरत ही शौहरत, पैसा ही पैसा होगा, सिर्फ वो नहीं, मगर एक यूनिक अप्रोच है ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके. और ये है बाय टैपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी. और जो पहला हफ्ता होगा ये जो शुरू होने वाला है, ये 31 अक्टूबर से शुरू होगा, 7 नवंबर तक खत्म हो जाएगा. अभी टाइम है, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड विद दिस आइडिया, सस्टेनेबल विजन आखिर किस चिड़िया का नाम है. तो ये नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोगों तक पहुंचाता है. एंड अर्थना सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर आर रियली रियली प्राउड टू अनाउंस 11th एडिशन ऑफ कतर सस्टेनेबिलिटी वीक. बहुत वक्त हो चुका है एंड काफी सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं. नाउ डबल डाउन करते हुए बताना चाहूंगा कि इस साल भी बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एंड डेलीगेट्स विल जॉइन हैंड्स टुगेदर ताकि ये मुमकिन हो सके. और इसमें एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे इवेंट्स जो कतर में अलग अलग जगहों पर रखे जाएंगे. हफ्ते भर लंबा ये नेशनल कैंपेन होगा जो कि 31 से 7 नवंबर के बीच में लोगों को दिखा जाएगा. और इसमें ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, बिजनेसेस, कम्युनिटी ग्रुप, ये सब के सब अक्रॉस कतर नेशन वाइड एफर्ट एक साथ दिखाएंगे. बिकॉज हम सब जब सेम पेज पर नहीं होंगे तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी. सो वी हैव टू टेक इट एज सीरियसली एज कतर इज टेकिंग. एंड यही फ्यूचर है, तो अपना आगे वाला कल, आने वाला कल थोड़ा सा भी अगर सिक्योर कर सकते हैं तो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी एक्टिविटी में, इनिशिएटिव में, या फिर इवेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, तो सिंपल आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पर जाके सारे की सारी डिटेल्स भरिएगा और बताइएगा कि आपको क्या करना है, किस चीज़ से हिस्सा बनना है। एंड एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू होंगी और उसके बाद उन्हें पब्लिश किया जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। अलग अलग लोकेशन पे होगा, जैसे मैंने कहा एक लोकेशन पे नहीं किया जाएगा, सो मल्टीपल लोकेशंस पे ये सस्टेनेबल वीक जो है वो सेलिब्रेट भी किया जाएगा। बट जो उसका मेन मोटिव है कि लोगों तक आवाज़ पहुंचे और लोग इसके बारे में अवेयर रहें कि कतर 2030 तक क्या क्या अचीव करने वाला है, तो मजा आ जाएगा। तो इस इवेंट का मैं तो हिस्सा बनूंगा, ऑफ कोर्स वी विल बी कवरिंग दिस एज वेल। बट मीनवाइल मेरी यही सलाह है कि आप जो है कतर की विजन के बारे में पढ़ें, क्योंकि वंस यू विल रीड इट एंड देन जब आप उतरेंगे इस मैदान में इस चीज़ को समझने के लिए, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। एंड सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो है इलेक्ट्रिक कार्स लेना शुरू कर दी या फिर पूरी तरह से आगे, नहीं, सस्टेनेबिलिटी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, मगर ये क्योंकि कतर रिप्रेजेंट कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को इस कदर, तो इसकी रफ्तार थोड़ी तेज होगी एंड इंशाल्लाह विल हैव अ वेरी वेरी सिक्योर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। सो कुडोस टू कतर फॉर टेकिंग सच इनिशिएटिव। तो ये रात के 12 बजे से इवेंट होगा, इनफैक्ट कुछ दिनों पर अलग अलग टाइमिंग हो सकती है अलग अलग जगहों के लिए, तो उस बात की अपडेट जब ये इवेंट आएगा तो आपको जरूर जरूर दी जाएगी। All right, now moving on to another event. Qatar 2026, Qatar 2026. अब देखिए कतर ओलंपिक डे जो है वो 27 जून को सेलिब्रेट हो चुका है, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ, प्लेस वेंदोम में ना 5 किलोमीटर इंडोर वॉक हुई, जॉग हुई, जो कि IOC का एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसका नाम है लेट्स मूव कैंपेन। And this was in collaboration with Education Above All Foundation. और इसके जो main features थे वो ये थे कि 3 laps लेने थे around place Vendome. Registration रहा सुबह के 8:30 से रात के 9 बजे तक kick start हुआ. So बहुत बहुत brilliant events रहे हैं इसमें भी. And अगर आप यहाँ पे गए हैं तो आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. So all the best to you on that. अगर आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं ग्राउंड फ्लोर Gate 1 प्लेस वेंदोम में, और ये खत्म हो चुका है जब आप इसे सुन रहे हैं। सो बट डोंट वरी, आई एम देयर टू जस्ट कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, और कुछ छूटेगा तो मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा। एंड आप भी मुझे जरूर जरूर बताएं इफ एनीथिंग इज लेफ्ट और आपको लगता है कि वो भी इसी इवेंट में शामिल होना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा बच्चों के लिए समर कैंप, और आपके लिए सबसे पहले जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो है स्टेकेशन। सो स्टेकेशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए या अपने पार्टनर के साथ जाइए, या आप गर्ल गैंग बना के जाइए या बॉयज गैंग बना के जाइए, एंड यू विल बी मच मच मच मोर हैप्पियर एंड इन अ वेरी गुड स्पेस ऑफ माइंड। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फुटबॉल की जो स्क्रीनिंग्स हैं, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड कप बाकी है, ये अलग अलग जगहों पे हैं, टीम कतर के जो इवेंट्स थे वो भी सारे निपट चुके हैं। अभी जो आने वाला वक्त है, जैसे ये अपना 19 जुलाई तक क्योंकि होगा फाइनल तक, तो मीनवाइल ये भी बता दीजिएगा कि आप कौन से मैच पे आपकी नज़र है, प्लीज़ लेट मी नो। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं मैचेस को अप एंड क्लोज, तो मॉल ऑफ कतर भी आ सकते हैं आप। ये 19 जुलाई तक यहाँ पे फ्री व्यूइंग है। ओएसिस जो स्क्रीन्स हैं वहाँ पे आप आराम से बैठे बैठे देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप यहाँ बैठे बैठे भी। क्योंकि देखो कतर जैसा वर्ल्ड कप तो कहीं होगा नहीं, अभी यहाँ नहीं हो रहा तो तब तक फील ही ले लें, है ना, फुल फील लीजिए आप यहाँ पर रहिए। एंड जितने सारे मैचेस हैं अभी उन सब पे हमारी नजर बनी रहेगी, एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। सो ओएसिस स्क्रीन्स, मॉल ऑफ कतर, अल रयान, एंड आप जो है कभी भी बाहर बैठ के आराम से बड़ी स्क्रीन पर फॉर फ्री मैच देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, एंड इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंगली ब्यूटीफुल। ओके जी, आगे बढ़ो। अब अगले इवेंट की तरफ बढ़ूं, तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि नॉर्थ फूड कोर्ट की तरफ है, दोहा फेस्टिवल सिटी में। ये जो मॉल है ये वो रहेगा जहां पर आप मैचेस भी देख सकते हैं मॉल के ऑपरेटिंग आवर्स के साथ साथ, और साथ में जो मैचेस हैं वो स्क्रीन किए जाएंगे 1 to 6 AM। एंड अगर टीम जो है आपकी पूरी थोड़ी थक जाएगी तो उसके लिए भी प्रबंध किया गया है, और स्पेशल आपको मील्स दी जाएंगी, सब कुछ है यहाँ पर, कुछ मील्स आपको खरीद लीजिएगा। लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स लवली टू हैव people making videos on this place. Okay, so now moving on to another one, and ये वाला जो है ये बहुत जरूरी है. ये वाला जो इवेंट है ये सिर्फ फुटबॉल से जुड़ा हुआ नहीं है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है. इस साल कोई ना कोई स्किल उन्हें जरूर सीखने दीजिए. इफ दे वांट टू लर्न समथिंग प्लीज आके खोलिए. आई नो थोड़ा बहुत खर्चा अगर आप उठा सकते हैं तो इसमें कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए. कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जिसमें कभी रुकना चाहिए. मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके घर में आपके बच्चे जो है कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं ना तो उनके कहने से पहले उन्हें एनरोल कीजिए. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जब वो छुट्टी पर है, सो दे कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम पीपल अराउंड देम, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. सो ट्राई एंड डू दैट. बाकी 666-22107 है, 666-22107. अगर मैं आपके काम आ सका तो मुझे बहुत बहुत बहुत बहुत खुशी होगी. आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपने एक्सपीरियंस किया है एंड यू वॉन्ट टू शेयर मोर अबाउट. That is what matters. So 666-22107 number है. आप मुझे message भी करते रहिएगा show के दौरान, अगर कुछ कहना चाहें तो भी message कीजिएगा. बाकी जैसे मैंने कहा कि staycation हो गया, इसके बाद group बना के कहीं जाने का scene हो गया, ये सब on रखिए. summers के बाद मैं यकीन दिला रहा हूँ एक अजीब सा आलस होगा, कहीं जाने का मन नहीं होगा, कुछ करने का एहसास नहीं आएगा, and you'll be like काश कहीं चला ही जाता मैं. So प्लीज पहुंचिए इन तमाम जगहों पे. बाकी 666-22107 एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar. आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से, dohawalakabir.fm107, एंड यू कैन कैच मी देयर एज वेल. एंड यकीन दे रहा हूँ आपको सच में ही मजा आ जाएगा इन तमाम जगहों पे जाके. स्पेशली इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर सोलो तब भी बढ़िया है. जो सोलो ट्रेवल करते हैं उनके लिए तो कतर इज सो ब्यूटिफुल. यहाँ पर इवेंट्स में कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ सिर्फ फैमिली. हाँ, फैमिली वाले इवेंट्स बिल्कुल अलग हैं, मगर बाकी चीज़ों में कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते. एवरीबडी इज अलाउड एंड देर इज नो सच थिंग जो बाहर वर्ल्ड कप में हो सकती है. भाई हम जिसको प्राउड जिस चीज़ को लेके प्राउड है उसके बारे में जिक्र तो करेंगे, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली सेफ हेयर. सो ये था कतर 2026 का एक एपिसोड. अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पर. एंड आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है. सो दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे.
3: सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी,
4: मुफीद साबित होंगी.
3: तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड.
4: सन एंड साउंड
3: आरजे सफा के साथ,
4: सफा के साथ
3: संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी,
4: दिल से देसी.
5: आप सुन रहे हैं FM 107,
6: FM 107
7: दिल से देसी.
8: Say what?

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Yo, lavish.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकेंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सम्राट, आज की दुनिया में अक्सर लोग बड़े ओहदों, शोहरत और कामयाबी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बरगुजीदा अंबिया अलैहिस्सलाम को क़ियादत के लिए किस तरह तैयार किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसने बकरियां न चराई हों। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या आपने भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं भी मक्का वालों की बकरियां चंद क़िरात यानी मामूली उजरत के बदले चराया करता था। जिस तरह सामने किराम तमाम अंबिया ने बकरियां चराई, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की हिकमत थी। उलमा ने इस हदीस की बड़ी खूबसूरत हिकमत बयान की है कि बकरियां चराना सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं था बल्कि एक तरबियत थी। एक चरवाहा क्या करता है? वो अपने रेवड़ की हिफाजत करता है, कमजोर बकरी का ख्याल रखता है, बिछड़ जाने वाली को वापस लाता है, उन्हें अच्छी चरागाह तक ले जाता है, पानी तक पहुंचाता है और खतरात से बचाता है। बिल्कुल यही काम एक नबी अपनी उम्मत के साथ करता है। वो लोगों को हिदायत की चरागाह तक ले जाता है, गुमराह होने वालों को वापस बुलाता है, कमजोर ईमान वालों की मदद करता है, اور انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مزید علماء فرماتے ہیں کہ بکریاں چرانے سے انسان میں کئی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، صبر، بردباری، تحمل، خاموشی، غور و فکر اور ذمہ داری۔ سامعین کرام، آج شاید ہم میں سے کوئی بکریاں نہ چرائے، لیکن اس سنت کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ استاد ہیں، آپ اپنے طلبہ کے چرواہے ہیں، اگر آپ والد یا والدہ ہیں، آپ اپنے بچوں کے چرواہے ہیں، اگر آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنی ٹیم کے نگہبان ہیں۔ ہر ذمہ دار شخص کو انبیاء کی اس تربیت

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अब्दुल अजीज हातिम की। अब्दुल अजीज हातिम कतर के मशहूर फुटबॉलर्स में शुमार किए जाते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने हिस्सा लिया। एक बात और है कि अपनी मेहनत, लीडरशिप और मिडफील्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से वो पहचाने जाते हैं। उन्होंने बचपन से फुटबॉल का शौक रखा और लगातार मेहनत के जरिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी पासिंग, बॉल कंट्रोल और गेम को समझने की सलाहियत उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाती है। अब्दुल अजीज ने कतर की कौमी टीम के लिए कई अहम टूर्नामेंट में नुमाइंदगी की और मुश्किल मैचेस में अपनी टीम को मजबूती फराहम की। एक मिडफील्डर के तौर पर वो दिफा और हमले के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन कायम रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लंबी रेंज के शॉट्स और की पासेस से मैच का रुख बदल देते हैं। क्लब फुटबॉल में भी उन्होंने मुस्तकिल और भरोसेमंद किरदार अदा किया है। उनकी प्रोफेशनल सोच, फिटनेस और डिसिप्लिन ने उन्हें कतर के नौजवान फुटबॉलर्स के लिए रोल मॉडल बना दिया है। दोस्तों, अब्दुल अजीज हातिम की कहानी ये पैगाम देती है कि लगन, सब्र और मुसलसल मेहनत से इंसान बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। आज भी वो कतरी फुटबॉल की तरक्की में अपना कीमती किरदार अदा कर रहे हैं और मुल्क के फुटबॉल मुस्तकबिल के लिए एक अहम मिसाल है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107
2: दिल से देसी।
3: आहिस्ता चलो।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Login.

0: to our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे और वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के अफराद के लिए क्यों जरूरी है। अक्सर अफराद समझते हैं कि वैक्सीन सिर्फ बचपन में ही लगवानी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ वैक्सीन उम्र भर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, जबकि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं कि वक्तन फ़क्तन बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। वैक्सीन खतरनाक बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद देती हैं। वैक्सीनेशन की बदौलत चेचक जैसी बीमारी दुनिया से खत्म हो चुकी है, जबकि पोलियो जैसे अमराज में नुमाया कमी आई है। जब लोग वैक्सीनेशन लगवाने में ताखीर करते हैं या उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो बीमारियों के फैलने के इम्कान ज्यादा होते चले जाते हैं। इससे खास तौर पर जो नौजायदा बच्चे हैं, बुजुर्ग अफराद हैं और ऐसे अफराद जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उनको ज्यादा खतरा लाहक हो सकता है। वैक्सीन सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि मईशत के लिए भी फायदेमंद है। बीमारियों की रोकथाम से हॉस्पिटल्स के अखराजात, इलाज मुआवजे की खर्च और काम या तालीम से गैर हाजिरी में कमी आती है। सफर करने वाले अफराद को भी चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क जाने से पहले जरूरी वैक्सीन के बारे में मालूमात हासिल करें, ताकि वहाँ मौजूद बीमारियों से खासतौर पर इन्फेक्शियस डिजीज़ से महफूज रह सकें। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को कौमी जो हिफाजती जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक बर वक्त वैक्सीनेशन लगवाएं और उनका वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो बिल्कुल महफूज रखें। चंद बहुत ही अहम बातें जो हमें अपने जहन में रखनी है कि वैक्सीन मुकर्रा वक्त पर लगवाइए, वैक्सीनेशन कार्ड महफूज रखिए, किसी भी सवाल की सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने ख़ानदान और दोस्तों को भी वैक्सीनेशन की अहमियत से आगाह कीजिए। वैक्सीन बीमारियों से बचाव का एक महफूज मौसर और आजमूदा जरिया है। ये न सिर्फ हमारी बीमारी बल्कि पूरी कम्युनिटी की सेहत का तहफ्फुज करती हैं। याद रखिए, हर वैक्सीन एक सेहतमंद और महफूज फ्यूचर की तरफ एक अहम कदम है।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

इनको हम कैसे इनका इंकशाफ करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चूँकि जब आप वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को इंकशाफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मसला ये होता है कि ऐसा ना हो कि कोई गलत यानी जाविये से हम इनको प्रेशराइज करते रहें, हालांकि वो उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो बाद में उसकी जो अहम सलाहियत होती है वो भी तबाह हो जाती है। तो इस वजह से इन चीज़ों को वक्त पर ही हमें इनका सही तकीम और असेसमेंट हो जाना चाहिए, ताकि जाके बच्चा अपनी जो उसका ख़ास जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको और भी इम्प्रूव कर सके। हाँ जी, ये तो वाकई बात है कि इस्लाम का तवाज़ुन है, इंसान के हालात को समझता है इंसान, उसकी ज़िम्मेदारी पर भी इस्लाम क्या करता है तवज्जो देता है। और ये बिल्कुल वाज़े है कि इंसान सब एक जैसे नहीं, और ये भी नहीं कहेंगे हम एक यानी बढ़ा चढ़ा करके भाई इंसान हालात के कैदी है, ये वो हालात के अतबार से हमें चलने पड़ते हैं। नहीं, पर्सनैलिटी भी आपने इम्प्रूव करनी है, बनानी है अपने बच्चे की ख़ास पर्सनैलिटी, वो आपने ही बनानी है यानी उसकी सलाहियतों को देखते हुए। तो ये एक अहम बात है जो माहौल, बच्चों की तरबियत, बच्चों के हैबिट्स, इन सब चीज़ों को जो है ना यानी अहाता करते हुए बच्चा आगे बढ़ता है। हाँ, पहली बात यह कि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला माओं के रहम में जिस तरह चाहता है इंसान की सूरत बनाता है, यानी इंसान अपनी शक्ल, रंग, नस्ल, जिस्मानी साख्त, इब्तदाई सलाहियतें और बहुत से बुनियादी चीज़ें ये खुद मुंतखब नहीं करता। ठीक है, कोई ख़ुद फैसला नहीं करता कि वो किस ख़ानदान में पैदा होगा, किस ज़बान में बात करेगा, किस मिजाज के साथ दुनिया में आएगा, सेहतमंद होगा या कमज़ोर, ज़हीन होगा या उसत, गरीब घर में आएगा या खुशहाल घर में, ये सब अल्लाह की तकसीम है और अल्लाह की तकसीम में हिकमत है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये जो एक तकसीम है अल्लाह सुभान व तआला की, किसी के पास ये सलाहियत है, किसी के पास वो, तो इसमें क्या हिकमत है अल्लाह सुभान व तआला की? इसमें इस हकीकत का एक बहुत बड़ा अखलाकी नतीजा है सामने कराम, कि हमें लोगों के साथ रहम और इंसाफ से पेश आना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी है तो बीमार को हकीर न समझें, अगर अल्लाह ने आपको ज़हानत दी है तो कमज़ोर तालिब इल्म का मजाक ना उड़ाइए, अगर अल्लाह ने आपको मज़बूत ख़ानदान दिया है तो टूटे हुए घर के बच्चों को कमतर न समझें, अगर अल्लाह ने आपको जज्बाती तवाज़ुन दिया है तो परेशान इंसान को फ़ौरन क्या ना करें, यानी उसकी फ़ैसला ना कर दे कि हाँ ये तो बड़ी बर्बाद हो गया, ऐसा जज ना करें। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरे इंसान ने किन हालात में सफ़र शुरू किया है, और आप जैसे कि जानते हैं कि ये दुनिया इम्तिहान दारुल इब्तिला है, इम्तिहान का घर है, इम्तिहान की जगह है, तो यहाँ अल्लाह सुभान व तआला आपको कभी कभार नियामत देकर भी यानी आजमाइश में मुब्तला करते हैं, कभी फ़क़्र में भी, कभी यानी फरावानी में भी। तो ये दीन जो है ना, इस्लाम आकर हमें क्या करता है, हमें तकब्बुर से रोकता है कि भाई तकब्बुर नहीं करो, जो चीज़ हमारे पास है वो हमारी ज़ाती काबिलियत का नतीजा नहीं। ये चीज़, ये बहुत ही अहम एक नुक्ता है जो हमें बच्चों को सिखानी है कि देखें जो भी है हमारे पास, हम जिस जहानत के जिस लेवल पर भी हैं, हमारे नताइज यानी प्रोग्राम यानी एग्ज़ाम्स के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सब कुछ हमारी ज़ाती काबिलियत के नतीजे नहीं, हमारी मेहनत हो सकती है लेकिन इसमें अल्लाह की आता और ये माहौल भी अल्लाह ने हमें अता किया, जिस्मानी व ज़हनी सलाहियतों ये भी अल्लाह की तरफ से अता करता है। हज़ारों ऐसे अवामिल हैं जिन पर हमारा ज़र्रा बराबर भी इख्तियार नहीं, इसलिए अगर कामयाब हैं किसी भी दर्जे में अपनी ज़िंदगी की तो शुक्र करें, तकब्बुर न करें। अगर आप मजबूत हैं तो कमज़ोरों का हाथ पकड़ें, उन्हें धक्का न दें। अगर आपको यानी इल्म के हवाले से, नॉलेज के हवाले से आप ज़हीन हैं, आपको काफ़ी सारी मालूमात आप यानी जानते हैं, आपके हिफ्ज में हैं, तो इसे यानी इस पर गुरूर न करें। अगर आपके पास मालदारी है, माल मिला है, अगर आपके पास यानी फरावानी है, तो ये अमानत समझें। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर इंसान को ये देखना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे अंदर कौन सी सलाहियत रखी है, मेरा मिजाज क्या है, मेरी कमज़ोरी कहाँ है, मेरी कुव्वत कहाँ है,
ان سب چیزوں کا آپ ضرور جائزہ لیں, اور جو شخص اپنے مزاج کو اس طرح پہچان لیتا ہے اپنے بچوں

0: हाँ इसमें भी लोग कमा रहे हैं पैसे लेकिन आपको अपने खानदान अपने अगली नस्ल के हवाले से आपकी भी अपना ख्वाब है ना आपका जो ख्वाब है आप जो सोच रहे हैं आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सोच रहे हैं तो ज़रूर आपकी रहनुमाई और आपकी गाइडेंस ही ज़रूरी है और ये आपका हक है बच्चे उनकी कुछ ख़ास इधर उधर की कुछ दिलचस्पियाँ हो सकती है लेकिन वो इसको हेल्प हैंड की तरह यानी साइड लाइन पर रखेंगे इसको फ्रंट लाइन में नहीं रखना है तो यही मैं बताना चाह रहा था तो यानी आजकल का एक वो जो एक बड़ा यानी स्लोगन है लोग बार बार कह रहे होते हैं बच्चों को सिर्फ उनकी दिलचस्पी के राह में रखा जाए ये वो तो दिलचस्पी दरअसल यानी जुमा रिफ्लेक्शन प्रोग्राम में इसको अगर शरीयत के इसको ट्रैक से इसको यानी रिलेट करूं तो बंदा जो है ना अपने तमाम अल्लाह सुभान व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है और बार बार हदीस में आया कि रज़ा रब्बी फिर रज़ा अलवालिद अल्लाह तआला की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और फिर ऐसी बात भी है कि बच्चे माँ बाप जो है ना वो अच्छा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो वो जो राह इख्तियार करते हैं बाज़ औक़ात काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं माँ बाप जो ट्रैक पर देंगे उसी ट्रैक पर वो चलेंगे और बाज़ औक़ात कुछ बच्चों की अपनी दिलचस्पियाँ भी होती हैं उसे भी नज़रअंदाज ना की जाए लेकिन यानी आजकल के माहिरीन जो तरबियत है वो कह ज़रूर कहते हैं कि भाई हाँ अपने बच्चों को आप यानी उनकी दिलचस्पी पर छोड़ दें वो जैसे चाहते हैं वैसे करने दीजिए एक हद तक सही है लेकिन फिर भी उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी की एक जगह होनी चाहिए और माँ बाप की एक बड़ा एक रोल और किरदार होना चाहिए इस मौजू पर इस मौजू के ऐसे आप छोड़ देंगे कि हाँ भाई बच्चा जो जिस ट्रैक पर वो जाना चाहे तो उसी पर यानी वो लगा रहे ऐसी यानी ये ज़रूरी नहीं कोई बच्चा अगर जैसे पता नहीं ख़ानदान की अपनी दिलचस्पी नहीं है लेकिन बच्चा वो मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि वो रैप गाने की तरफ बड़ी बड़ी दिलचस्पी ले रहा है और वो पूरे दिन रैप में पड़ा हुआ तो कि बच्चा माँ बाप क्या उसे छोड़ देंगे कि भाई तू रैप गाना कर यानी छोड़ सकते हैं मैं इस पर कोई तंकीद नहीं कर रहा कोई माँ बाप ऐसे अपने बच्चों को छोड़ सकता है लेकिन कुछ ऐसे ख़ानदान होते हैं जो जिसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं उनकी यानी वो सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे इन मौजूआत से जुड़ेंगे ये वो तो उनका हक बनता है कि वो अपने माँ बाप को अपने बच्चों को सही जो उनको जो सही लग रहा है कि उस ट्रैक पर बच्चों को लेके आने की कोशिश होनी चाहिए यूँ नहीं कि बच्चों को जो भी दिलचस्पी भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो ये जो बना हुआ है ना कि इस दुनिया में फ्री हर कोई जो जिसकी जो ख्वाहिश होती है वो उसी पर ट्रैक पर चल जाए और बस आगे बढ़े तो ये तसव्वुर दरअसल यानी एक हद तक पूरी आज़ादी इस चीज़ को इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता ये बिल्कुल वाज़े है पूरी आज़ादी इस्लाम ने एक दायरा आपको दिया है कि इस दायरे में आपको रहना है और इस तरह बच्चों की तरबियत करनी है हाँ अगर इस दायरे में रहते हुए आप आज़ादी अपने हुर्रियत का फ़ायदा आप उठा सकते हैं और इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अगर उसमें ये आज़ादी ना हो यानी इस आज़ादी को अगर आप इस्लाम के जो दायरे को आप क्रॉस कर जाएँ तो उस पर जाके मसला बन रहा है और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ तक कि माँ बाप के यानी जो फरमान है इसकी कितनी अहमियत है इस्लाम में कि माँ बाप अगर कुछ भी बोलें सिवाय इसके कि शिर्क के हवाले से और ये वो इन चीज़ों को हमें यानी उनकी बातों को मानना चाहिए ठीक है तो ये काफ़ी सारी इधर उधर की बातें हो गई बात हो रही थी हमारे बच्चों की ख़ास सलाहियत काबिलियत उनको हम कैसे गाइड करें तो बहुत ही एक मौजू है यानी दिलचस्प मौजू है इस सिलसिले में आप अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर रहे हैं हमें भी ज़रा बताइए चूँकि इन दिनों का बड़ा कि ये ख़ास ये बात हो बनती है चूँकि आजकल के बच्चे तो हम जैसे नहीं हैं वो तो काफ़ी आज़ाद दिल के हैं आज़ाद जहन के हैं जिसमें ये बात आती है कि भाई हमको पहले की तरह हम उन्हें इस तरह तरबियत नहीं कर सकते कि माँ बाप जैसे कहेंगे वैसे उन्हें चलाना है हमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी कौन है हमारे साथ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अल्लाह सुभान व तआला अपनी रहमत और बरकत का मामला करे हम सब से जी ज़ुल्कनैन भाई क्या हाल चाल
1: الحمدللہ آپ کا آج کا جو سبجیکٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور ایز اے پیرنٹ ٹچنگ آور ہارٹ

0: अच्छा आपकी एफएम की थोड़ी सी ट्रांसमिशन कुछ सेकंड या मिनट के लिए डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल नॉइज आ गया था।
1: जी जी जी जी बताइए क्या हाल था।
0: तो आप ये जो बच्चों वाली बात है, ये बिल्कुल इनको चॉइस और ये जो चीज़ें हैं ये उनकी तालीम को देख के दी जाती हैं, आदात के ऊपर अखलाकियात के ऊपर कोई चॉइस नहीं है। अब खास तौर पे हमारे दीन में अब ये कोई नमाज रोज़ा या ये जो हैं बहुत सारे हैं नहीं रखते तो बोले इनकी चॉइस है, देर इज़ नो चॉइस।
1: सही।
0: या रेड लाइट के ऊपर कोई बोले जी मैंने इसको क्रॉस करना है, देर इज नो चॉइस। सो मैनी रीजन, यहाँ सिर्फ एम्बुलेंस को क्रॉस करने की आदत है, आम आदमी के लिए कोई चॉइस नहीं है।
1: बेशक, बेशक।
0: तो इसके लिए हर चीज को डिसिप्लिन में और जिंदगी इंसान में और जानवर में फर्क ही ये रह जाता है। और आपने अभी वो जो कहा ना माशी तौर पे या इकोनॉमिकली प्रोस्पेक्टस से, मैं ये सोच रहा था एक जमाना था यूरोप वाले अरब में आ रहे थे तालीम के लिए, और हम लोग जब अपने बच्चों को सोचते हैं कि वहाँ उन्होंने पढ़ने के लिए जाना है तो फिर हमारी अखलाकियात बड़ी ख़त्म हो जाती हैं। हमारा प्रोस्पेक्टस, हमारा मकसद, हमारा गोल है कि इन्होंने वहाँ जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इदारे कायम ही नहीं है जो उनको यहाँ के माहौल से, यहाँ के दीन से, यहाँ की अखलाकियात सिखाएं। जब वहाँ चले गए तो वहाँ की अखलाकियात, वहाँ की तालीम, वहाँ का माहौल हमारे कंट्रोल में नहीं है।
1: सही,
0: इसका
1: सही।
0: मतलब है कि हम अपने बच्चों की इन चीज़ों से हाथ धो बैठ रहे हैं, फिर वो जो उस वक्त सीख के आता है, यंग जनरेशन होती है, उसको लगता है कि मैंने जो कुछ पाया है उनकी बदौलत पाया है, तो वो उसको डिफेंड करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और वो चूँकि जवानी के उरूज पर होते हैं, उन्हें तो वो चीज़ लग रहा होता है कि जो मैं अभी देख रहा हूँ यही जो बिल्कुल सही है और यही हक है। अगरचे एक अरसा गुजरने के बाद सब कुछ मालूम होता है कि माँ बाप जैसे कह रहे थे
0: अरसे के बाद, और माँ बाप का वो जो अच्छा टाइम है वो उनके साथ समझ लो इख्तलाफात या टेंशन में गुजर जाता है।
1: सही, सही,
0: जब वो उसमें
1: हर एक के साथ ये मामला होता है।
0: और अगर जैसे हमने भी पढ़ा था कि अपनी जमीन के साथ आप राबता रखें, जो कोई खुशकिस्मत है जिनके पास कोई जमीन है, जरई जमीन है, आने वाले वक्त में यही प्रेडिक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नौकरी, इस्लाम में नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद पहले भी आप इस्लाम में आपका इल्म हुनर तिजारत नौकरी का कॉन्सेप्ट या जॉब का कॉन्सेप्ट यूरोप वालों ने और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट पे अंग्रेज़ों ने दिया कि ये हमारा नौकर है, ये प्रिविलेज है, इसके ऊपर वो है, आप फ़ख्र का इजहार करें, फिर आप अपनी उनके साथ ना वफादारी को साबित करें, अपने ही लोगों को मारें, उन्हीं को कंट्रोल करें। यानी वो उन्होंने यहाँ पे ह्यूज लोगों को कंट्रोल करना था तो उनको यहाँ वफादार चाहिए थे। अब जो उनका नौकर था तो उसको वो जो समझ लें कि स्टेट पावर मिलती थी, तो इस चीज़ के ऊपर ना वो सरकारी नौकर, आज तक सरकारी नौकर का कितना प्रिविलेज है, बाकी मुल्कों में इतना नहीं है, आप स्पेशलाइज हैं या कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है। और दूसरी बात है कि अगर लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं क्योंकि उनको वो नहीं मिला, ज़मीन में मैंने अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैं कोड गलत ना करूं, अल्लाह ताला ने खैर बरकत रखी आपकी ज़मीन, आपके पास बहुत ऑप्शन है। अब आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, एक तो ज़मीन आप सिर्फ इल्म और शोर हासिल करें, देखें ज़मीन के अंदर आप कोई भी चीज़ काश्तकारी करें है ना अल्लाह की नेमत, इसमें आम है, आड़ू है, ऑरेंज है, व्हाटसो एवर है, बादाम लगाएं, एक ही ज़मीन एक ही पानी, लेकिन वो आपको कितनी मल्टीपल चीज़ें दे रही है।
1: अच्छा अच्छा ज़ुल्क़र्नैन भाई, ज़रा हम मौजू से ज़रा रिलेट करते हैं, आपके इस मौजू को भी हम सुनेंगे। आप ज़रा आखिर में ये बता दीजिएगा कि जैसे आप इस मकाम पर पहुँचे हैं, आज जिस मकाम पर भी ही आप हैं, तो वालिदैन के साथ आपके इस मकाम तक पहुँचने के हवाले से उनका क्या किरदार रहा है, या फिर उन्होंने आपकी जो भी सलाहियत है इसको कैसे एक्सप्लोर किया, या फिर आपको कैसे सपोर्ट किया
0: इसमें? इस चीज़ में ना मैं समझता हूँ अल्लाह की रहमत या हमारे बिल्कुल बराबर में मस्जिद का बड़ा किरदार रहा। फिर वहाँ पर लाइब्रेरी बन गई।
1: अच्छा।
0: नई लाइब्रेरी बन गई तो ये शौक रहता था कि जो नई किताब आए हम पढ़ें।
1: अच्छा।
0: जब आप किताबें पढ़ने लग जाते हैं तो आप दीन से टच हो जाते हैं, फिर यही चीज़ें आप घर में लेके आते हैं तो आपका कनेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता
1: है। आप जिस इलाके में रहते थे या फिर आपके बाजू में जो मस्जिद उसमें लाइब्रेरी थी उस जमाने की बात करें,
0: हाँ उन्होंने लाइब्रेरी नहीं खोली तो हम जो जितने भी अपने मोहल्ले में हमारे दोस्त थे ना, तो हमारे अंदर रेस ये

0: चलती थी कि जो नई किताब आई है किसने पहले पढ़ी।
1: ओहो, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात।
0: इसी ताक में रहते थे, नई किताब आए और हम पढ़ें या फिर हम घर ले जाएं, 3 days या 1 week के लिए होता था, तो फिर हम ना इसको शेयर करते थे। ये जो पढ़ना पढ़ाना किताब के साथ, ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तो उसमें हम सीखते थे और दीनी किताब थी, और उसमें दीनी खाली नहीं थी, दीन को साइंस के साथ भी
1: आपके मालूमात का जो अहाता है, माशाल्लाह से आप काफ़ी तारीखी पहलू से भी बात कर लेते हैं, अखलाकी पहलू से, ये वो, तो इससे पता चलता है कि आपने स्टडी की है, आपने काफ़ी सारे मालूमात यानी किताबें पढ़ी हैं, इस बात का खास सबूत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके बच्चों की तरबियत के हवाले से भी इंशाल्लाह आप अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं। तो यानी बहुत बड़ी बात है, आपने मस्जिद की लाइब्रेरी की बात की, तो ये जो हमें सुन रहे हैं, आप अगर परदेसी हैं, आप अपने मुल्क में मस्जिद में इस तरह की लाइब्रेरी वगैरह अगर आप कर सकते हैं, और पूरे समाज को जो माशरा है आपके इस मस्जिद से रिलेटेड, तो इनको भी आप कैसे वो सही तरीके से मस्जिद से भी जुड़ें, मस्जिद की लाइब्रेरी से भी जुड़ें, इस तरह की अगर मुसाबकत की जो बात आपने की, जो एक कंपटीशन के भाई कौन सा बच्चा ये पहले लेगा, फिर कौन पढ़ेगा इसके बाद, सीरियल लगाना, तो ये बहुत यानी दिलचस्प बात है दरअसल।
0: बिल्कुल, और यहाँ हमें ये सहूलत मौजूद नहीं, और वही जैसे बताया कि अब बच्चों ने दूसरे मुल्कों में पढ़ने जाना है, वहाँ की लैंग्वेज सीखें, वहाँ के मामलात सीखें, उनको देखें, तो दीन को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। हम लोग भी जितनी घर में कोशिश करते हैं, लेकिन एक माहौल की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप एक क्लास में, एक अस्तादजा में, अब जो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं और आपका हल्का अहबाब दोस्त होते हैं, कॉम्पिटिशन घर में एक यूज टू बात लगती है, वो उन पे इतना असर नहीं होता।
1: सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा,
0: तो इस वजह से अब ये चीज मिस है। अपनी कोशिश जरूर करते हैं कि वो इन चीजों को एक्सप्लोर करें, देखें, और इसीलिए जब तक मैं नमाज के लिए नहीं जाता, आपका मैं प्रोग्राम हमारे घर में रेडियो रखा है इतना अच्छा, आप इतनी तहकीक और इल्म शेयर करते हैं, ये देखें जो इतनी आप बात करते हैं आपने हवा में नहीं कर ली, आपका इसमें इल्म है, इतनी कोशिश है,
1: जरूर जरूर,
0: इसकी बड़ी अहमियत है।
1: जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आखिर सिर्फ एक जुमले पर, अगर यानी आप अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से या फिर किसी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कोई अगर अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से फ़िक्रमंद है, क्या वो अपने बच्चे की इस काबिलियत या सलाहियत के एक्सप्लोर पर रहे, या फिर वो अपने माँ बाप अपने तरीके से वो जो खुद सोच रहे होते हैं, वो अपनी यानी वो जो बच्चों को देखना चाहते हैं आगे जाकर, उसी पर बच्चों की तरबियत करें?
0: नहीं नहीं, उसकी करेक्शन होनी चाहिए। अगर वो रॉन्ग कहते हैं ना, कि अगर आप अपने हाईवे पे हैं और अगर आपने गलत रोड पकड़ लिया तो बड़ी दूर चला जाएगा बंदा, और उसको रिवर्स लाने में भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम भी जाएगा। आप उनके साथ पैरेलल रहें, आप उसके साथ ना GPS पकड़ के देखते रहें कहाँ कहाँ मूवमेंट है, कोशिश है जहाँ कोशिश है वहाँ आप डिस्कशन करें, बातचीत करते हैं, देखते हैं उसका लाए अमल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी बेटी जॉर्जिया में पढ़ रही है,
1: अच्छा,
0: तो उसके लिए हम वहाँ खुद गए, उसकी माशाल्लाह एक क्लास फेलो साथ में मिल गई, वहाँ हमने देखा तो और भी मिले। सही है, अभी बेटा भी है, वो भी कहीं एफर्ट कर रहा है कि जाने के लिए, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, गाइड कर सकते, गाइड कर सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ देयर लाइफ है। और बाकी फिर जमीन में लास्ट वर्ड, अल्लाह ताला ने जिनके पास भी जमीन है, तो जमीन के अंदर अल्लाह ने जैसे कह रहे मैंने खजाने छुपाए हैं, तो आज इतनी चीजें सुपर फूड या इतनी चीजें हैं कि लोगों के अगर रोजगार जाए ना, तो अपने बच्चों को जमीन से टच करें, और मेरे लिए दुआ करें हमारी जमीन पे जिसने कब्जा किया, मुझे बड़ा शौक है कि मैं कुछ उगाऊं वो करूं वो अगर हमें मिल गई तो मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट करूं।
1: अल्लाह अल्लाह आपको आपकी तमाम हकूक आपको जो है ना उसके पर यानी कामिल कुदरत नसीब फरमाए और मिल्कियत आपके लौटा दें, और किसी तरह की कोई मुश्किल रुकावट का सामना न करें इंशाअल्लाह।
0: ओके जी,
1: जरा जरा बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकुल्लाह खैर, बारकल्लाह फिकुम। तो जी सामने कराम, एक ब्रेक की तरफ रुख करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, और इस डिस्कशन के साथ जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 4343477।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले।

यानी काफ़ी अहम रोल प्ले करती है माँ, तो बच्चे की शख्सियत पर काफ़ी हावी होती है माँ की शख्सियत। यहाँ तक कि आज मेडिकल साइंस से हमें ये भी बता रही है कि हमल के दौरान माँ की ग़िज़ा, उसकी जिस्मानी सेहत, उसका जहनी सुकून और उसकी मजमूई जो कैफियत है, ये बच्चे की नशोनुमा पर गहरा असर यानी डालती है। तो हमल के दौरान शदीद ग़िज़ाई कमी हो तो बच्चे की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा मुतासर होती है। तो इस्लाम ने 1400 साल पहले इस हकीकत की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। चूँकि इस्लाम में नेक सेहतमंद और साले ख़ानदान के इंतखाब पर ज़ोर दिया गया ना, हिफ्ज़ुन नस्ल की बात अगर आप करें तो ख़ानदान की हिफाजत, ये इस्लाम ने जिस तरह इस पर तवज्जो दिए, किसी और दीगर किसी थॉट ने, किसी फ़लसफ़े ने, किसी मज़हब ने, किसी ने भी नहीं इस पर इतना तवज्जो दिया है जितना इस्लाम ने दिया है। तो इस्लाम जो पांच चीज़ें होती हैं, हिफ्ज़ुल नसब, हिफ्ज़ुल माल, तो ये चीज़ें काफ़ी अहम है। और इस्लाम ने ये बताया है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कि कहें कि पैदाइश के बाद जिस तरह की तरबियत होती है वही ज़्यादा मौसर है, बल्कि नहीं, आप जब बच्चे की माँ इख्तियार करते हैं कि आपके घर में बीवी लाते हैं तो उसी यानी वही यही फ़ैसला बड़ा मुअस्सर होता है आगे जाके आपके बच्चों की जो तौर तरीक़े हैं, अतवार हैं, उनकी जो किरदार हैं इस पर। तो आप उसी वक्त आप फ़ैसला कर लिए होते हैं कि आपने अपने बच्चों को कैसे देखना है, आप अपने बच्चों के हवाले से क्या मुस्तकबिल सोच रहे हैं, उसी एक फ़ैसले पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक बीवी भी जब वो कोई शौहर इख्तियार करता है तो वो एक फ़ैसला ले लेता है, कम से कम उसके दिल में एक वो यानी उसके जहन में एक तस्वीर आ जाता है कि हाँ मेरे बेटे कैसे होंगे। तो इसी वजह से ये काफ़ी अहम है कि आपने अगली नस्ल या आपका सिलसिला, ख़ानदान का जो सिलसिला है, इसकी हिफाजत के लिए आपने कैसे इकदाम करने हैं और इसकी कितनी अहमियत है। सामने कराम, इंसान की शख्सियत जिस तरह हमने कहा कि ये जेनेटिक है, ये एक बात है, लेकिन इन्वायरमेंट इसका भी असर है। ये भी ज़रूरी है, जैसे कि हमने पहले कहा कि इन्वायरमेंट, माहौल भी आपने सही देना है उन्हें। तो वो कई चीज़ें ऐसे होती हैं वरासत में बच्चा ले लेता है, लेकिन बहुत कुछ माहौल से भी सीखता है। तो माहौल भी आपने सही तरीके पर यानी इसको इसकी निगरानी करनी है। अच्छा जी, या इस्लाम में चूँकि माँ के हवाले से बात हो रही है बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो यहाँ रज़ात की बात आ जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग की। तो ये काफ़ी ज़रूरी है यानी इस दौर में जब बच्चों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी मसरूफियत की वजह से ये वो, लेकिन बच्चे को दूध पिलाने वाली खातून की शख्सियत, अखलाक, माहौल की अहमियत, ही अगर आप इस सीरत से इसको रिलेट करें तो आपको सीधा सीधा इसके जो है ना कई दलाइल ऐसे मिल जाएंगे कि इसकी कितनी अहमियत है। कि यहाँ तक कि बच्चों की जिस्मानी सेहत, जो इम्यूनिटी है और दिमागी नशोनुमा है, इसमें माँ का दूध जो है ना बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये काफ़ी अहम है। तो इस सिलसिले में तो इसको हम डॉक्टर वगैरह मेडिकल साइंस में भी ये बात आज से क्लियर है कि हर वक्त जहाँ पर भी आप देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से वो कहते हैं कि नहीं यही ज़्यादा अहम है, इसी में बच्चे की ज़्यादा सेहत के हवाले से वो कह रहे हैं कि यही ज़्यादा मुफीद है। तो इस बात को हालांकि उस दौर में मेडिकल साइंस जो आज जिस सूरत में हम देख रहे हैं वो तो इस तरह नहीं था ना, लेकिन फिर भी उसकी अहमियत वो सही से समझते थे। और किस तरह जो है ना यहाँ तक कि दूध पिलाने वाली खातून कौन होगी, वो उसका ख़ास एक फ़ैसला किया जाता था कि किसकी उसकी यानी कौन से नसब से है, क्या ख़ानदान है, क्या कुछ किरदार है माँ का, यानी मुर्दा या दूध पिलाने वाली माँ का। अच्छा जी, तो ये तरबियत के कुछ राज हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो एक छोटे से ब्रेक के तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाह हम

0: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़माने के नाम प्रोग्राम का बस अब 8 मिनट रह गए हैं और आप जो भी हमें सुन रहे हैं आप शायद ज़रूर मस्जिद की तरफ रवा दवा होंगे और बस टाइम तो ज़्यादा नहीं बाकी है, तो जो हमें सुन रहे हैं जल्द अज़ जल्द तैयारी मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि जुमे से पहले दरअसल ये प्रोग्राम एक रिमाइंडर के तौर पर है कि भाई जुमे का वक्त आ गया है, इसकी अपनी अहमियत है, तो इसमें जल्द जल्द हाज़िरी देना ये काफ़ी अहम है। चूँकि आप जब इसकी अहमियत देंगे, बच्चों को लेकर इस तरह साथ जाएंगे पहले पहले, तो इस अजीम शान महफिल को आप इस तरह इसकी इम्पोर्टेंस देते हुए इसको इंजॉय करेंगे, इसकी अहमियत देंगे, तो ये बात भी बच्चों में मुंतकिल होगी। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आजकल ऐसे भी लोग नज़र आते हैं कि यानी ईदों में सिर्फ उनकी मुलाकात होती है मस्जिद से, सिर्फ ईदों में जाते हैं, तो गैप कहाँ है? आपको क्या लगता है? गैप वही है कि यदि वालिदैन इनको अपना साथ इस तरह नहीं लेके, वो मस्जिद नहीं लेके गए और इस तरह की ख़ास तरबियत नहीं की, तो इस वजह से आज यानी मस्जिद उसे खींचती ही नहीं, या फिर वो एक खिंचाई महसूस ही नहीं करता मस्जिद की तरफ। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है सामने किराम के बच्चों को मस्जिद से जोड़ें और कुरान से जोड़ें और दीनी जो अकदार हैं इनसे जोड़ने की कोशिश करें। अब एक बात को जब आप इस तरह आम, चूँकि दीन इंसानियत की बात ही कहती है, बल्कि इंसानियत को जो सही मरहले पर सही सतह पर जो पहचान कराई है इंसानियत की, दीन ने ही इसकी सही पहचान हमें दिलाया। तो आप दीन को इग्नोर करते हुए आप सिर्फ इंसानियत का बोलबाला करेंगे कि भाई इंसानियत या दीन को छोड़ो इंसानियत की, अरे दीन तो इंसानियत ही है, तो आप दीन के ज़रिए जब समझाएंगे तो ये एक चीज़ जो है ना वो उसमें और जकड़ कर बैठेगी, उसे और सही से समझ में आएगा और ये उसके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। क्योंकि एक रेगुलेशन एक कानून के दायरे में जब वो रहता है ना तो वो उसे सही से फॉलो करेगा, वो आगे जाके इस लाइन से भटकेगा नहीं या नहीं भटकेगा। तो ये काफ़ी अहम है, आप जब चीज़ों को उसी इंसानियत की चीज़ों को हम दीन के जाविये से समझा रहे होते हैं। आजकल बड़ा एक लोग अपने आप को क्या इलीट और बड़े जानने वाले और मुतालिम और बड़े आलिम साबित करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि भाई इंसानियत की बात कहें, इंसानियत ऐसी है, इंसानियत वैसी है, इंसानियत की ये स्लोगन है इंसान। पहली बात तो ये है कि मैं सोच से हंस रहा हूँ, चूँकि देखें दीन ने इंसानियत के खिलाफ कुछ बात कही ही नहीं 1400 साल पहले, आप ये अभी आकर क्या इंकशाफ कर रहे हैं? आपने दीन को कुछ ऐसा हो सकता है कि दीन की कोई बात आप तक गलत तरीके से पहुँचाओ, लेकिन दीन ने तुम्हें इंसानियत की तायीद की है, उसकी हिमायत की है, तो कोई अगर दीन के हवाले से आपको समझा रहा है, आपको बात समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, लेकिन जब वही बात आपको पसंद आ जाती है जब इंसानियत के थ्रू से समझाते हैं, तो ये दरअसल कोई एक गैप है, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि बच्चों की तरबियत के हवाले से या आपके जो मातहत जो भी हैं कारकुन हैं उनकी तरबियत के हवाले से कोशिश की जाए कि भाई आप इस इंसानियत के तमाम पहलू ही को आप उस तरह बताएं, इसकी अहमियत को बताएं और अल्लाह सुभान व तआला से रिलेट करें कि अल्लाह गुस्सा होंगे, अल्लाह ने ऐसा किया है, अल्लाह ने जो कहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है। तो इसको जब इस तरह आप बराह रास्त हमारे जो असल सोर्स हैं इसके इससे रिलेट करेंगे और इस तरह उनको उस जाविये से समझाएंगे तो ये बात और भी ज़्यादा मौसर होंगी बिज़्निल्लाह ताला, हमारे बच्चे और भी ज़्यादा मुतासर होंगे इस तरीके से। तो सामिन इकराम ओवरऑल

जैसे कि हमारी गुफ्तगू हो रही थी बच्चों की तरबियत के हवाले से, हमने ये भी बताया कि इंसान की शख्सियत कैसे बनती है। इंसान हर कोई एक जैसा नहीं, पैदाइश, ख़ानदान, वालदैन, माहौल, तरबियत, आदतें और सोहबत, ये सब इंसान पर असर डालते हैं। तो आप जो भी हमें सुन रहे हैं, बाज़ औक़ात ये भी मुफीद साबित होता है कि भाई हम सिर्फ सवाल छोड़कर चले जाएं, जवाब आप ही के पास हैं। ठीक है, आप ख़ुद ढूंढेंगे, क्योंकि अगर अगर हमारा यानी हमारी कामयाबी इसी में है कि अगर हम आपको यानी महर्रिक मुतहर्रिक कर सकें, कुछ ऐसी बातें हो जाए जो आपकी दिल दिल में आपको ये लगे कि नहीं, इस सिलसिले में तो मुझे सोचना चाहिए, तो यही बस हमारी कामयाबी है। अगर बच्चे की सवाल यह कि अगर बच्चे की तरबियत करनी हो तो सबसे पहले क्या सिखाया जाए, यानी आप कैसे बच्चों की शख्सियत को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपके क्या इकदाम होते हैं, ये एक बात है। बाज़ औक़ात लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि अख़लाक के हवाले से ये वो इन किरदार को संवारने की कोशिश करते हैं, बाद में जाके बच्चे अपने फ़ैसले ख़ुद लेते हैं। इस तरह की भी बात होती है कि भाई पहले कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो जाए, कैरेक्टर सही हो जाए तो बाद में बच्चा सही रास्ते, सही ट्रैक पर ही चलेगा। कैरेक्टर लेस हो तो बाद में वो गलत गलत रास्ते अपने ही से वो भटक जा सकता है। तो इस वजह से कैरेक्टर पर भी हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने अख़लाक के हवाले से काफ़ी अहमियत दी है और कहा है कि मैं यानी तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपने परिवार के सबसे ज़्यादा बेहतर है, तुम में से मैं अपने परिवार के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस्लाम में ये बताया गया कि आप यानी लुक्मा जो आप अपने बीवी के मुंह पे जो लुक्मा उठा रहे हैं, दे रहे हैं, रिज़िक की जो तलाश करके, ये जो घर में जो भी आप लाते हैं और खाने का इंतज़ाम करते हैं, ये सब कुछ ये भी सदका है। तो इस जाविये से, अखलाक के अतबार से अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये भी एक जवाब है कि हो सकता है कि आपके बच्चे की जो अक शख्सियत, आपके बच्चे का मुस्तकबिल आप आसानी से संवार सकेंगे। और वैसा आप उनको उन पर छोड़कर ही, उनकी राय को तरजीह देते हुए ही वो आप यानी सही राह पर, कामयाबी की राह पर आपके बच्चे और आप गामजन हो सकेंगे। ये भी एक तरीक़ा है और मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते हैं, ये आप ख़ुद अपने से सवाल कीजिएगा। तो सामने कराम, इन्हीं सवालात के साथ हम आज के इस महफिल से इजाज़त चाहते हैं। तकनीकी मुआविन मोहम्मद हसन सुदानी और मुझे तलहा अशरफ़ ज़मान को आइंदा मुलाकात के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस

0: इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
1: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टट्टियों पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और हर तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और देखो अल्लाह ने तुम

0: आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।
4: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिकराम, आज की दुनिया में अक्सर लोग बड़े ओहदों, शोहरत और कामयाबी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बरगुजीदा अंबिया अलैहिस्सलाम को क़ियादत के लिए किस तरह तैयार किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसने बकरियां न चराई हों। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या आपने भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं भी मक्का वालों की बकरियां चंद क़िरात यानी मामूली उजरत के बदले चराया करता था। जिस तरह सामिन किराम तमाम अंबिया ने बकरियां चराईं, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की हिकमत थी। उलमा ने इस हदीस की बड़ी खूबसूरत हिकमत बयान की है कि बकरियां चराना सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं था बल्कि एक तरबियत थी। एक चरवाहा क्या करता है? वो अपने रेवड़ की हिफाजत करता है, कमजोर बकरी का ख्याल रखता है, बिछड़ जाने वाली को वापस लाता है, उन्हें अच्छी चरागाह तक ले जाता है, पानी तक पहुंचाता है और खतरात से बचाता है। बिल्कुल यही काम एक नबी अपनी उम्मत के साथ करता है। वो लोगों को हिदायत की चिरागाह तक ले जाता है, गुमराह होने वालों को वापस बुलाता है, कमजोर ईमान वालों की मदद करता है और उन्हें दुनिया व आखिरत की कामयाबी की तरफ रहनुमाई करता है। मजीद उलमा फरमाते हैं कि बकरियां चराने से इंसान में कई खूबियां पैदा होती हैं, सब्र, बुर्दबारी, तहम्मुल, खामोशी, गौर फिक्र और जिम्मेदारी। समने कराम, आज शायद हम में से कोई बकरियां न चराए लेकिन इस सुन्नत का पैगाम आज भी जिंदा है। अगर आप उस्ताद हैं, आप अपने तलबा के चरवाहे हैं,

0: आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है पी फॉर पुल यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है ए यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें ना कि आग के ऊपर। नंबर तीन है एस जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से एस यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान सिर्फ FM 107 पर।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम कससुल कुरान में तलहा अशरफ जमान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामिन किराम, एक नहायत ही दाना और अकलमंद हकीम शख्सियत के साथ आज हम आपको मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में हुआ है। सामिन किराम, मुझे यकीन है कि जरूर आपने गेस कर लिया होगा, सही अंदाजा लगा लिया होगा कि किस पर आज हम बात करने वाले हैं। वैसे एक मशहूर कहावत है ना, वहम का इलाज तो हकीम लुक

लुकमान के पास भी नहीं। आज हम हकीम लुकमान और उनके बेटे की हवाले से एक वाकया जिक्र करेंगे और ये वाकया नसीहत पर मुश्तमिल होगा। लुकमान हकीम अल्लाह के वो नेक और बुरगजीदा बंदे थे जिन्हें रब्बुल जलाल ने हिकमत यानी अक्ल व फहम और दानाई व बसीरत में मुमताज तरीन मकाम अता फरमाया। यहाँ तक कि कुरान करीम की एक सूरह मुबारका को लुकमान के नाम से मंसूब किया गया है। इस सूरह की आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है, वलकद आतैना लुकमान الحکمت ان اشکر للہ, और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि लुकमान नबी नहीं बल्कि फकीह और हकीम थे। क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने लुकमान को इख्तियार दिया था कि नबुव्वत ले लो या हिकमत। उन्होंने हिकमत इख्तियार कर ली, और बाज़ रिवायात में ये भी है कि जब उन्हें नबुव्वत का इख्तियार दिया गया तो उन्होंने अर्ज किया, अगर उसके कबूल करने का हुक्म है तो मेरे सर आंखों पर, वरना मुझे माफ़ फरमाया जाए। क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मंकूल है कि लुकमान से किसी ने पूछा, आपने हिकमत को नबुव्वत पर क्यों तरजीह दी जबकि आपको दोनों का इख्तियार दिया गया था। आपने फरमाया, नबुव्वत बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मनसब है, अगर वो मुझे मेरे इख्तियार के बगैर दे दिया जाता तो अल्लाह ताला खुद उसकी कफालत फरमाता कि मैं उसके फराइज अदा कर सकूं, और अगर मैं अपने इख्तियार से उसको तलब करता तो जिम्मेदारी मुझ पर होती। इन रवायात को इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में नकल किया है। मज़ीद लुकमान के बारे में अहले सियर ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया है, जिसकी असल वजह यह है कि ज़माना कदीम की तमाम तारीखी रिवायात और वाक़यात ज़्यादातर ज़बानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते थे या तो फिर इंजील और तौरात के मरहूने मिन्नत थे, जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में इतनी मरतबा तब्दील किया गया कि दोनों मुक़द्दस कुतुब की सूरत ही मशकूक हो गई। चुनांचे कुरान करीम ने हमें जिस कदर मालूमात अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचाएँ, बस वही मुस्तनद व मुअतबर हैं। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अर्ज़ुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं कि लुकमान कौम आद की नस्ल से थे। जब कौम आद पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ तो हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ यमन मुंतकिल हो गए थे, उन्हीं में लुकमान भी शामिल थे। यमन में उन लोगों ने अपनी हुकूमत कायम की तो लुकमान को बादशाह मुकर्रर कर दिया। वैसे दीगर अकाबिर सहाबा व ताबईन ने की राय इस हवाले से मुख्तलिफ है। इस सिलसिले में इब्न अब्बास, अबू हुरैरा, मुजाहिद और दीगर अकाबरीन का बयान है कि लुकमान एक हबशी गुलाम थे। सईद इब्न मुसैब कहते हैं कि वो मिस्र के रहने वाले और सियाह फाम थे। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि लुकमान मिस्र के जुनूब और सूडान के शमाल में वाक़ कस्बे नौबा के रहने वाले थे। तफ़सीर इब्न कसीर के मुताबिक लुकमान सूडान के नौबी कबीले के एक हबशी गुलाम थे। वैसे उनकी नेक आबिद जाहिद साहिब हिकमत और दाना शख्सियत थी, अरब में वो एक गुलाम की हैसियत से ही आए थे। तफसीर इब्न कसीर में उनके हवाले से एक वाकया जिक्र किया गया है कि हकीम लुकमान एक बड़ी मजलिस में वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मजलिस में दाखिल हुआ और उनके करीब जाकर गोया हुआ कि क्या तुम बनी हसहास के गुलाम नहीं हो? फरमाया, हाँ। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ बकरियाँ नहीं चराया करते थे? हकीम लुकमान ने उसे गौर से देखा और बोले, हाँ ये भी दुरुस्त है। फिर उसने कहा, क्या तुम हबशी नहीं हो? लुकमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फरमाया, हाँ ऐसा ही है, मगर ये बताओ कि तुम पूछना क्या चाहते हो? उसने कहा कि फिर क्या वजह है कि तुम्हारी मजलिस में इस कदर ज्यादा तादाद में लोग आते हैं और बड़े जौक और शौक से तुम्हारी बातें सुनते हैं? लुकमान ने नहायत मोहब्बत से उस शख्स से फरमाया, बरादर अजीज, जो बातें मैं कहता हूँ उन पर तुम भी अमल करने लगो तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। आँखों से हराम चीज़ें न देखो, जबान बेहुदा बातों से रोक लो, माल हलाल खाया करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, जबान से हमेशा सच बात बोला करो, वादे पूरा किया करो, मेहमान की इज्जत करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, बेकार कामों को छोड़ दो। बस यही आदात हैं जिनकी वजह से मुझे बुजुर्गी अता फरमाई गई है। समीन बनी हसहास का जिक्र हुआ है जिनसे ताल्लुक था हमारे आज की जो गुफ्तगू हुई जिस शख्सियत पर लुकमान हकीम का। ये बनी हसहास मिस्र का एक शान व शौकत, रौब व दबदबे वाला, खुदा तरस और तौहीद परस्त कबीला था। हकीम लुकमान कबीले के सरदार की बकरियों के रेवड़ के निगरान थे। वैसे तो ये एक अदना से गुलाम थे लेकिन दुनिया के अकलमंद और ताना तरीन लोगों में से थे। निहायत पाकबाज, शरीफ नफ्स, अक्ल व खुर्द, इल्म और दानिश के पैकर, फहम व फिरासत, ज़हानत व फतानत, तदब्बुर व बुर्दबारी में उनका कोई सान

0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
4: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
5: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
5: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे और वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के अफराद के लिए क्यों ज़रूरी है। अक्सर अफराद समझते हैं कि वैक्सीन सिर्फ बचपन में ही लगवानी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ वैक्सीन उम्र भर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, जबकि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं कि वक्तन फ़क्तन बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। वैक्सीन ख़तरनाक बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद देती हैं। वैक्सीनेशन की बदौलत चेचक जैसी बीमारी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, जबकि पोलियो जैसे अमराज में नुमायाँ कमी आई है। जब लोग वैक्सीनेशन लगवाने में ताखीर करते हैं या उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो बीमारियों के फैलने के इम्कान ज़्यादा होते चले जाते हैं। इससे ख़ास तौर पर जो नौजायदा बच्चे हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं और ऐसे अफराद जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उनको ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता है। वैक्सीन सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद है। बीमारियों की रोकथाम से हॉस्पिटल्स के अखराजात, इलाज मुआलजे की खर्च और काम या तालीम से गैर हाजिरी में कमी आती है। सफ़र करने वाले अफराद को भी चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क जाने से पहले ज़रूरी वैक्सीन के बारे में मालूमात हासिल करें, ताकि वहाँ मौजूद बीमारियों से खासतौर पर इन्फेक्शियस डिजीज से महफूज रह सकें। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, आज तक आपने सुना डिजिटल फ्रॉड के बारे में, यानी कि कोई शख्स आपको कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, लिंक के जरिए या फिर एप्लीकेशन के जरिए फ्रॉड या स्कैम करने की कोशिश करता है। लेकिन हम इस बार बात करने वाले हैं फिजिकल थेफ्ट के बारे में, यानी कि एक ऐसा शख्स जो आपके सामने आता है।

0: आपसे बातें करता है और आपको ठग के यानी कि स्कैम करके चला जाता है। और नए जमाने के इस नए स्कैम में हम बात करेंगे हाईटेक कीलेस कार थेफ्ट के बारे में। मॉडर्न अर्बन एरियाज में कीलेस कार थेफ्ट, जिसे रिले अटैक भी कहा जाता है, एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस फ्रॉड में चोर दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। एक चोर आपके घर के बाहर खड़ा होता है जहां कार की स्मार्ट की रखी होती है, और दूसरा कार के पास होता है। पहली डिवाइस घर के अंदर से की का वायरलेस सिग्नल कैच करती है और उसे दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट करती है। कार इस सिग्नल को देखकर समझती है कि ओनर पास ही है। इस तरह कार का डोर इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है और चोर इंजन स्टार्ट करके कार लेकर फरार हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस बिना किसी फिजिकल डैमेज के कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। फरादे पाउच, अपनी स्मार्ट की को हमेशा एक सिग्नल ब्लॉकिंग फरादे बैग में रखें, और अगर ऑप्शन हो तो की फॉब की वायरलेस सेटिंग को डिसेबल कर दें। स्टेयरिंग लॉक का भी एक सॉल्यूशन है। एक फिजिकल स्टेयरिंग व्हील लॉक यूज करें जो चोरों को रोक सके, और उसके अलावा पार्क सेफली। गाड़ी को हमेशा वेल लिट एरिया या लॉक गैराज में पार्क करें। की को घर के दरवाजे और खिड़कियों से दूर अंदर की तरफ रखें ताकि चोर वायरलेस सिग्नल कैच ना कर सके किसी भी डिवाइसेस से। तो इस तरह के फिजिकल स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा सतर्क और होशियार रहें। और इस महीने हम फ्रॉड अवेयरनेस में यानी कि इस स्कैम की दुनिया के फिजिकल फ्रॉड के बारे में हर बार आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आज के अचीवर से पसंद आई होगी। अच्छा, इनके बारे में आपको ये बता दूं जाते जाते कि ये बहुत छोटे हैं, तो इनको एक कुर्सी पे बिठा कर इनसे बात करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो स्वास्तिक, वी विल से गुड बाय टू एवरीबॉडी।
1: ओके, बाय
0: बाय। बस ये हमें बस याद है, हम टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट जनरेशन के, इंशाल्लाह, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? साइंटिस्ट, राइट? हम नेक्स्ट जनरेशन के बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे सामने बैठे हैं। अभी 8 साल के हैं, लेकिन टिल द टाइम ही ग्रोज अप, ही इज गोइंग टू हैव अ he's going to be at a better place, inshallah, more successful. So, kya pata? Inse mulaqat ho kisi time aur kuch saalon baad and he would be more focused, inshallah. He's still focused, lekin filhal to shararatein karne mein. Mujhe dijiye ijazat. Main hoon aapke saath RJ Safa. Aur junior janab, mein aaj aapne Swastik se baat ki, jinki achievements inki age se nahi naapi ja sakti. Aur filhal to unki age itni 8 saal ki. शरारती हैं, नॉटी हैं, जैसा एक नॉर्मल बच्चे को होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही हैं। थोड़ा सा फोकस्ड, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा आई डोंट नो, थोड़ा सा शाइनेस, थोड़ा सा नर्वसनेस, लेकिन पता नहीं है कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। बट इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू स्वास्तिक। हैव अ ब्लेस्ड टाइम। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।
1: बाय।
0: Saying bye bye to everybody. Bye.
1: Bye.
0: Bye everybody. Bye. सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
2: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं. इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है. ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए. याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं. और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत. सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट. हदीत टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107. दिल से देसी.

Assalamualaikum साथियों, आप सुन रहे हैं इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं छोटी छोटी आदतों की जो एनवायरनमेंट पर बड़ा असर डालती हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एयर ड्राई क्लोथ, यानी कपड़ों को ड्रायर मशीन के बजाय हवा और धूप में सुखाना। ये एक बहुत ही सिंपल सी हैबिट लगती है साथियों, लेकिन इसका इम्पैक्ट एनर्जी सेविंग और कार्बन रिडक्शन दोनों पर बहुत पावरफुल होता है। देखिए, अक्सर हम ये सोचते हैं कि ड्रायर यूज करना सिर्फ एक कन्वीनियंस है, लेकिन इको स्विच हमें बताता है कि कन्वीनियंस कभी कभी एनवायरनमेंट के लिए हैवी कॉस्ट बन सकती है। जरा सोचिए ना, वीकेंड है और आप क्या करते हैं, आप लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकाल लेते हैं। आप कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल कर सीधा ड्रायर में डाल देते हैं, क्योंकि भाई जल्दी काम खत्म करना है ही है। कपड़े 40 मिनट में ड्रायर में रहते हैं, लेकिन उस एक साइकिल में लगभग अच्छी खासी आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाती है। अब अगर एक घर में एक हफ्ते में 3 से 4 दफा ड्रायर यूज हो रहा हो, तो सिर्फ कपड़ों को सुखाने के लिए ही आप कह लें कि सिग्निफिकेंटली आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। इको स्विच अप्रोच ये कहता है कि अगर वही कपड़े हवा में सुखाए जाएं, तो एक हाउस होल्ड अपनी एनर्जी आप कह लें कि 5 से 10% तक रिड्यूस कर सकता है एनर्जी यूजेज को। अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपको सरप्राइजिंग लगेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक क्लोथ ड्रायर होते हैं, ये एक एवरेज साइकिल में इतनी एनर्जी यूज करते हैं जितनी कि एक एलईडी बल्ब 24 घंटे चलने से यूज करता है। एयर ड्रायर कपड़ों की लाइफ स्पैन को 20 से 30% तक कम कर देता है, क्योंकि हाई हीट फैब्रिक्स फाइबर को डैमेज करते हैं। ग्लोबली अगर सिर्फ 1 out of 3 हाउसहोल्ड ड्रायर यूज कम कर देना, तो एनुअली CO2 इमिशंस मिलियंस ऑफ टन्स रिड्यूस हो सकती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि धूप में कपड़े सुखाने से नेचुरल डिसइंफेक्शन होती है, क्योंकि यूवी रेज बैक्टीरिया को रिड्यूस करती हैं साथियों। अच्छा, अब आप कहेंगे हाउ इको स्विच हेल्प्स, तो भाई इसका जवाब सिंपल है, एनर्जी सेविंग मेड सिंपल। यानी कि साथियों, इको स्विच का यहाँ सिंपल सा आइडिया है, मशीन को कम और नेचर को ज्यादा इस्तेमाल करें। जब हम एयर ड्राइंग अडॉप्ट करते हैं, तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक एवरेज फैमिली ड्रायर को हाफ यूज करे, मतलब उसका यूजेज हाफ कर दे, तो वो अपनी कार्बन फुटप्रिंट को 100 किलोग्राम तक रिड्यूस कर सकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप हर वॉश साइकिल के साथ एनवायरमेंट को एक स्मॉल सा एनर्जी ब्रेक दे रहे हो। भाई सोचिए, कतर जैसी जगह पर जहाँ धूप और हीट ऑलमोस्ट आप कह लें कि ईयर अराउंड अवेलेबल होती है, आप कपड़े वॉशिंग के बाद बैल्कनी या ड्राइंग रैक पर रख देते हैं, सिर्फ 1 से 2 घंटे में कपड़े नेचुरली ड्राई हो जाते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। साथियों, इको स्विच के मुताबिक ये रीजन नेचुरल एडवांटेज यूज करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जहाँ नेचर ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी दे रही है, वहाँ मशीन यूज करके अननेसेसरी क्यों खर्चा लगाना भाई। चलिए, अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स की जगह पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला इको स्विच टिप ये है कि कपड़ों को अच्छी तरह स्क्वीज करें, निचोड़ें और फिर

0: उन्हें वॉश के बाद एक्स्ट्रा पानी निकाल कर उन्हें अगर आपने जल्दी सुखाना है तो एक्स्ट्रा पानी निकाल कर फिर उन्हें ड्राइंग के लिए डालें उन्हें जो है वो आप डालें सुखाने के लिए बाहर। दूसरा कपड़े प्रॉपरली हैंग करें ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छी हो और उनसे अच्छी अच्छी खुशबू भी आए। तीसरा शेडेड आउटडोर स्पेसेस यूज करें भाई, अगर डायरेक्ट सनलाइट आप कहते हैं ना कि कपड़ों को खराब कर देती है या कुछ होता है, तो शेडेड आउटडोर स्पेसेस यूज करें जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, वहां पर हार्श सनलाइट आपके कपड़ों को खराब नहीं करेगी। चौथा थिक फैब्रिक्स जैसे टॉवल्स को पहले वॉश करके एक्स्ट्रा स्पिन साइकिल दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्रायर सिर्फ इमरजेंसी या रेनी कंडीशंस में ही यूज करें, रूटीन में नहीं। साथियों इको स्विच का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम स्पीड को बैलेंस करें सस्टेनेबिलिटी के साथ। ड्रायर हमें 30 से 40 मिनट में सॉल्यूशन देता है, लेकिन एयर ड्रायर हमें फ्री एनर्जी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये कि जब लोग एयर ड्राइंग हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नोटिसिबली डिक्रीज हो जाता है, मतलब एनवायरमेंट और वॉलेट दोनों खुश। साथियों आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि हर मशीन का अल्टरनेटिव नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। हवा, धूप, थोड़ा सा पेशेंस, ये तीन चीजें मिलकर कपड़ों को सुखा भी देती हैं और प्लैनेट को सेफ भी रखती हैं। तो भाई अगली बार जब आप लॉन्ड्री करें एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन करें। कैन आई ड्राई इट इन द एयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग माय मशीन ड्राइंग। इसी के साथ साथियों मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहां हर ब्रीज एक सेविंग बन सकती है और हर कपड़ा एक ग्रीन चॉइस। सुनते रहिए हमारे साथ FM 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह कहने की अहमियत के बारे में। इंशाल्लाह कहना एक मोमिन की पहचान है। इसका मतलब है कि हम अपने हर इरादे को अल्लाह की मर्जी के साथ जोड़ देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी प्लानिंग से ज्यादा अहमियत अल्लाह के फैसले की है। अक्सर हम फ्यूचर के प्लान्स कॉन्फिडेंस के साथ बना लेते हैं, लेकिन जब हम इंशाल्लाह कहते हैं तो हम अपनी प्लानिंग में अल्लाह की रहमत को शामिल कर लेते हैं। ये लफ्ज सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि यकीन के साथ कहना चाहिए। ये हम्बल रहने और अल्लाह पे भरोसा रखने की निशानी है। आज का अमल ये है कि जब भी फ्यूचर के बारे में बात करें इंशाल्लाह कहना ना भूलें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: FM 107, दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
4: दोस्तों, कल हमने बात की थी AI की और किस तरह से AI सिटीज जो हैं वो हमारा फ्यूचर होने वाली हैं। फिर हमने AI की बात की थी ट्रैफिक के हवाले से, AI की बात की थी हॉस्पिटल्स के हवाले से, पर अब हम बात करेंगे कि AI सिर्फ हॉस्पिटल्स या फिर ट्रैफिक तक लिमिटेड नहीं रहेंगी बल्कि पूरे शहर को मैनेज करेंगी। देखिए, ये अपने आप में सुन के थोड़ा सा भी शायद उस तरह से इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट या फ्यूचर तो ये इन सारी चीजों का है ही। इन सब पे काम हो चुका है, तकरीबन ये अपनी फाइनलाइजिंग स्टेज पर है और हो सकता है कुछ शहरों में तो सारी प्रोसेस जो है वो ट्रायल बेसिस पे कुछ कंट्रीज में तो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गए हैं। अब बारी है आपकी हमारी कंट्रीज की। देखिए, जब हम बात करते हैं अर्बन मैनेजमेंट और गवर्नेंस की तो किस तरह से AI का रोल होगा ये समझना इम्पोर्टेंट है। AI इलेक्ट्रिसिटी यूज को कंट्रोल करेगा आने वाले वक्त। जब डिमांड ज्यादा हो तो सिस्टम एनर्जी को इफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑटोमेटिकली। वहीं वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो AI वाटर सप्लाई और गार्बेज सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज करेगा, वेस्ट को रिसाइकल करना इजी हो जाएगा। वहीं AI पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करता रहेगा, अगर एयर क्वालिटी खराब हो जाए तो सिस्टम फौरन ऑटोमेटिकली एक्शन ले लेगा। अगर हम सिंपल जिंदगी मैनेज करेंगे AI गवर्न सिटीज में, अगर हम इसको समझना चाहेंगे सिंपल वर्ड्स में, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, दिलचस्प है हमारे और आपके लिए जानना कि सुबह अलार्म AI स्केड्यूल के हिसाब से बजेगा, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा होगा, ऑफिस का रूट AI सजेस्ट करेगा, खाना AI न्यूट्रिशन के मुताबिक रेकमेंड किया जाएगा, हेल्थ कंटिन्यूसली मॉनिटर होती रहेगी AI के थ्रू, यानी जिंदगी ज्यादा इजी और शायद ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। यहाँ मैं शायद इसलिए भी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इस तरह की जिंदगी क्या वाकई हमारी ऑर्गेनाइज्ड है या हम और बहुत सारी चीजों का शिकार हो जाएंगे। नोबडी नोस दिस, बट हाँ कुछ ना कुछ तो ये तो कह ही सकते हैं कुछ हद तक कि हमारी लाइफ थोड़ा सा शायद कंपेरेटिवली आसान हो। और एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस जो हम यूजुअली कहते हैं कि CVO वाला सो बिजी वी डोंट हैव टाइम, ये शायद कहने के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त होगा। आई मीन टू से फिर हमारा टाइम बचेगा तो शायद हम खुद को बिजी कह नहीं पाएंगे, ये पता नहीं कुछ और चीजों में हम खुद को ऑक्यूपाइड कर लें, नोबडी नोज। वेल, AI गवर्न सिटीज के बेनिफिट्स भी हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बल्कि समझा भी रही हूँ कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। एक तो जैसे मैंने कहा टाइम सेविंग, लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, ट्रैफिक कम होगा, सर्विसेज फास्ट आपको मिलेंगी तो ज्यादा टाइम आपका बचेगा। वहीं पर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगी, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, एनवायरमेंट है, सब इम्प्रूव होंगे जिससे लाइफ कंफर्टेबल होगी। वहीं अगर मैं इफिशेंसी की बात करूँ, ओहो हर सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड होगा, एनर्जी वाटर ट्रांसपोर्ट सब इफिशेंटली यूज्ड होंगे, मतलब यूज किए जाएंगे, तो ये भी अच्छा ही बात की जाए तो यस ऑफ कोर्स क्राइम कम होगा और इमरजेंसी रिस्पांस फास्ट होगा। भाई ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ बेनिफिट्स ही होंगे, इसके जो है वो काफी चैलेंजेस भी हैं और रिस्क भी होंगे। देखिए हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क होते हैं और जो सबसे बड़ा रिस्क जिसके चलते मैं इस टेक्नोलॉजी पे इतनी एक्साइटेड नहीं हो पा रही हूँ वो है प्राइवेसी। AI सिस्टम लोगों का डेटा कलेक्ट करता है और इससे हमारी और आपकी प्राइवेसी का इशू हो सकता है। वहीं पर साइबर सिक्योरिटी, जी हाँ, अगर सिस्टम हैक हो जाए फॉर एग्जाम्पल, सोचिए तो पूरा शहर उफ ठप्पड़ जाएगा, पूरा शहर अफेक्ट हो सकता है। और जो बड़ा

डर पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे और आपके जहन में है, दिल में है, वो है जॉब लॉस को लेकर। ऑटोमेशन से कुछ लोगों की जॉब्स तो खत्म होंगी ही होंगी, जैसे ड्राइवर्स हैं या फिर मैनुअल वर्कर्स हैं, पर हाँ कुछ नई तरह की जॉब्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। वहीं हमें और आपको जो डर ही सता रहा है वो है ओवर डिपेंडेंसी का, ओवर डिपेंडेंसी ऑन AI। लोग AI पर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे और अपनी उनकी खुद की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हैं वो तो एकदम खत्म ही सी हो जाएंगी ना। आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पर मुझे कुछ एथिकल इश्यूज भी लगते हैं, जैसे AI गवर्न सिटीज में एथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। क्या AI को इतना पावर देना ठीक है? क्या AI हर डिसीजंस जो भी लेगा वो फेयर होंगे? अगर AI गलती करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा उसका? इसलिए रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट बड़ा जरूरी हो जाता है। वहीं पर फ्यूचर में AI गवर्न सिटीज तो होंगी, एडवांस्ड होंगी, टैक्सी जो फ्लाइंग टैक्सीज का कॉन्सेप्ट है ये आएगा, ड्रोन डिलीवरी सिस्टम होगा, फुली ऑटोमेटिक बिल्डिंग्स होंगी, स्मार्ट होम्स जो खुद डिसीजंस ले रहे होंगे। वहीं पर AI सिटीज स्लोली इवॉल्व कर रही हैं, ये कल्चर भी इवॉल्व कर रहा है, पर आने वाले शायद 10 से 15 या चलो मैक्सिमम 20 से 25 सालों में ये पूरी तरह से रियलिटी बन जाए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि AI गवर्न सिटीज फ्यूचर का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, जहां टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद के लिए काम करेगी। ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ केयर हो, सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स हो, इन सभी सेक्टर्स में AI ऑलरेडी चेंजेस ला रही है और फ्यूचर में ये और पावरफुल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा प्राइवेसी का चैलेंज, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे जिन्हें सॉल्व करना भी बड़ा जरूरी होगा। अगर AI को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जाए तब तो अच्छा है, फ्यूचर सिटीज ज्यादा सेफ होंगी, इफिशेंट होंगी, कंफर्टेबल होंगी। पर अगर इसे उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज नहीं किया गया और इसके हाथ में एक पावर चली गई, क्या हमारी प्राइवेसी को बहुत बड़ा खतरा है? क्या AI हर डिसीजन जो भी लेगा वो फेयर ही होगा? और जो सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में आया, जो मैंने कहा भी आपसे, अगर कोई गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन? पता नहीं। चलिए फिलहाल के लिए तो मुझे आपको डराना नहीं है, बस ये बताना है, तैयार करना है मेंटली अभी से कि आने वाला वक्त किस तरह का है। 1 step to 20-30 हमें और आपको जो है ना मेंटली, फिजिकली, स्ट्रैटेजिकली हर तरीके से प्रिपेयर कर रहा है जानने समझने के लिए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और आज से किस तरह से हमें हमारी स्किल्स को लेकर, खुद को लेकर किस तरह से काम करना है जो हम भी फ्यूचर में इफिशेंट साबित हो सकें। नॉट दैट कि वो पुरानी ऑर्थोडॉक्स स्किल्स पर ही काम करते चले आ रहे हैं, ठीक है, जो एथिकल वैल्यूज है लाइफ में ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ नई स्किल्स को एड ऑन करना ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों मुझे यहाँ पर ना एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, मेरी जो दादी है ना वो हमेशा एक बड़ी प्यारी सी बात कहती थी। वो कहती थी कि बेटा हर 10 से 15 सालों में ना चीजें बदल जाती हैं, नजरिया लोगों का बदल जाता है, नई चीजें आ जाती हैं, नई सोच आ जाती है, नया स्टाइल आ जाता है काम करने का, लेकिन दो चीजें जो जिंदगी में ना कभी बदली है और ना कभी बदलेंगी और वो है अच्छाई और सच्चाई। और इन दोनों चीजों का ताल्लुक पता है किससे है? इंसानों से, मशीनों से नहीं। बस कहीं ना कहीं ये लाइन ही मुझे थोड़ी सी तसल्ली देती है। बाकी आपका और हमारा फ्यूचर कैसा होगा नोबडी नोज़ दिस वेल, लेकिन हाँ खुद को अभी से तैयार करना दिस इज इन आवर हैंड, अभी सच्चाई से और अच्छाई से। फिलहाल मैं नाजिया और शकीब अहमद अब हम दोनों आपसे यहाँ इस टॉपिक पे इजाजत लेंगे। ना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: Welcome to the world of technology.
1: काश मैं ये आवाज ढंग की और निकालता, पर आप समझ गए ना टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. काफी सस्ता साउंड इफेक्ट मैंने आपको सुनाया है. और क्या करूं. अस्सलाम वालेकुम दुनिया, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड. और आज जो है हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में वापस चलते हैं, जहां पर हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ बदलता रहता है. एंड उनमें से मोती चुनकर मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं आज फिर से. तो आप जानते हैं फॉर्मेट बड़ा सिंपल है. सबसे पहले कुछ एप्स या फिर कुछ काम की चीजें इन एप्स दिस वीक, एंड देन गैजेट जो आपके काम आ सकते हैं, और फिर खबरें जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जलजला लाई हुई हैं. तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद एप्स दिस वीक, क्योंकि बहुत कुछ है आपको बताने के लिए. इस हफ्ते मैंने सोचा कि आपको वो AI टूल्स बताए जाएं जो आपके लिए इमेज और वीडियो जनरेट कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल. मैं पहले बता दूं, दीज एप्स वर्क फ्री एज वेल, बट दे आर बेटर इन देयर पेड वर्जन्स. ओके, ज्यादा महंगे नहीं है. एक ऐप है थोड़ी सी, मगर आई विल एक्सप्लेन. लेट्स गो ऐप दिस वीक. ट्रेंडिंग ऐप्स. तो नंबर वन ऐप जो है ऑन द लिस्ट जो मैं बताना चाहूंगा, AI तो है ही एंड अपना काम करने में बहुत आगे भाई. इसके जरिए अगर आप वीडियोस बनाने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया जो काम कर रही है आपको हैरान कर रही है. आप कुछ वीडियोस देखते हैं AI की और सोचते हैं बाबा इतना आगे निकल के AI, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप अपने इमेजिनेशन को रन कीजिए इस AI पे एंड यू विल गेट द वीडियो. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको यूज करते करते यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसका नाम है Seedance 2.0 AI. It lets you create video and image as well. And सबसे best part, अगर आपको camera angle से खेलना आता है तो अब बहुत ही बढ़िया है. नहीं आता है तो आपकी कोई भी दिमाग में स्टोरी है, मान लीजिए I'll give you an example. मान लीजिए आपकी स्टोरी ऐसी है कि एक बंदा जो है वो अपने गांव गया है ट्रेन पकड़ के, या फिर वो यहाँ से एयरपोर्ट गया है, एयरपोर्ट से जहाज पकड़ के अपने होम टाउन गया है. तो इस पूरे सीन को आप किस तरीके से शूट करेंगे, अगर आप चाहते हैं इसका एक AI वर्जन

सेशन बनाना, तो आप जो है ये सेम सीन चैट जीपीटी को बताइए, वहां से प्रॉम्प्ट लीजिए, उसे प्रॉम्प्ट मांगिए, वो प्रॉम्प्ट सी डांस 2.0 में डालिए, फिर आप देखिए कितना कमाल होता है आपको, क्योंकि एक्सप्लेन करने करना और सीखना है अगर एआई मूवीज कैसे बन सकती हैं, तो दिस कैन बी योर स्टार्टर पैक सी डांस 2.0. इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, पर पेड वर्जन में हाईली आपको रिकमेंड करूंगा इफ यू आर मेकिंग वीडियोज और मार्केटिंग वीडियोज ऑन डेली बेसिस एंड आपके काम आ सकता है. सो गो फॉर इट. गोइंग ऑन टू अनदर वन. अब अगला जो है ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये बहुत ही फ्लूइडली काम करता है, बहुत फ्लूइड ऐप है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ये है क्लिंग, KLING, क्लिंग 3.0. इसके बारे में आपने बहुत सारे एड्स अपनी स्क्रीन पर देखे होंगे जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या आपने किसी सुना होगा, आई डोंट नो, मगर क्लिंग AI works amazingly well. ये वैसा काम करता है जैसे किसी जमाने में ग्रॉक किया करता था. मैं ग्रॉक पे भी आऊंगा, उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत सिंपलर वर्जन हुआ करता था ग्रॉक एक टाइम पे, और वैसा ही क्लिंग काम करता है, मगर इसकी वीडियो में जो वीडियोस में जो क्रिस्प है वो कमाल का यार. इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टर वीडियोज. अगर आपको एक शॉर्ट किसी किस्म का एक मार्केटिंग आइडिया इसको देना है, मार्केटिंग वीडियोस बनाने हैं, तो इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता. आज के ज़माने में जहाँ पे हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आएंगे आपका सामान बेचने के लिए, उस जमाने में यू कैन यूज दिस AI टू मेक अ लॉट ऑफ स्टफ मच मच ईजियर एंड मोर क्रिएटिव. तो अगर आप चाहते हैं कि AI भी इस बहाने सीख लें एंड यू गेट टू जनरेट वीडियोज एज वेल, दिस कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. सो क्लिंग 3.0 ये AI है, मैक्सिमम आउटपुट देता है. अगर आपको एक पेड ऐप से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, दिस कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्स दैट यू हैव यूज्ड. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. अगला, जैसे मैंने कहा मैं ग्रॉक की बात करूंगा, तो ग्रॉक की बात करी मैंने लास्ट में, क्योंकि ग्रॉक बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया इमेजिनेटिव वीडियो बनाता है. ग्रॉक इमेजिन जो फीचर है बहुत कमाल का है. ग्रॉक का कैजुअल वे ऑफ रिप्लाइंग थिंग्स, ग्रॉक का इमेज जनरेशन, Everything is wonderful. एक शिकायत है मेरी, ग्रॉक सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल highly professional बन के use करना चाहते हैं, because ग्रॉक charges a lot of money. ग्रॉक का एक महीने का subscription is 99 रियाल्स. अभी recently उसका एक offer आया था, but I think that should be lower down, क्योंकि ग्रॉक 99 रियाल के बाद भी काफी limited चीजें देता है और कहता है कि अब और generate नहीं हो पाएगा. So if that is fixed, ग्रॉक बहुत कमाल का है, but still आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं. अभी भी इसका जो चैट वर्जन है, जो चैट करता है, वो बहुत अच्छे रिप्लाईज देता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको बाकी जो फॉर्मल रिप्लाईज मिलते हैं, थोड़ा कैजुअली रिप्लाई करता है. एंड ग्रॉक इज अमेजिंग विद वीडियो एडिटिंग एज वेल. हाँ, वो ऑफकोर्स लिमिटेड है, मगर आप एक दिन में कम 3-4 फोटोज तो अपने एडिट कर ही पाएंगे. समटाइम्स इस पर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा आ जाता है, एटलीस्ट ये कहता है, क्योंकि पेड वर्जन नहीं है, बट स्टिल काफी अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ फोटो एडिटिंग एंड एवरीथिंग. अगर आप फ्री वर्जन देख रहे हैं, पेड वर्जन सिर्फ उनके लिए जो बिल्कुल डेली वीडियोज बनाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, दिस कैन बी रियली हेल्पफुल. तो ये थी एप्स दिस वीक. अब जरा आगे बढ़ेंगे towards the gadgets. Cool gadgets. By number one on gadgets on the list, number one as in ranking नहीं, सबसे पहले बात करूंगा मैं almond oak backpack की. almond बादाम oak backpack. ये backpack ऐसा है कि आपने एक मर्तबा खरीद लिया, दुनिया भर की छुट्टी. आपको इसके बाद कोई बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इस पे पानी फेंकने दें, कोई दिक्कत नहीं है, पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर रुकेगा, एकदम सूख जाएगा. ये बैग इतना कमाल का है, मैं जानता हूं मैं गैजेट में बैग की बात कर रहा हूं, मगर मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस. ये बैग सच में बहुत बढ़िया है भाई, आमंड ओक बैकपैक. मैं अभी इंशाल्लाह जब छुट्टी पे जाऊंगा तो मैं यही कतर लेके आने वाला हूं. एंड आई सजेस्ट कि आप इस बैग पे नजर बनाए रखें. अगर आपके बैग में भरी रहती हैं चीजें और आपको लगता है कहां क्या रखा है और आप हाथ डाल के टटोल रहे हैं, दिस कैन बी वन बैग सिंपल सॉल्यूशन. एवरीथिंग कैन बी कैप्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल. आई लव्ड इट. तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं, अगर आपको खुद एक बार देखना है. ऑफकोर्स आंखों देखी बात की बात ही कुछ और होती है. तो आमंड ओक बैकपैक एक बार ले लिया आपने, फ्यूचर में बैगों की जरूरत ही नहीं है भाई, देख लो आपने आप. एंड नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. और हाँ, सॉरी, ये बजट में भी है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगला जो है एक टैक बैग है. ये भी एक बैग है, लेकिन एक छोटा वाला बैग है. आपके पास वायर्स हैं,
चार्जर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैग सेफ चार्जर होगा, या आपके पास पावर बैंक्स होंगे, यूएसबी होगी, ये सब जो है ना बैग में आप रख देते हैं, फिर आपको हाथ डाल लगे टटोलना पड़ता है अगेन वही चीज़। ये छोटे से बैग में एवरीथिंग कैन बी केप्ट नीटली। देखो क्या है कि वायरों में वायर जब उछल जाते हैं ना, उलझ जाते हैं, तो बहुत चिड़ छूटती है और सही करने का मन भी नहीं करता है। ये छोटा सा टैक बैग, इसके अंदर सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आप रख सकते हैं। वायर्स को रखने के लिए अलग से कंपार्टमेंट है जो बहुत बहुत अच्छे से इस छोटे से बैग में बनाया गया है। एंड इसी के साथ यूएसबी के लिए अलग से जगह है, आपका पावर बैंक, आपके चार्जर्स, इवन आपके ग्लासेस। ये बैग आपने ले लिया तो काम हो गया। ये मैं जो बैग्स आपको बताए मैंने दोनों, आमंड ओक बैकपैक और ये, तो ये दोनों के दोनों बहुत कम बजट में है। इस बैग का नाम, जो टैग बैग है, इसका नाम है यू ग्रीन। यू जो अल्फाबेट यू है, फिर ग्रीन GREEN, यू ग्रीन टैग बैग। ये दोनों आप देखिएगा, आई एम प्रीटी श्योर आपको एक बजट में लगेंगे दोनों के दोनों, पहली बात, और दूसरी बात आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं। तो उन फैंसी बैग्स पर खर्च मत कीजिएगा जिनमें लगे होते हैं चार्जर, लगा दी चार्ज कर लो। They are costly and they don't work as well as compared to what you think. कि वो ऐसे काम करे वैसे काम करेगा, ये दोनों आप देख सकते हैं। Now moving on to another one. अगला जो गैजेट है उन लोगों के लिए जो स्मार्ट वॉचेस को लेके बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, क्या सिर्फ महंगी ही वॉचेस काम करती हैं? नो ब्रो, सिर्फ महंगी वॉचेस काम नहीं करती हैं। कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं जो बजट में होती हैं, स्मार्ट वॉच होती हैं, अच्छा काम करती हैं, लैग्स भी नहीं होते। एक एग्जांपल है नथिंग की जो स्मार्ट वॉच है, मैं उसके हक में हूँ। आई थिंक 250-300 रियाल की अभी भी आ जाती है। एंड एक और है जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ, वो है अमेज फिट स्मार्ट वॉच, AMAZ FIT स्मार्ट वॉच, अमेज फिट स्मार्ट वॉच। चीपेस्ट बेस्ट वॉच अपने ग्रुप में, सबसे स्ट्रॉन्ग वॉच, कोई लैग नहीं, बढ़िया टच स्क्रीन है, बढ़िया फंक्शन करती है, एंड वेरी वेरी एक्यूरेट, एंड दिखती भी अच्छी है भाई, सस्ती भी नहीं दिखती है। सो अगर आप एक बजट में एक स्मार्ट वॉच देख रहे हैं, दिस कैन बी अ वेरी गुड आइडिया, अमेज फिट स्मार्ट वॉच, AMAZ FIT, अमेज फिट स्मार्ट वॉच, गो फॉर इट। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बजट पे ये कोई स्मार्ट वॉच देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग, तो आप ये जरूर इस पे नजर बनाए रखें। एंड ये हर जगह मौजूद है वैसे तो, Amazon पे मैंने देखा था, Amazon इंडिया पे अवेलेबल है, Amazon UAE पर भी अवेलेबल होगा, और यहाँ भी लोकली आई एम नॉट श्योर, अगर किसी के पास है तो वो आप पर है, आप देखने जाए तो देख लीजिएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द खबरें इन टेक न्यूज, लेटेस्ट टेक न्यूज, टेक न्यूज। तो सबसे पहले भाई साहब, ये जो स्टीम की मशीन आ रही थी, आपको पता ना PlayStation का कंपटीशन जो है वो बहुत हाई चल रहा है, एक्सबॉक्स कंसोल्स और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स, उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए, क्यों भाई, खैर वो एक कंपटीशन है। और स्टीम पे जो लोग गेम्स खेलते हैं पीसी वालों, अब इसका भी कंसोल आ रहा है, लेकिन स्टीम ने डिसाइड किया है, जो मेन पेरेंट कंपनी है वॉल्व, उन्होंने कहा है कि इसका प्राइस टैग होगा $1,050। बाप रे, $1,050 का कंसोल लॉन्च करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आई एग्री कि एक पीसी है, एक मुकम्मल पीसी है, आप पीसी वाले गेम भी खेल सकते हैं, सारे गेम खेल सकते हैं विद अ कंट्रोलर, बट दैट कैन बी डन ऑन द पीसी इटसेल्फ, नो? $1,050 मुझे रेट थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, बट इफ दैट इज व्हाट दे वांट, एक नीश ऑडियंस, तो ठीक है, इट्स अप टू देम। क्या ये कॉम्पिटिशन है PlayStation का या एक्सबॉक्स का? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज PlayStation और एक्सबॉक्स अभी भी बजट में आते हैं, वो अभी भी इतने महंगे नहीं है। तो $1,050 का प्राइस टैग इज काइंड ऑफ टू मच। एंड अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो चाइनीज टेलीकॉम और फाइबर ऑप्टिक्स कंपनीज ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाली है, एक माइलस्टोन नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन में। उन्होंने सक्सेसफुली अभी एक रिसेंट इवेंट में डेमोंस्ट्रेट किया, जिसको कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पहला फील्ड ट्रायल ऑफ हॉलो कोर फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसकी कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि 1.2 टीबी पर सेकंड वेवलेंथ के इंटरनेट को वो डिलीवर कर सकता है आपको, 1.2 टीबी, समझ रहे हैं आप, पर सेकंड, विच इज इतना फास्ट कि आई डोंट थिंक कि आपको पता भी लगेगा आप इंटरनेट यूज करें, इट्स लाइक ओपनिंग फोल्डर्स। तो ये जो है बहुत बहुत बड़ी खबर है, which is coming from China. Of course, I have no doubt कि उन्होंने कर लिया होगा, पर ये दुनिया
तक कब तक

0: पहुंचेगा, कैसे होगा, आई डोंट नो. अभी हम इंटरनेट से खुश हैं क्या? बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये जब आ जाएगा मार्केट में तब देख लेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द गेमिंग न्यूज.
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट.
0: देखो गेम की दुनिया में हलचल एक गेम ने बना रखी है और बहुत ही ज्यादा हलचल बना रखी है. सो रिसेंटली GTA 6 का प्री ऑर्डर जो मैंने कर दिया है मजबूर, मेरे हाथ नहीं रुके, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हैं. $100 का इन लोगों ने गेम जो है अल्टीमेट एडिशन रखा है और एक स्टैंडर्ड वर्जन है जो कि $80 का है. प्री ऑर्डर्स आर ऑन, यू कैन बुक नाउ क्योंकि नवंबर की 19 तारीख को गेम रिलीज हो जाएगा. एक जो बड़ी खबर रही वो ये रही कि अल्टीमेट एडिशन के पीछे बहुत सारे फीचर्स छुपा दिए हैं, पता नहीं क्यों रॉकस्टार ने ऐसा किया. एंड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रॉकस्टार ने कहा कि कोई भी फिजिकल कॉपी यानी डिस्क नहीं मिलेगी. अगर आप इसकी फिजिकल कॉपी खरीदेंगे तो एक बड़े से रॉकस्टार के डब्बे में आपको अंदर कोड मिलेगा. और इसका मजाक उड़ाते हुए इंसोमनियाक जो गेम्स हैं, जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाया है, जिन्होंने वुल्वरिन अभी उतारना है मार्केट में, उन्होंने मजाक बनाते हुए ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि हमसे गेम खरीदिए, हमारे बड़े से बॉक्स में आपको फिजिकल कॉपी भी मिलेगी. तो आई डोंट नो इफ इट इज अ डायरेक्ट डिस एट रॉकस्टार गेम्स या फिर वो ऐसी फ्रेंडली बेंटर है, आई डोंट नो. मगर ये सीडी ना रखने की चॉइस रॉकस्टार की बहुत गलत है, बिकॉज उनकी वजह से अगर ये ट्रेंड सेट हो गया फिजिकल कॉपीज मिलना ही बंद हो जाएंगी. मी माई सेल्फ एज अ गेमर, आई वॉन्ट अ फिजिकल कॉपी इन माई हैंड, एंड अगर वो नहीं होती है जस्ट किल्स द वाइब. यू नो वी ऑल वॉन्ट टू कलेक्ट थिंग्स, वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल, हमें चाहिए भाई. पर ठीक है, रॉकस्टार गेम खर्चा का तो करवाने ही वाला है इस साल, तो देखते हैं क्या होता है. बाकी ऑन दैट नोट, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हर जगह मौजूद है. एंड दिस इज दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ. आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मस्सलाम.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अब्दुल अजीज हातिम की। अब्दुल अजीज हातिम कतर के मशहूर फुटबॉलर्स में शुमार किए जाते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने हिस्सा लिया। एक बात और है कि अपनी मेहनत, लीडरशिप और मिडफील्ड में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से वो पहचाने जाते हैं। उन्होंने बचपन से फुटबॉल का शौक रखा और लगातार मेहनत के जरिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी पासिंग, बॉल कंट्रोल और गेम को समझने की सलाहियत उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाती है। अब्दुल अजीज ने कतर की कौमी टीम के लिए कई अहम टूर्नामेंट में नुमाइंदगी की और मुश्किल मैचेस में अपनी टीम को मजबूती फराहम की। एक मिडफील्डर के तौर पर वो दिफा और हमले के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन कायम रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लंबी रेंज के शॉट्स और की पासेस से मैच का रुख बदल देते हैं। क्लब फुटबॉल में भी उन्होंने मुस्तकिल और भरोसेमंद किरदार अदा किया है। उनकी प्रोफेशनल सोच, फिटनेस और डिसिप्लिन ने उन्हें कतर के नौजवान फुटबॉलर्स के लिए रोल मॉडल बना दिया है। दोस्तों, अब्दुल अजीज हातिम की कहानी ये पैगाम देती है कि लगन, सब्र और मुसलसल मेहनत से इंसान बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। आज भी वो कतरी फुटबॉल की तरक्की में अपना कीमती किरदार अदा कर रहे हैं और मुल्क के फुटबॉल मुस्तकबिल के लिए एक अहम मिसाल है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का

0: कि जिस तरह एक बंदा दुआ करता है और वो कहता है कि मैं मांगता हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है, मुझे कबूल नहीं होता, इसकी मिसाल इसी तरह है कि जैसे एक बच्चा है, वो आग को देखता है और वो उसे खूबसूरत जानते हुए कि ये चीज़ खूबसूरत है, चमक रही है, वो अपनी माँ से मांगता है कि अम्मी मुझे ये चीज़ दे दीजिए, लेकिन माँ जानती है कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जब मैं दे दूंगी तो ये जल जाएगा, इसका हाथ जल जाएगा, इसका जिस्म जल जाएगा। तो जब माँ ये चीज़ जानती है और वो बच्चे को नहीं देती, बच्चा चीखता है, रोता है कि मुझे नहीं, मुझे दे दीजिए, लेकिन माँ नहीं देती। तो सामीन, अल्लाह ताला तो बंदों के तईं 70 माओं से ज़्यादा शफीक हैं। तो अल्लाह ताला खूब जानते हैं जब एक बंदा कोई चीज़ मांगता है, दुआएँ करता है, अल्लाह ताला जानते हैं कि ये चीज़ इसके हक़ में बेहतर नहीं है, तो वो कैसे वो चीज़ अता कर दें। तो उसके बदले में अल्लाह ताला या तो कोई मुसीबत टाल देता है या उस दुआ का अजर आखिरत के लिए महफूज फरमा देता है। इसी हकीकत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया है। रिवायत करने वाले हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्ह, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे परवरदिगार में बदरजा गायत एहतराम और करम की सिफत है, यानी आखिरी दर्जा जो हया और करम का होता है, अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफत है, सिफत हिकमत और सिफत करामत, वो अल्लाह तबारक व तआला के अंदर आखिरी दर्जे की मौजूद है। जब बंदा उसके आगे मांगने के लिए हाथ फैलाता है यानी दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को शर्म आती है कि वह अपने बंदे को खाली वापस करे। और क़ुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाता है, उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि जब बंदा हाथ उठाता है अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ यानी शर्म आती है कि मैं उसको खाली हाथ वापस भेजूँ। इस हदीस में अल्लाह ताला की सिफत करम को बयान किया गया है, यानी जब बंदा इखलास के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर नवाजता है। अलबत्ता अता करने की सूरत और वक्त उसकी हिकमत के मुताबिक होता है। अल्लाह ताला की सिफत करम का नतीजा, सिफत करम का तकाजा तो ये है कि वो फौरन अता कर दे। जब कोई चीज़ बंदा कोई चीज़ मांगे, दुआ करे, तो सिफत करम का तकाजा ये है कि वो अल्लाह ताला उसको फौरन अता कर दे। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला सिफत हिकमत से भी मुत्तसिफ हैं, यानी अल्लाह ताला हकीम भी हैं, तो अब अता करने की सूरत क्या होगी, यानी किस तरह वो चीज़ अता की जाए और कब अता की जाए, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक होंगी। लिहाजा कभी मोमिन को कभी दुआओं से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुआ का हर लम्हा अल्लाह ताला के यहाँ महफूज होता है। सामीन, प्रोग्राम नूर इस्लाम है, ये प्रोग्राम नूर इस्लाम है और इस प्रोग्राम में हम सामीन के सवालात लेते हैं। और सवालात मालूम करने के लिए हमारा राबता नंबर है 443-443-77। आप इस नंबर पर राबता करके अपने सवालात मालूम कर सकते हैं। राबता नंबर है 443-443-77। इस नंबर पर आप रابطہ करके अपने सवालात मालूम कर सकते हैं। मोहतरम शेख, दुआओं पर गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोग गुज़श्ता दो हफ़्तों से, और आज भी काफ़ी तवील बहस हो चुकी है। रابطہ नंबर, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन ले लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
2: वालेकुम सलाम आपको और शेख साहब को। सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, आपका नाम?
2: मेरा नाम मोहम्मद है।
0: जी मोहम्मद भाई
2: जी, सर जब ऐसा मसला पेश हो, कल مجھے پہلے علم نہیں تھا کہ میرا وضو نہیں ہے. میں نے جا کے امام کے پیچھے نماز ہو رہا تھا تو میں نے نیت کر کے نماز شروع کیا, لیکن بعد میں جیسے ہی نیت کیا اور امام صاحب کھڑا ہو گیا مجھے پتہ چلا کہ آپ کا وضو نہیں ہے, اور میرے پیچھے لوگ بھی میں سے کھڑے ہو گئے کہ مجھے پھر باہر نکلنے کا وہ نہیں تھا, راستہ نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے نماز کمپلیٹ کیا, بعد میں میں نے وضو کر کے پھر دوبارہ اپنا نماز پڑھا, لیکن اس مرحلے پہ کیا کرنا چاہیے؟
0: جی یعنی آپ جماعت میں شریک ہو گئے پھر آپ کو یاد آئے کہ آپ کا وضو نہیں ہے,
2: جی
0: اب آپ نکلنا چاہیں یا کیا کریں, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
2: جی سر
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اور کوئی دوسرا سوال ہے آپ کا؟
2: نہیں سر بس یہ.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ. سامعین ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77, اس پر آپ رابطہ کر کے سوالات معلوم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے.
0: جی جی آپ اپنا نام بتا دیں تاکہ.
1: جی میرا یہ اسی نام ہی کے اوپر سوال ہے, جیسے میرا نام گھر میں رکھا گیا ہے راجد, راجد کا مجھے میں پورا ڈھونڈا ہوں, راجد کا مطلب کوئی معنی نہیں ہے.
0: راجد,
1: ہاں راجد, آر اے جے آئی ڈی, راجد,
0: راجد کے راجد,
1: راجد راجد
0: راجد. اچھا اچھا اچھا
1: جی, راجد عالم, یعنی عالم تو میں نے لگا لیا, عالم تو میں اپنے آپ لگانا اسٹارٹ.

0: तो अभी जितना मेरा डॉक्यूमेंट है सब मैं राजीद आलम किया हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ जैसे मैं घर पे हूँ, जैसे कभी जैसे अपना यानी कि इस्तमा हो गया, कभी यानी कि वो हो गया, यानी कि तबलीग आ गया, मैंने नाम लिखाया, तो जहाँ जहाँ लिखाया लोगों ने यही बताया, जैसे बताता तो सब मेरा शक्ल देखते बोल रही इसका तो वो मायने नहीं है नाम का।
1: अच्छा,
0: तो मैंने इस मुफ्ती साहब से और अपने जानने वाले से यानी कि दोस्त यार पढ़े लिखे जो मदरसे में उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, उनसे बोला तो बोले या राशिद कर लो या रोज वो कर लो रिजवान कर लो
1: जी, राशिद तो
0: राशिद या रिजवान
1: रिजवान
0: या रोजी, हाँ जी ऐसे बोले ऐसे कर लो इसमें। तो अच्छा, मैंने कहा मैं तो बाहर हूँ, अब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, जैसे इंडिया का बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है
1: जी जी,
0: तो सब में मेरा ऐसा चढ़ा हुआ है जैसे पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, सब में मेरा ये स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैंने सब में ऐसा पढ़ा हुआ है। तो बोलो से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिन के लिए अगर ये चाहो तो अगर ये राजीद हटा दो, किसी को बोलना है तो सिर्फ बोलो, फिर बोलो मेरा नाम आलम
1: जी जी इंशाल्लाह। यानी आप इस नाम का मतलब मालूम करना चाह रहे हैं या नाम बदल सकते हैं या नहीं सकते इसका? नहीं,
0: मतलब भी मालूम, मैं मतलब भी चाहता हूं, और अगर ये नहीं तो फिर तो मैं आलम ही लगाऊंगा कहीं भी बोलो तो
1: जी।
0: डॉक्यूमेंट्स को बंद किया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं बोलूं तो आलम में बोलूं
1: जी जी ठीक।
0: और मेरा एक सवाल ये है
1: जी जी,
0: मैं यहाँ कतर में हूँ और काफी टाइम से हूँ, तो मैं नियत किया था कि मैं इस बार घर जाऊंगा तो मैं अपनी अहलिया के साथ में मक्का जाऊंगा उम्रे पे, तो यानी कि मेरे को एक डेढ़ साल हो गया कि उतना बैलेंस नहीं हुआ, मैं नियत किया था कि मैं इस बार जाऊंगा पहले उधर जाऊंगा बाद में अपना घर में जाके घर मेरे को घर बनाना है
1: जी,
0: तो उस मोमेंट में नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैं बाद में अदा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं?
1: जरूर इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। यानी अभी आपने इरादा किया था, नियत की थी
0: जी? मैं दो बार जा चुका हूँ यहाँ से, मैं एक बार अपनी वालिद और वालिदैन को बुलाया था मैं इंडिया से, और मैं कतर से गया था
1: जी जी,
0: तो दो बार तो मैं जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बार मैं नियत किया था मैं इंडिया जाके अपनी अहलिया के साथ जाना चाहता हूँ
1: जी जी।
0: तो हाँ, तो थोड़ा कुछ पैसे को लेके वैसे कोई तंगी है
1: जी,
0: नहीं हो पा रहा क्योंकि इस बार जा घर में काम लगाना है, सोचा कि मैं घर भी बना लूँ, तो बाद में ये जा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस पर मुझे जवाब चाहिए।
1: जरूर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, जरूर आप प्रोग्राम सुनिएगा, अभी शेख साहब जवाब देंगे।
0: मैं सुन रहा हूँ रेडियो बैठ के, मैं सुन रहा हूँ
1: जी जी। जजाकुम अल्लाह
0: बहुत कुछ इसे सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है, दीन हमारा क्या कहता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकुम अल्लाह,
0: वालेकुम
1: सलाम। السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد القرنين بات کر رہا ہوں.
1: جی ذو القرنین بھائی خیریت سے؟
2: الحمدللہ
1: ماشاءاللہ.
2: پہلا سوال ہے شاید تھوڑا سا میں ڈیٹیل مہربانی کر کے سن لیجیے.
1: جی جی بالکل بالکل.
2: والدین کے جو احکامات ہیں
1: جی
2: کہ اس کے یعنی ان کے عزت احترام کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہیں, اور وہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کتنا اس کے اوپر نا پابند کر سکتے ہیں, یعنی کتنی عمر تک ان کے معاملات دیکھے جائیں یا کب اسے بری سما ہو جائیں, کیونکہ اکثر 15-16 سال کے بعد وہ اپنے آپ کو نا بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کریں, اور اکثر اوقات سونا جاگنا انٹرنیٹ کیا دیکھنا یا دوستوں کے ساتھ آنا جانا رات کو ہو گیا نا
1: جی,
2: اس باتوں کو نا وہ کافی ان کو نا بھاری لگتی ہیں
1: جی,
2: اور اس بات کا بعض اوقات کئی چیزوں کا نا جواب گوگل سے لے آتے ہیں جی. اب گوگل تو ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں, وہ ایک ڈفرینٹ معاشرے میں ہے, نہ وہاں خاندان ہے, نہ اخلاقیات ہے, نہ دین اور اللہ کے احکامات کی اہمیت ہے, یعنی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا
1: جی.
2: تو اس بحث کی وجہ سے کئی دفعہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو تو ہمیں ہماری کتنی وہ کہنے کی حدود ہے یا کس حد تک. اب یہاں دیکھیں قطر میں ایک تو ہماری کفالت ہے, وہ کہتے ہیں گھر سے باہر بھی ذمہ داری گھر کے اندر بھی ذمہ داری, یہاں کوئی معاملات ہو جائیں تو باپ کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
2: ایف ایم 107
3: دل سے دیسی.
4: کنسسٹنسی از دا کی, یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی.
5: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سسٹین دا فیوچر آن ایف ایم 107 قطر. میں ہوں آپ کی آر جے مہوش اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پر.
6: ٹاپک آف دا ڈے,
5: دا انرجی شفٹ, رینیوبلز ورسز فوسل فیولز. یہ ہے وہ وقت جب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو کیسے روشن رکھیں گے, نہ صرف آج کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی. ٹوڈے وی آر ڈائیونگ انٹو وائی دا ورلڈ از موونگ ٹوورڈز سولر اینڈ ونڈ پاور اور ہم سب کیسے اس چینج کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارے پاس ہے اس شو میں کچھ ایکسائٹنگ سیگمنٹس جیسے کہ انسپائرنگ اسٹوریز, پریکٹیکل ٹپس اور فن چیلنج آپ کے لیے تاکہ آپ اپنی لائف کو گرینر بنا سکیں. فالو کرنا نہ بھولیے گا ہمیں ایف ایم 107 پہ اور اپنا فیڈ بیک شیئر کریں ہمارے ساتھ آن آر واٹس ایپ 666-22-107. تو چلیے آج کا شو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے انرجی کا فیوچر, رینیوبل ورسز فوسل فیولز. فوسل فیولز جیسے آئل اور گیس ہماری دنیا کو بہت سالوں سے چلا رہے ہیں, لیکن ان کا استعمال انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے. کاربن ایمیشنز, ایئر پولوشن اور کلائمیٹ چینج, یہ سب فوسل فیولز کے سائڈ افیکٹس ہیں. لیکن اب دنیا ایک نئے راستے پر چل رہی ہے, رینیوبل انرجی جیسے سولر اور ونڈ پاور. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فوسل فیولز کی. آئل, گیس اور کول, یہ تین چیزیں پچھلے 200 سال سے دنیا کی اکانومی کا انجن ہیں. آج بھی دنیا کی 80% سے زیادہ انرجی فوسل فیول سے آتی ہے. کار چلانی ہو, فیکٹری چلانی ہو یا گھر میں اے سی آن کرنا ہو, سب کچھ آئل, گیس اور کول کے دم پر. لیکن پرابلم یہاں ہے, یہ فیولز لمیٹڈ ہیں, مطلب ایک دن ختم ہو جائیں گے. اور صرف یہی نہیں, جب ہم ان کو جلاتے ہیں تو ایٹموسفیئر میں چلی جاتی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور گرین ہاؤس گیسز, اور وہی گیسز بناتی ہیں کلائمیٹ چینج, یعنی کہ زیادہ گرمی, میلٹنگ گلیشیئرز, بارشوں کا پیٹرن بدلنا اور سی لیول کا بڑھنا. آپ سوچئے, ایک طرف دنیا چل رہی ہے آئل اور گیس پر اور دوسری طرف یہی چیزیں انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر آپ کو دوا دے بھی رہا ہے اور سائڈ افیکٹ سے آپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. اب بات کرتے ہیں رینیوبل انرجی کی. یہ ایک نیا راستہ ہے جو دنیا چوز کر رہی ہے. رینیوبل کا مطلب ہی ہے جو ختم نہ ہو, جیسے سورج کی روشنی, ہوا کا چلنا, پانی کا بہنا, یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سولر انرجی کی. سورج ہر دن نکلتا ہے اور اس کی روشنی سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. سولر پینل سے آج دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے. ونڈ انرجی, ہوا چلتی ہے तो बड़े बड़े टर्बाइन्स घूमते हैं और बिजली प्रोड्यूस होती है। फिर है हाइड्रो पावर, दरियाओं और पानी के जरिए एनर्जी बनती है इनके जरिए। जो थर्मल और बायोमास देखें तो जमीन के अंदर से हीट लेना या ऑर्गेनिक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। सबसे बड़ी बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन है, मतलब बिजली बनती है लेकिन हवा में स्मोक या पोल्यूशन नहीं जाता। और एक और अमेजिंग चीज, रिन्यूएबल एनर्जी अब चीप होती जा रही है। 10 साल पहले सोलर पैनल लगाना बहुत महंगा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है और कॉस्ट नीचे आ गई है। अब अगर हम कतर की एग्जांपल लें तो यहाँ ट्रेडिशनली ऑयल और गैस इकोनॉमी का बैकबोन रहे हैं, लेकिन कतर समझ रहा है कि फ्यूचर सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करना नहीं हो सकता। इसी वजह से कतर ने एक मैसिव सोलर प्रोजेक्ट डेजर्ट के अंदर शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि हजारों घरों को बिजली मिल सकती है। सोचिए, एक डेजर्ट जो पहले खाली था अब क्लीन एनर्जी का पावर हाउस बनता जा रहा है। और ये सिर्फ कतर की बात नहीं, सऊदी अरेबिया में न्यूम सिटी प्रोजेक्ट है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाने का प्लान है। यूएई में मजदार सिटी बन रहा है जो कि इको फ्रेंडली होगा। ये सब एग्जांपल्स दिखाती हैं कि गल्फ कंट्रीज जो पहले सिर्फ ऑयल एक्सपोर्टर्स थे अब क्लीन एनर्जी के लीडर्स बन रहे हैं। लेकिन लिसनर्स, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के भी चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो स्टोरेज प्रॉब्लम है, अगर रात हो जाए तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा, अगर हवा ना चले तो विंड टर्बाइन रुक जाएगा, तो एनर्जी को स्टोर करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बैटरीज की टेक्नोलॉजी अब इम्प्रूव हो रही है लेकिन अभी थोड़ी कॉस्टली है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, सोलर और विंड फार्म्स बनाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, सब मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री पावरफुल है, ऑयल और गैस कंपनीज के इंटरेस्ट रिन्यूएबल के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन अगर चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशंस भी निकल रहे हैं। साइंटिस्ट बेहतर बैटरीज बना रहे हैं, गवर्नमेंट्स सब्सिडीज दे रही हैं और पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, चाहे एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आए या रिन्यूएबल से, अगर हम उसे वेस्ट करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। आपने नोटिस किया होगा, घर में लाइट्स जलती रहती हैं जब कोई रूम में नहीं होता। पुराने अप्लायंसेस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इसके साथ ही एसी अननेसेसरीली चलता रहता है, वाटर हीटर्स अननेसेसरीली ऑन रहते हैं। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बर्डन बन जाती है। कतर जैसे मुल्क में जहाँ गर्मी ज्यादा है एसी बहुत चलते हैं। अगर हम एनर्जी एफिशिएंट एसी यूज करें और अननेसेसरी यूसेज अवॉइड करें तो हम बहुत बिजली सेव कर सकते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं दुनिया के ट्रेंड्स पर। सबसे पहले यूरोप की बात करते हैं। जर्मनी, डेनमार्क और स्पेन ने विंड और सोलर एनर्जी में बहुत इन्वेस्ट किया है। जर्मनी तो अपना हाफ से ज्यादा पावर रिन्यूएबल से जनरेट करता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। इंडिया ने भी अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाई है और सोलर फार्म्स के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे स्टेट्स रिन्यूएबल्स के लीडर्स हैं। यानी कि दुनिया भर में एक रेवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन हर मुल्क की स्पीड अलग है। जो मुल्क फॉसिल फ्यूल्स पर हैवीली डिपेंडेंट है उनके लिए ट्रांजिशन स्लो है। अब सवाल ये है कि हम जैसे इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट्स और बिग कंपनीज का काम है? जवाब है नहीं। हर छोटा स्टेप मैटर करता है। अपने घर में एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करना, सोलर पैनल्स लगाना अगर पॉसिबल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पोल यूज करना इंस्टेड ऑफ सिंगल कार राइड्स, अवेयरनेस स्प्रेड करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एनर्जी सेविंग की इम्पोर्टेंस बताना, ये सब चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो आइए एक टेबल की तरह कंपैरिजन करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वर्सेस रिन्यूएबल्स। फॉसिल फ्यूल्स रिलायबल हैं, लेकिन पोल्यूटिंग और लिमिटेड। रिन्यूएबल्स क्लीन है, अनलिमिटेड हैं, लेकिन स्टोरेज और कॉस्ट इश्यूज हैं। फ्यूचर किसका है? आंसर क्लियर है, रिन्यूएबल्स का। लेकिन ट्रांजिशन एक दिन में नहीं होगी, एक जर्नी है जहां हमें फॉसिल फ्यूल्स ग्रेजुअली कम करने हैं और रिन्यूएबल्स बढ़ाते जाना है। लिस्टनर्स, इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां सिटीज सोलर एनर्जी पर चल रही हैं, कार्स इलेक्ट्रिक हैं, हवा साफ है और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, ये रियलिटी बन सकती है अगर अभी से हम सब एक्शन लें। रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है। नई जॉब्स बनेंगी, नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी और मुल्क अपनी रिसोर्सेज पे डिपेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग ऑयल। कतर जैसे मुल्क अगर रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सिग्नल है कि दुनिया का फ्यूचर ग्रीन एनर्जी में है। तो लिसनर्स, फॉसिल फ्यूल्स ने हमें 200 साल तक सर्व किया लेकिन उनकी लिमिट अब आ गई है। अब वक्त है कि अब हम नए रास्तों पर चलें, रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करें, एनर्जी वेस्टेज को कम करें और अपनी जिंदगी को सस्टेनेबल बनाएं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं, ये हमारी जनरेशन का मिशन है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे स्टेप्स लें तो एक दिन आएगा जब हमारी दुनिया पोल्यूशन फ्री होगी और एनर्जी क्लीन होगी। सो लेट्स बी द चेंज, एनर्जी का फ्यूचर हमारे हाथ में है। एक दफा आखिर में फिर बात करते हैं कि क्यों है ये शिफ्ट इतना जरूरी। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन है, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस बिजली बनाते हैं बिना किसी हार्मफुल इमिशंस के। दूसरा, ये रिसोर्सेस खत्म नहीं होते, सूरज की रोशनी और हवा हमेशा रहेगी जबकि ऑयल और गैस एक दिन खत्म हो सकते हैं। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी अब पहले से ज्यादा अफोर्डेबल हो रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और कॉस्ट कम हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स हियर इन कतर। यहाँ के सोलर प्रोजेक्ट्स बहुत इंस्पायरिंग है। एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट डेजर्ट में बन रहा है जो हजारों घरों को क्लीन एनर्जी देगा। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि कतर जैसे मुल्क जो पहले ऑयल और गैस पे डिपेंड करते थे अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, एनर्जी वेस्टेज का। रोजाना जिंदगी में हम देखते हैं कि कितनी बिजली वेस्ट होती है। मसलन घरों पे लाइट्स ऑन रहती हैं, कोई रूम में नहीं होता या पुराने अप्लायंसेस ज्यादा बिजली खाते हैं तो इनको भी रिप्लेस करना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें एड अप होती रहती हैं और एनवायरनमेंट पर बोझ बन जाती हैं। सो कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबसे पहले पहला स्टेप है अवेयरनेस का, अपने एनर्जी यूसेज को समझना और उसे कम करना। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना, चाहे वो घर में सोलर पैनल्स लगाना हो या एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना हो। हर छोटा स्टेप काउंट करता है और हम सब मिलकर अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लिसनर्स, यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं ग्रीन फ्लैश के साथ।

0: जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सुन रही हैं एफएम 107 पे शो सस्टेन द फ्यूचर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माबिश खान। अब चलिए सुनते हैं ग्रीन फ्लैश, जहां हम दुनिया भर से सस्टेनेबिलिटी की लेटेस्ट खबरें लेकर आते हैं।
1: ग्रीन फ्लैश,
0: आज हम बात करेंगे तीन बड़ी कहानियों के बारे में जो रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर को हाईलाइट करती हैं। पहली खबर, एक मुल्क ने सबसे बड़ा सोलर फार्म लॉन्च किया है जो 2 मिलियन घरों को क्लीन एनर्जी दे रहा है। ये सोलर फार्म डेजर्ट के वाइड एरिया में स्प्रेड है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये क्लाउडी डेज पर भी काम करता है। दूसरी खबर है, एक और मुल्क ने विंड एनर्जी में रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ऑफशोर विंड फार्म्स बनाए हैं जो समंदर के अंदर टर्बाइन से बिजली पैदा करते हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ क्लीन एनर्जी देता है बल्कि लोकल कम्युनिटीज के लिए भी जॉब्स क्रिएट करता है। तीसरी खबर, एक सिटी ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर दिया है। अब उनकी बसेस और ट्रेन्स सोलर और विंड पावर से चलती हैं, जो एयर पोल्यूशन को ड्रामेटिकली कम कर रहा है। इन तीनों स्टोरीज से एक बात तो साफ है, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है और हमें भी इस रेस में शामिल होना होगा। अब हम चलते हैं ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट के सेगमेंट में, जहां हम देखते हैं कुछ कटिंग एज आइडियाज जो फ्यूचर को शेप कर रहे हैं।
1: ग्रीन इनोवेशन,
0: आज हम बात करेंगे एक गेम चेंजर के बारे में, फ्लोटिंग सोलर फार्म्स। फ्लोटिंग सोलर फार्म्स ये क्या होता है? फ्लोटिंग सोलर फार्म्स वो सोलर पैनल्स होते हैं जो पानी के ऊपर जैसे लेक्स या रिजर्वर्स पर फ्लोट करते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये लैंड का स्पेस नहीं लेते और पानी के साथ रहने से पैनल्स कूल रहते हैं, जो इनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। एक मुल्क ने तो अपने रिजर्वर्स पर इतने बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म्स बनाए हैं कि वो हजारों घरों को पावर दे रही हैं। ये टेक्नोलॉजी दिखाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। चाहे डेजर्ट हो, समंदर हो या लेक हो, हम कहीं भी क्लीन एनर्जी पैदा कर सकते हैं। Isn't that exciting? चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो आप अपनी रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक योर

0: लाइव क्लीनर। आज का टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये रही कुछ आसान सी टिप्स।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: अगर आपके घर में स्पेस है तो रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने के बारे में सोचिए। ये ना सिर्फ आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करेंगे बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। कतर में अब सोलर पैनल्स के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, तो जरूर चेक कीजिए। अपने घर के पुराने बल्ब्स को एलईडी बल्ब से रिप्लेस कीजिए। ये 80% कम एनर्जी यूज करते हैं और ज्यादा देर तक चलते हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट, बड़ा इम्पैक्ट। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, कंप्यूटर और एसी को एनर्जी सेविंग मोड पर रखें। ये छोटी सी आदत आपकी एनर्जी कंजप्शन को काफी कम कर सकती है। तो आज से ही इन टिप्स को अपनाइए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को छोटा कीजिए।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
0: और अब वक्त हुआ है वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का। आज सुनेंगे हम वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट में जो आवाज, वो होगी बिल मैककेबन की। और ये बात कर रहे हैं फ्यूचर के हवाले से कि रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर कितना ब्राइट है और हम कितना होपफुल हो सकते हैं। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज में कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
2: Daily average temperature of the planet. We have enough weather buoys and satellites and meteorological stations that we can average out the temperature every day around the Earth and give a number. And that number really spiked for the first time in late June, early July of 2023. The world is always hottest on average at the solstice in the Northern Hemisphere because there's more land mass here. And those days were the hottest days scientists told us that they'd ever measured. Our measurements go back a couple hundred years, but scientists are good at building proxy records that go back much, much further. Glacial sediments, lake cores. Talk to Kurt Steiger if you
0: जो लिस्टर्स, अभी आपने सुना बिल मैककेबन को और यकीनन आप भी मेरी तरह बहुत ही इंस्पायर भी हुए होंगे और होपफुल भी होंगे। अगर आप भी इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा @666-22107। और अब हम आ गए हैं अपने टेक अवे चैलेंज सेगमेंट पर। हर हफ्ते हम आपको एक छोटा सा सस्टेनेबिलिटी चैलेंज देते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसे ट्राई करेंगे।
1: वीकली चैलेंज।
0: इस हफ्ते का चैलेंज है स्विच टू एलईडी लाइटिंग। एक हफ्ते के लिए अपने घर के कम 3 बल्ब्स को एलईडी बल्ब से रिप्लेस कीजिए। ये ना सिर्फ एनर्जी सेव करेगा बल्कि आपके बिल में भी कमी लेकर आएगा। अगले हफ्ते के शो में हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया। Send us your stories on WhatsApp @666-22107 or tag us on social media @FM107 Qatar. और अब इसके साथ हम आज के शो को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया आप सबका सस्टेन द फ्यूचर के साथ वक्त गुजारने के लिए। अगले हफ्ते हम बात करेंगे एक और एक्साइटिंग टॉपिक पर, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग नेचर्स बैलेंस। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग स्पीशीज हमारे प्लैनेट के लिए जरूरी है और कैसे हम अल्थकीरा के मैंग्रोव जैसे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले संडे को हमसे जरूर मिलिएगा और तब तक के लिए कीप इट ग्रीन, कीप इट सस्टेनेबल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
4: हम भी वो हैं जो कभी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
4: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है, तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: हाथ पकड़ने और हाथ थामने में बहुत फर्क होता है। पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी ही मजबूत हो, वो वक्ती होती है, जबकि थामने वाले हाथ सारी जिंदगी साथ देते हैं। मुखलिस लोग अगर रूट जाएं, तो उन्हें मनाने में देर नहीं करनी चाहिए, और बुरे लोग छोड़ जाएं, तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मुखलिस लोगों का रूटना वक्ती तौर पर होता है, और बुरे लोग सिर्फ एक गलती की देर है, वो भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। याद रखिए कि इंसान की जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, वो हमेशा सदा नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये नेमत के तौर पर भी आती हैं, ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द जो रिश्तों नाम की मखलूक रहती है उसे आजमा सके।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Absolute cinema.
3: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं. पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. पर डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
4: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है. जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है. सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए. सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें. वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
5: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोहा कतर में इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107। फुरकान शाहिद से समात कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर और यूनान के वज़ीर आज़म ने टेलीफोन रबते के दौरान इलाकाई कशीदगी में कमी लाने के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा ने मिस्री वज़ीर खारजा के साथ टेलीफोनिक रबते में खित्ते में देरपा अमन मुआहदे के हुसूल और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों

0: तक पहुंचने वाली इमदादी टीमों को भी रोकने की कोशिश की गई। इसी तनाजुर में दीवार फासिल और आबादकारी के खिलाफ मुज़ाहमती कमीशन के शोबे कानून के सरबराह हसन ने कहा है कि मगरबी किनारे में आबादकारों के हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि अक़वामे मुत्तहिदा के कमीशन ने इन हमलों को फिलिस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की सबसे बड़ी वजह करार दिया है। आलमी इदारे सेहत ने सूडान में हैज़े की वबा के मज़ीद फैलाव के खदशे का इजहार किया है। आलमी इदारे ने खबरदार किया है कि मुल्क में जारे तनाज़ बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी और बारिशों के मौसम के आगाज़ के बाइस हैज़े की सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वबा के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 114 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 1300 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। इदारे ने बताया है कि हैज़ा ख़ास तौर पर सूडान के इलाकों दारफोर और कुर्दफान में तेज़ी से फैल रहा है जहां इंसानी इमदाद और सेहत के शोबे से वाबस्ता कारकुनों को मुतासर अफराद तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शुमाली कोरिया ने अपनी जौहरी सलाहियतों को मकदार और मियार दोनों लिहाज से मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाने और उनकी जंगी तैयारियों को मज़ीद बेहतर बनाने के मंसूबों का हिस्सा है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क की सलामती और तहफ्फुज़ के लिए एक मजबूत फ़ौज का होना नहायत ज़रूरी है जो तमाम मुमकिन ख़तरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हो। जनूबी फिलिपाइन में शदीद बारिशों के बाइस मिट्टी के तोदे गिरने के हादसों में तकरीबन 15 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक ये हादसा बहर अल काहिल में आने वाले तूफान बाफी के नतीजे में होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाइस पेश आए जिसने बहर अल काहिल के मुतअद्दिद जज़ायर को मुतासिर किया है। दूसरी जानिब स्पेन के शहर अल्मीरिया में जंगलाती आग के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 150 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने और उसे बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। स्पेन के वजीर सदारत और सेहत और हंगामी उमूर के वजीर एंटोनियो सांस ने इस आतिश जदगी को अब तक की सबसे तबाह कुन आग करार दिया है। नशरिए के अख्ताम से कबल एक बार फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। साहिब सुमू अमीर ने यूनान के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रबते के दौरान दो तरफ़ा तआवुन के फ़रोग इलाकई व बैनुल अक़वामी सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों और आलमी तआवुन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबते के दौरान दो तरफ़ा तआवुन के फ़रोग इलाकई सूरत हाल कशीदगी में कमी लाने के लिए जारी सिफारती कोशिशों आबनाए हुरमुज में जहाजरानी की आज़ादी और खत्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म के मुशीर और वज़ारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान ने लंदन सालाना फोरम के दौरान दो इजलासों में शिरकत की जहाँ उन्होंने मशरक़ वस्ती में जारी बहरानों के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत कतर के सालिसी किरदार इलाकाई तआवुन और सलामती दिफा तवानाई और सप्लाई चेन के शोबों में स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कीमियाई हथियारों की ममानात की तंजीम के एग्जीक्यूटिव कौंसल ने नीदरलैंड के शहर लाहाए में मुनाकिदा इजलास के दौरान शाम के हुकूक और मुराद की तंजीम में बहाली से मुतालिक कतर की पेशकरदा करारदाद मंजूर कर ली है। इसी के साथ साथ आज का नशरी अपने अख्तिताम को पहुंचता है और रेडियो कतर एफएम 107 के स्टूडियो से तकनीकी मुआविन जासिम और मुझे फरकान शाहिद को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107।
2: आप सुन रहे हैं एफएम 107।
3: दिल से देसी
4: एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं,
6: पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं
5: और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी,
6: भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आप
5: आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू।

0: week.
1: Rolling.
0: Taki every movie experience bane absolute cinema.
2: Cut.
3: Yar, hafte ki shuruaat. Agar fresh mood se ho to maza aa jaye. Aur aaj ke din अगर पता चल जाए कि कोई अच्छी मूवी लगी है और वो मूवी देख के मूड फ्रेश हो जाता है, दिल ही खुश हो जाएगा। हबीबी अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है रिव्यू ऑफ द वीक, जहां पर हर हफ्ते हम एक नई मूवी के बारे में रिव्यू करते हैं, जहां पर मूवी के हाइप क्या रहे, स्टार रेटिंग्स क्या है, मूड क्या है मूवी को लेकर, उसके अलावा मूवी में जो एक्टर्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फन फैक्ट्स क्या है प्रोडक्शन के बारे में, डायरेक्टर का विजन क्या है मूवी को बनाने को लेकर, उसके अलावा मूवी की फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, जहां पर हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। और एट लास्ट हम बात करते हैं कि इसका स्पॉइलर फ्री प्लॉट क्या है, फिर वर्डिक्ट देखना है मूवी के नहीं देखना है, या फिर पैसे बर्बाद चले जाएंगे, बर्बाद नहीं, बर्बाद तो नहीं जाएंगे पैसे, मैं नहीं जाने दूंगा। हर हफ्ते ऐसी थोड़ी, इतनी मेहनत करता हूं यार, हर हफ्ते अपने गले को जलाता हूं आपको बताने के लिए कि आपके लिए कौन सी मूवी बेस्ट है और कौन सी मूवी बेकार है, मत जाओ पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो जिसकी हाइप तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको अगर देखा जाए इसकी जो हीरोइंस हैं उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस मूवी का बहुत ज्यादा ही अनाउंसमेंट किया है, प्रमोट किया है, और ये है वन एंड ओनली स्पाई यूनिवर्स की, यानी कि यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म अल्फा।
4: व्हाट शुड वी कॉल हर सर?
5: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
3: इसका मूड बिल्कुल हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर वाला है दोस्तों, लेकिन इस बार पूरा सिनेमैटिक एनवायरनमेंट काफी बदल चुका है। पहले की फिल्म जैसे पठान या टाइगर में हमने हमेशा लाउड एक्शन और ब्राइट फ्लैशी सेटअप्स देखे हैं, पर अल्फा का मूड थोड़ा डार्क, सीरियस और ग्राउंडेड टोन के साथ शुरू होता है। वेल, मुझे लगता है कि ये जो यशराज का स्पाई यूनिवर्स है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा और फिर एक दिन क्या होगा, वैसे तो ये पहले मेल मेल में मूवीज आ रही थी जैसे कि पठान और टाइगर, फिर अभी फीमेल की आ गई जिसमें अल्फा में बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं, और फिर एक साथ एक ऐसी बड़ी मूवी आएगी जिसमें ये फीमेल और मेल एक्ट्रेस साथ में आए और स्पाई यूनिवर्स इनका मुकम्मल हो जाए। थोड़ी आपको मार्वल जैसी फील आ रही थी तो, और देख लेना ये होगा, मैं आऊँगा आपको बताऊँगा भी कि देखो मैंने उस दिन बोला था कि ये होगा, पक्का होगा, देखा। बाकी अगर हम बात करें मूड के बारे में तो अच्छा खासा मूड है। अल्फा का मूड थोड़ा डार्क, सीरियस और ग्राउंडेड टोन के साथ शुरू होता है। डायरेक्टर शिव रवाइल जो है उन्होंने कोशिश की है कि फिल्म को एक इंटरनेशनल स्पिनेज थ्रिलर वाला मूडी और एटमोस्फेरिक लुक दिया जाए। हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स और शार्प लाइटिंग की वजह से स्टार्टिंग में लगता है कि हम कोई नए जमाने के सिनेमा को देख रहे हैं। यहां तक सब अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह सीरियस ऑरा पूरी फिल्म में मेंटेन नहीं रह पाता है। कहानी का मूड अचानक से चेंज होता है जब इसमें फोर्स्ड जबरदस्ती की इमोशनल फैमिली ड्रामा को घुसेड़ दिया जाता है, ठूस दिया जाता है, और अनसीजनल कमर्शियल सॉन्ग्स

0: यार मत करो भाई ये सब, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करने दो ना, ये इमोशनल ड्रामा क्यों कर रहे हैं तुम लोगों को।
1: हाय बॉयज, व्हाट्स अप बॉयज,
0: तो ये पता नहीं क्यों यशराज की प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है कि वो जो देखने वाले हैं उनकी प्रॉब्लम है कि उनको तो एक गाना चाहिए बाबा। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी लगी है। एक्शन सेट्स तो बड़े हैं इस मूवी में और उनमें काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया है, पर स्क्रीन प्ले इतना हॉलो है कि सस्पेंस गायब हो जाता है। कई बार ऐसा भी लगता है डायरेक्टर्स को कि अरे स्क्रीन प्ले का पैसा बचा लेते हैं, हम खुद कर देते हैं ना, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So, दो फीमेल लीड्स हैं इसमें, जैसे कि आपको पता ही होगा, आलिया भट्ट और सरवरी। अपनी तरफ से पूरी जान लगाती हैं ये दोनों, उनका बॉडी लैंग्वेज एकदम

0: एसेसिन वाला है, पर डायलॉग डिलीवरी इतनी ओवर एक्सप्लेनेटरी है कि सीरियसनेस मजाक बन जाती है।
1: एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
0: ओवरऑल फिल्म का मूड एक हाई बजट हॉलीवुड फिल्म जैसा स्टाइलिश दिखता है, पर इसके अंदर की सोल बिल्कुल भटकी हुई है और दिल्ली से मुंबई तक बिखरी हुई महसूस होती है। वेल, हाइप का एनालिसिस अगर करें तो इस फिल्म की हाइप रिलीज से पहले बिल्कुल आसमान पर थी, क्योंकि ये यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड एक्शन फ्रेंचाइजी थी। आलिया भट्ट का एक सुपर सोल्जर बनना और सरवरी का उनके साथ स्क्रीन शेयर करना पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था। टीजर और ट्रेलर के आने के बाद लोगों को लगा था कि अब स्पाई वर्स को एक नया और फ्रेश डायरेक्शन मिला है, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि जब आप देखेंगे ना दो फीमेल लीड एक्ट्रेस जिस तरह से शुरुआत में काम करती तो आपको बड़ा मज़ा भी आता है। और फीमेल स्पाई यूनिवर्स मुझे लगता है कि इंडिया में कभी हुआ भी नहीं, और अब थोड़ा यशराज फिल्म आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है तो इस बात का एप्रिसिएशन तो बिल्कुल।
1: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो।
0: और प्रमोशन तो इसका बहुत ज्यादा था, आप सोशल मीडिया पर देख ले। ओवरऑल फ्रेश डायरेक्शन मिलेगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से बॉबी देओल का बैडी लुक जो है और ऋतिक रोशन का कबीर वाला स्पेशल जॉन विक स्टाइल कैमियो सुनकर फैंस थिएटर्स की तरफ भागे भी। पब्लिक थक चुकी थी वही पुराने इंडिया और फला कंट्री और फला कंट्री की स्पाई टेम्पलेट से, इसलिए अल्फा का हाइप एक जेन्युइन गेम चेंजर जैसा था। पर अफसोस जब फिल्म थिएटर में आई तो ये सारी हाइप एकदम से फिजल आउट हो गई। फिल्म देखने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन काफी मिक्स्ड और डिसअपॉइंटेड रहा। फैंस का कहना है कि जो हाइप क्रिएट की गई थी एग्जीक्यूशन उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। स्क्रिप्ट इतनी वीक है कि सारे बड़े स्टार्स होने के बावजूद कुछ मजा नहीं आता। ऋतिक रोशन का कैमियो जरूर पैसा वसूल मोमेंट क्रिएट करता है, पर वो

वर्ड ऑफ माउथ के चलते अब इसका लंबे वक्त तक टिकना मुश्किल लग रहा है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। बाकी कई बार ऐसा भी होता ना कि गल्फ कंट्री और बाकी मुल्क में ये चल जाती है, अपने मुल्क में नहीं चलती है। यशराज ने ब्रांड वैल्यू तो बढ़ाने की कोशिश की पर कहानी के नाम पर बड़ा जीरो मिला है, ये बात मतलब सभी कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार रेटिंग के बारे में। वैसे तो इस फिल्म को मेरा बड़ा दिल था, मतलब खास तौर पे जब मैंने देखा इसका ट्रेलर। एक तो ट्रेलर भाई, आजकल की कोई भी फिल्म उठा लो ट्रेलर तो ऐसा धांसू होता है, मतलब ऐसा समझ में आता है कि अरे भाई कुछ तो गदर कटेगी, मजा आ जाएगा देखते हुए, दिल खुश हो जाएगा, क्या ही होगा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा भाई, इस फिल्म को असल में 5 में से 1.5 स्टार्स मिलते हैं। ये रेटिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ग्रैंड है, लोकेशंस कमाल है और एक्शन कोरियोग्राफी पर मेहनत दिखती है। आलिया भट्ट और सरवरी ने बिना किसी डाउट के स्टंट सीन्स बहुत सिलसिलेवार तरीके से किए हैं, तो इसके नंबर जरूर मिलने चाहिए। उनके हार्डवर्क स्क्रीन पर साफ नजर आ रहे हैं। बॉबी देओल ने भी अपने नेगेटिव रोल में थोड़ा बहुत स्वैग दिखाने की कोशिश की, ऑल्दो बॉबी देओल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट कहानी भी एक मसला है ना। हालांकि उनका कैरेक्टर बहुत ही पुअरली रिटन और मिसकास्ट भी लगता है। अनिल कपूर का रोल भी है इसमें, वो इतना पॉइंटलेस से भरा है कि लगता है कि उनके सिर्फ फ्रेम भरने के लिए रखा गया। मतलब कई बार होता है ना कि एक सीन से दूसरे सीन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं और उसमें कट नहीं है तो आपको जबरदस्ती का एक बंदा रखना पड़ता है, भले वो एक्टर और एक्ट्रेस भी नहीं है, है ना, एक रैंडम बंदा है तो उसको चलते हुए दिखा दिया क्योंकि फ्रेम भरना है कि लोगों की नजर जो है स्क्रीन से हटे ना। तो ऐसा लग रहा था कि अनिल कपूर को बस जबरदस्ती कि आ जाइए खड़े हो जाइए ये चल रहा था। बाकी दोस्तों बचे हुए सारे डिपार्टमेंट्स में ये फिल्म एक कंप्लीट डिजास्टर साबित होती है। स्टोरी लाइन में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है और कैरेक्टर्स इनविजिबल लगते हैं जिससे कोई टेंशन बिल्ड ही नहीं होती है। डायरेक्टर शिव ने विजुअल्स एस्थेटिक्स तो अच्छे दिए हैं पर स्क्रीन प्ले के गैप्स को फिल करने में पूरी तरह फेल हो गए। डायलॉग्स काफी

0: होती हैं और हर एक्शन के बाद ओवर एक्सप्लेनेशन दिमाग खराब करती है।
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगे कैसे सीधा? अपने जंगल का शेर है वो।
0: देखो यार, एक तो ये भी मसला है ना कि पता नहीं, यशराज फिल्म्स के जो लोग हैं और जो डायरेक्टर हैं शिव, उनको ये लगता है कि ऑडियंस थोड़ी सी नल्ली होगी, उनको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाई इतना अच्छा जोक मारा, ह्यूमर मारा है या सीन इतना बेहतरीन है, इतने आला दर्जे का है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो यही है कि ओवर एक्सप्लेनेशन जो है वो दिमाग ख़राब करता है। CGI और एक्सप्लोजन्स अभी भी फेक लगते हैं, मतलब यशराज से तो ये उम्मीद नहीं है यार। इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए ये शर्मनाक बात है, कही जा सकती है। अगर आप यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स के मतलब ऐसा ब्लाइंड फैन है ना, तो शायद एक बार झेल लेंगे, वरना ये फिल्म आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करेगी। तो जेब में हाथ रख लो जल्दी से, कोई मतलब नहीं है, मत खर्चे करो, मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका दिल भी है। अच्छा ये भी होता है ना कई बार कि आप कितना भी मूवी को देखें, आपने पसंद हो ना हो, बस ये होता है कि यार चलो देखते हैं, यार मजा आए, दिल खुश हो जाएगा, चार दोस्तों के साथ बैठे, तो वो अगर करना है, फैमिली के साथ करना है, तो ऑब्वियसली ये मूवी देखी जा सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा फन फैक्ट के बारे में, इस मूवी के प्रोडक्शन में क्या फन फैक्ट्स रहे, डायरेक्टर का विजन क्या है, फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिनेमाटोग्राफी और साउंड क्या है इस मूवी की, वो भी जरा हम तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम द वन एंड ओनली फन फैक्ट के बारे में। ये मेरा अपना फेवरेट है जिसमें मुझे खुद भी पता चलता कि अच्छा प्रोडक्शन को लेकर ये बातें थी। तो यशराज की इस पहली फीमेल लेड स्पाई मूवी का प्रोडक्शन स्केल बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का था। सबसे बड़ा फन फैक्ट ये है कि आलिया भट्ट और सरवरी ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने तक बहुत ही हार्डकोर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA और वेपन ट्रेनिंग दी थी। क्या फायदा जब स्क्रिप्ट ही नहीं है, राइटिंग ही अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी आदित्य चोपड़ा के बारे में भी सुन लीजिए, आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि एक्शन बिल्कुल रियल लगे, इसलिए उन्होंने हॉलीवुड के टॉप स्टंट डायरेक्टर्स को हायर किया था, जो पहले जॉन विक और मिशन इम्पॉसिबल जैसे बड़ी फिल्म्स पर काम कर चुके हैं। और मजे की बात यह है कि फिल्म का एक बड़े चेज सीक्वेंस के लिए पूरे 10 दिन तक एक बिजी यूरोपियन सिटी के मार्केट को ब्लॉक किया गया था, जहां रोज रात को हाई स्पीड कार्स और बाइक्स दौड़ाई जाती थी। प्रोडक्शन टीम ने सेट पर सेफ्टी और सीक्रेसी का इतना ध्यान रखा कि किसी भी एक्टर का लुक लीक नहीं होने दिया। शूटिंग के दौरान आलिया और सरवरी के बीच की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी काफी चर्चा में रही, जहां दोनों एक दूसरे को टफ ट्रेनिंग सेशंस के दौरान मोटिवेट करती थी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर विजन। डायरेक्टर का इस मूवी को बनाने को लेकर विजन क्या था? दोस्तों डायरेक्टर शिव रवायल है, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा, जिन्होंने पहले द रेलवे मैन जैसी सीरियस और एक्लेम्ड सीरीज बनाई थी। उनका विजन अल्फा को लेकर बहुत अलग था। वो यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स को पुराने मासी स्टाइल से निकालकर एक मॉडर्न स्लीक और ग्राउंडेड स्पेनिज थ्रिलर बनाना चाहते थे। उनका मेन फोकस था कि फीमेल स्पाइज को सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ऐसी स्ट्रॉन्ग अल्फा पर्सनैलिटीज के रूप में पेश किया जाए जो फिजिकली और मेंटली दुश्मन पर भारी पड़े। शिव ने कोशिश की कि फिल्म के नैरेटिव को बेहतर या फास्ट पेस्ड किया जाए और इसमें इमोशन के साथ साथ थोड़ा डार्क अंडरवर्ल्ड का टच भी मिले। अब इमोशन तो इमोशन के नाम पे आपको ठेंगा ही मिलेगा, ऐसा लग रहा जबरदस्ती का ठूसा गया है। और फिर गाना जब आपको दिखेगा तो आपका ऐसा दिमाग खराब होगा, जिनको सही में गाने से परेशानी है उनके लिए। बाकी शिव का विजन विजुअली बहुत शार्प और एस्थेटिकली प्लीजिंग था, जहां हर फ्रेम एक इंटरनेशनल वाइब देता है। लेकिन उनका ये नया विजन कहानी के ट्रेडिशनल बॉलीवुड एलिमेंट्स और लाउड ड्रामेटिक सीन्स के साथ थोड़ा मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से पूरी फिल्म का बैलेंस थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा,
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही

0: घर पे होते हैं, बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: Absolute Cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल्मिंग लोकेशन। फिल्मिंग लोकेशन के बारे में बात करें तो अल्फा की शूटिंग बहुत ही एक्सोटिक और ब्रेथ टेकिंग लोकेशन पर की गई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ मूवी होती हैं आपको याद हो जाती हैं, जैसे कॉकटेल 2 मूवी आपको याद हो जाएगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वो भी आपको बड़ी याद हो जाएगी उसकी लोकेशन। तो अल्फा की शूटिंग भी बड़ी लाजवाब है और लोकेशन आपको याद रहे, इसकी ब्रांड वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाती भी है ये लोकेशन। फिल्म की शुरुआत कश्मीर के बर्फीली वादियों से होते हुए, जहाँ के माइनस टेम्परेचर होते हैं, माइनस डिग्री टेम्परेचर, वहाँ से शुरू होता है। एक्शन सीन वहाँ शूट किए गए हैं। इसके बाद कहानी यूरोप के सुंदर और पुराने शहरों में शिफ्ट होती हैं, जैसे कि बुडापेस्ट, परगुए, जहाँ की नैरो स्ट्रीट्स और गॉथिक आर्किटेक्चर को चेजेस के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से यूज़ किया गया है। टीम ने मुंबई के स्टूडियो में भी बड़े बड़े सेट्स

0: कॉम्प्लेक्स, अंडरग्राउंड बंकर और हाईटेक स्पाई लैब्स बनाई गई थी। इन ग्रैंड लोकेशंस की वजह से फिल्म का हर एक फ्रेम बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव लगता है। बर्फ से लेकर मिट्टी और ऊंचे ऊंचे ग्लास बिल्डिंग्स तक, लोकेशंस का वेरिएशन ऑडियंस को एक पूरी ग्लोब ट्रॉटिंग एक्सपीरियंस देता है, जो एक आइडियल स्पाई यूनिवर्स की फिल्म से एक्सपेक्ट किया भी जाता है असल में। तो एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें, एक डायलॉग जो है जरा वो भी सुन लेते हैं।
1: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार
0: आपको कुछ यूनिकनेस लगी इस डायलॉग में? नहीं ना। तो जब डायलॉग में यूनिकनेस नहीं है तो फिर मजा नहीं है। मतलब आप जब स्पाई काम कर रहे हैं तो डायलॉग में भी वो स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, है ना। तो वो इतना मजबूत डायलॉग है नहीं। दोस्तों इस फिल्म में एक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अजीब, चौंकाने वाला और इंटेंस था। आलिया भट्ट ने अपने रेगुलर बबली या इमोशनल अवतार को छोड़कर एक एकदम ठंडी और लिथल असैसिन का रूप जो है वो अपनाया था। उन्होंने इस रोल के लिए काफी मसल वगैरह गेन करी थी भाई, मतलब प्रोटीन वोटीन खा रही थी, बॉडी लैंग्वेज को एकदम रिजिड और डिसिप्लिन्ड बनाया, उन्होंने मसल मास भी गेन किया, तगड़ा एकदम हैवी इक्विपमेंट्स उठा रही थी, डंबल अम्बल उठाया उन्होंने भाई। वहीं दूसरी तरफ सरवरी के अगर बारे में बात करें तो अपने फिजिकल स्टैमिना को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई सरवरी। उनकी एजिलिटी और स्पीड स्क्रीन पर साफ दिखेगी आपको। ये तो मतलब है कि अगर आप फैन हैं सरवरी के और आलिया के तो फिर तो नहीं गए तो फिर बहुत कुछ मिस कर दोगे, बाकी तो आपका अपना दिल है नहीं। दोनों एक्ट्रेस ने अपने लुक को काफी रॉ और मिनिमलिस्टिक रखा है बिना किसी हैवी मेकअप के। बॉबी देओल का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने लायक था, उन्होंने अपने लुक को बहुत ही लाजवाब या कहें एक रग्ड बियर्डेड स्क्रीन पर आते ही ऐसा डर जैसा लगता है उनको देखने के बाद।
2: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
0: अनिल कपूर ने एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल के लिए काफी शार्प और सोफिस्टिकेटेड लुक को कैरी किया है, जो उनकी रियल एज को बहुत ग्रेसफुली मैच भी करता है।

इस ट्रेलर से, हाँ मैं मूवी तो नहीं दिखाऊंगा, वहां का साउंड और सिनेमाटोग्राफी क्या ही दिखा पाऊंगा, लेकिन साउंड जरूर सुना सकता हूँ आपको ट्रेलर से। सुनिए कुछ साउंड्स, डायलॉग्स और मजे के सीन्स भी हम कह सकते हैं फ्रॉम द ट्रेलर। FM 107 पे अल्फा के ये जबरदस्त ट्रेलर सुनिए।

यानी साउंड में तो मतलब आपको 5 में से 5 देना पड़ेगा अगर इसकी कोई स्टार रेटिंग होती तो ऑब्वियसली, लेकिन साउंड से मूवी थोड़ी चलती है। विजुअल्स और साउंड के डिपार्टमेंट में फिल्म काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है दोस्तों। सिनेमाटोग्राफी काफी मॉडर्न है जिसमें एनामॉर्फिक लेंसेज और मूडी कलर प्लेट्स का यूज किया जाता है ताकि फिल्म को एक डार्क ग्रिटी और रियलिस्टिक टोन दिया जा सके। कश्मीर के वाइड स्नो शॉट्स और यूरोप के नियॉन लिट नाइट सीक्वेंस देखने में बहुत ही स्टनिंग लगते हैं। एक्शन सीन्स के दौरान कैमरा मूवमेंट बहुत फ्लूड और फास्ट है जो होश उड़ा देते हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर होते तो 5 में से 5 मिलते सिनेमाटोग्राफी में और साउंड में। साउंड डिजाइन की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक रखा गया जो पल्स पाउंडिंग बीट्स के साथ स्क्रीन पर चल रहे केओस को इनहेंस करता है। गन फाइट्स और पंचेस की साउंड कटिंग एज साउंड मिक्सिंग के साथ आती है जो थिएटर के अंदर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। हालांकि म्यूजिक ट्रैक्स थोड़े से हल्के हैं, वैसे तो मैं कहता हूँ म्यूजिक ट्रैक रहना ही नहीं चाहिए था यार, ये क्यों है, म्यूजिक ट्रैक का कोई वजह नहीं है भाई। पर ओवरऑल साउंड डिजाइन और विजुअल क्वालिटी फिल्म को आखिरी तक टेक्निकल सपोर्ट देती है। तो अगर आपने इतना कुछ सुन लिया है तो अब तक तो पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, मतलब मूवी देखना है नहीं देखना है। चलो घर चलते हैं, छोड़ो भैया कुछ और, चल खाना पीना खा के आ जाए यार, 35-40 रियाल क्यों खर्च करें, चलो बारबी क्यों खा लेते। अगर ये सोच रहे हैं आप तो काफी हद तक सही सोच रहे हैं लेकिन ये भी बड़ा जरूरी है कि हम बात कर लें स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में ताकि आपको और ज्यादा अंदाजा हो जाए, क्योंकि कई ऐसी मूवीज है जैसे

गुंडे है ना, जिसमें अर्जुन कपूर हैं और रणवीर सिंह हैं, मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी। ऑल दो बॉक्स ऑफिस में उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, उसके गाने भी मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मूवी का एक प्लॉट सुन ले आप और इसके बाद फिर आपकी मर्जी है। तो दोस्तों स्पॉइलर फ्री प्लॉट ऐसा है, अल्फा की कहानी यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स के एक नए और बिल्कुल बिखरे हुए चैप्टर को खोलती है। कहानी घूमती है दो तेज तर्रार और लीथल फीमेल सीक्रेट एजेंट्स के दरमियान, आलिया भट्ट और सरवरी के आसपास, जिन्हें देश के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल और डेंजरस मिशन पर भेजा जाता है। दोनों को एक ऐसी डेडली इंटरनल थ्रेट और ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करना है जो पूरे देश की सिक्योरिटी को हिला सकती है। अगेन यही पुरानी वाली बात है यार, मतलब कुछ नया नहीं है इस स्पाई यूनिवर्स में, ये होता है यार। मिशन के दौरान उन्हें एक बहुत ही खतरनाक और चालाक विलन यानी कि बॉबी देओल का सामना करना पड़ता है, जो हर कदम पर उनसे दो कदम आगे लगता है। दोनों फीमेल स्पाइज को ना सिर्फ दुश्मन से लड़ना है बल्कि सिस्टम के अंदर छुपे हुए गद्दारों और धोखे से भी खुद को बचाना है। अब बताइए आपको टाइगर जिंदा है या फिर यू नो वो जो एक और मूवी थी वॉर,

हार्डकोर एक्शन रोल किए हैं और उनका डेडिकेशन, उनके टफ बॉडी लैंग्वेज और हाई ऑक्टेन स्टंट्स में साफ झलकता भी है। उन्होंने एक सीरियस और कैलकुलेटेड एजेंट का रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है, लाजवाब। बात करते हैं सरवरी के बारे में। सरवरी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, ऑब्वियसली आलिया भट्ट जितनी फेमस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरवरी को आप देखेंगे, एक तो नेचर उनका बड़ा अच्छा है, ऊपर से उनका जो काम है वो भी बहुत अच्छा है, मेहनती बहुत हैं, तो सरवरी उन्हें स्क्रीन पर आप जब देखेंगे वो बराबर की टक्कर देती हुई नज़र आएंगी। उनका स्टेमिना, फिजिकल एजिलिटी और स्क्रीन, अच्छा एक दो चीज़ है, एक तो स्क्रीन शेयर करना आलिया भट्ट के साथ, उसके अलावा स्क्रीन पर प्रेजेंस आलिया भट्ट के साथ, ये दो अलग चीज़ है। तो स्क्रीन शेयर करते हुए भी अच्छी लगी है, मैं कहूँगा कहीं कहीं ज़्यादा अच्छी लगी है आलिया भट्ट से। उसके अलावा स्क्रीन पर जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी कमाल है और एक्शन सीन्स में वो बहुत ही कन्विंसिंग भी लगती हैं। बॉबी देओल ने एक बार फिर से अपने नेगेटिव रोल में वही रग्ड और मेनेसिंग स्वैग लाने की कोशिश की है जो उन्होंने एनिमल में किया था, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत ही पुअरली रिटन है। मुझे लगता है कि शायद मे बी बॉबी देओल की गलती ही नहीं है, जिस तरह से उनका असल में वो होता है ना कि अरे सचिन तेंदुलकर का दौर चल रहा था भाई, वैसे ही बॉबी देओल का दौर चल रहा है भाई। जिस तरह से वो काम करते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई कमी उनके अंदर होगी। बाकी अगर हम बात करें स्वैग के बारे में तो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने स्वैग दिखा दिया और लाजवाब भी है। उन्होंने एनिमल में काम अच्छा किया भी और अभी तक याद है। फिर उसके बाद अनिल कपूर का जो काम है वो हमेशा की तरह डिग्निफाइड है, पर उनका रोल बहुत छोटा और सिंपल है जो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। ऐसा है कि YRF ने, यानी कि यशराज फिल्म्स ने कुछ पैसे दे दिए अनिल कपूर को कि आके बस आप स्क्रीन भर दें और आप लगते भी अच्छे हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप लगते भी अच्छे। बाकी क्रिटिक्स का क्या कहना है इस मूवी को लेकर? वेल दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना मूवी का रिव्यू क्रिटिक्स के नज़रिए से ही सुना है, मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करी दिया ऑलरेडी, बट असल में क्रिटिक्स का क्या कहना है, जिनका काम ही, जिनकी जॉब है क्रिटिक्स होना। फिल्म क्रिटिक्स की तरफ से अल्फा को काफ़ी मिक्स्ड और डिसअपॉइंटेड रिव्यूज़ मिले हैं। ज़्यादातर क्रिटिक्स ने आलिया भट्ट और सरवरी के इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस को बहुत सराहा है, बहुत ज़्यादा सराहा है। उनका कहना है कि दोनों एक्ट्रेसेस ने एक्शन डिपार्टमेंट में बॉलीवुड के बड़े बड़े मेल स्टार्स को टक्कर दी है। प्रोडक्शन क्वालिटी, ग्रैंड यूरोपियन लोकेशंस और स्लीक सिनेमाटोग्राफी की भी काफ़ी तारीफ हुई है, लेकिन इन सब चीज़ों से मूवी थोड़ी चलती है। मूवी तो चलती है बेहतरीन राइटिंग से, बेहतरीन कोरियोग्राफी से, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, साउंड, साथ ही साथ स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, हर एक छोटी चीज़ है ना। लेकिन क्रिटिक्स का सबसे बड़ा जो गुस्सा है वो फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन पर निकला है। उनका मानना है कि डायरेक्टर शिव एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले देने में पूरी तरह से फेल हो गए। कहानी में बहुत सारे लॉजिक होल्स हैं, डायलॉग्स काफ़ी चीज़ी हैं और इमोशंस बिल्कुल फोर्स लगते, ज़बरदस्ती ठूस दिया गया। क्रिटिक्स के मुताबिक यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स अब धीरे धीरे अपना चार्म खो रहा है, क्योंकि उनके पास ग्रैंड एक्शन के अलावा दिखाने के लिए कोई ढंग की स्टोरी नहीं है। अगर आप सिर्फ बड़े पर्दे पर स्टाइलिश विजुअल इफेक्ट्स, ग्रैंड इंटरनेशनल लोकेशंस और कमाल की एक्शन कोरियोग्राफी देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको थोड़ी बहुत पसंद आ सकती है। आलिया भट्ट और सरवरी ने इस फिल्म के लिए जो खून पसीना बहाया है वो उनके स्टंट्स और टफ बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखता है। उनका ये हार्डकोर अवतार बॉलीवुड सिनेमा के लिए एक नया और फ्रेश स्टेप जरूर है, लेकिन अगर आप एक अच्छी स्पाई थ्रिलर फिल्म से एक टाइट स्क्रिप्ट, दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस और अच्छे डायलॉग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फिल्म आपको पूरी तरह निराश, डिसअपॉइंट करेगी। फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसका हॉलो और प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। यशराज स्पाई यूनिवर्स अब धीरे धीरे उसी पुराने और थके हुए टेम्पलेट में फंसता जा रहा है और ये बॉलीवुड की प्रॉब्लम भी रही है दोस्तों, जहां कहानी से ज्यादा एक्सप्लोजन्स पर ध्यान दिया जाता है। बॉबी देओल, अनिल कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर्स का पोटेंशियल इस कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से बिल्कुल वेस्ट हो गया है। ऋतिक रोशन का कैमियो थोड़ी देर के लिए थिएटर में सीटियां जरूर बजवाता है, पर वो भी डूबती हुई नैया को बचा नहीं पाता।
क्योंकि ऋतिक रोशन का ऑरा एक अलग ही है, उनकी तो एंट्री में भी देखो यार कहीं पर भी एंट्री कर जाए

0: किसी मॉल में भी एंट्री कर जाए तो सीटियां बच जाएंगी, कोई बड़ी बात है, दैट्स नॉट अ बिग डील ऑब्वियसली. इसलिए हमारा फाइनल यानी कि एफएम 107 पे फजील का ये रिव्यू ऑफ द वीक का फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि आप इस फिल्म को स्किप कर सकते हैं. बहुत दिनों बाद मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म स्किप कर सकते हैं, अनलेस आप स्पाई यूनिवर्स के बहुत बड़े फैन या कहते हैं ना एकदम ब्लाइंड फैन हो तब. बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. दोस्तों अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं बता दूं, आज हमने अल्फा मूवी का रिव्यू करा जो कि बहुत अच्छी कोई मूवी नहीं है, लेकिन अगर आप फैन हैं ऐसी मूवी के, स्पाई यूनिवर्स के और यशराज फिल्म्स के, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं. 35 रियाल, दैट्स नॉट अ बिग डील. इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीक, जहां पर हम एक नए फिल्म के बारे में बात करेंगे, उसके सिनेमाटोग्राफी, एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्टर का विजन, प्रोडक्शन का फैक्ट यानी कि फन फैक्ट क्या रहा उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्या स्टार रेटिंग है, क्या हाइप है उन मूवीज के बारे में जो अगले हफ्ते अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. तब तक सुनते रहें एफएम 107, दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Mixing in the house.

0: Yeah.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी. तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीद टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: आप जिनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुशामदीद एंड वेलकम टू आवर शो कॉल्ड कतर बिजनेस 360। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया। दोस्तों, इस शो में हम बात करते हैं कतर के तेजी से बढ़ते हुए बिजनेस लैंडस्केप की, और आज के इस एपिसोड में खास बात होने वाली है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो ओनर हैं पिस्तेशो रेस्टोरेंट की। उनका सफर, उनका विजन और उनकी सक्सेस स्टोरी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कन्वर्सेशन को। तो हम वेलकम कहना चाहेंगे हमारी बहुत ही कमाल की गेस्ट फारिहा का ऑन FM 107। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से?
3: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह।
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमें बताइए कि आपने अपने रेस्टोरेंट की एक नई ब्रांच खोलने का जो आइडिया अडॉप्ट किया, ये कहाँ से किया और क्या कोई खास इंस्पिरेशन थी इसके पीछे?
3: तो कोई खास इंस्पिरेशन तो नहीं थी, लेकिन असल में जो अलसद ब्रांच जो थी हमारी, उसका काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस था हम लोगों को ना। तो उसके बाद फिर कस्टमर्स की डिमांड भी थी हमारे लिए कि क्या नाम है, अपनी लोकेशन पे हम मतलब खोले हमारे लिए, और जो काफी कस्टमर्स थे हमारे वो कह रहे थे कि हमारे लिए डिफरेंट लोकेशन पे खोलना है। तो हमने वाकरा एरिया का एक चूज किया एरिया, जहाँ पर हमें पता है कि इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ी जरा ज्यादा है। तो हम जा रहे थे कि वहाँ पर भी हमें जो हमारी सर्विसेज है वहाँ पर भी लोगों को मिले। तो बस सिर्फ यही चीज हमारी एक थीम है कि हमने दूसरी ब्रांच, हमने ये वाली चीज सोच के खोली है।
2: अच्छा, रेस्टोरेंट की जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हैं, और फिर आपको बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स और बहुत सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना ही पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ और फूड दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसे में आपको क्या पहले से गुड एक्सपीरियंस था, आई मीन पाकिस्तान में या इंडिया में आपने पहले रन किए हुए थे रेस्टोरेंट्स, या ऑल ऑफ सडन ही आपने डिसाइड किया कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं? तो अगर मान लीजिए किसी के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है रेस्टोरेंट का, तो क्या वो भी इस इंडस्ट्री में आ सकता है, और कौन कौन से बेसिक्स प्रीरिक्विजिट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे किसी को भी जब इस इंडस्ट्री में वो एंटर करे?
3: देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप स्टार्टिंग से लेकर आ जाएंगी और आपको सारा एक्सपीरियंस मतलब डे वन से आपको मिल जाएगा। थोड़े से रिस्क होते हैं, और यहाँ पर स्पेशली आपको पता है कि यहाँ पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है। तो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यह है, और हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी वो क्वालिटी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वो चीज़ है, और मैंने खैर ना इंडिया ना पाकिस्तान कहीं पर भी मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं। अच्छा। लेकिन ये था कि जो हमारी मेरी जो को पार्टनर है रिजवाना, जो अलसद वाली ब्रांच में थी, वहाँ उनके साथ रह के मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया था। तो उसके बाद ही मैं इधर नेक्स्ट ब्रांच का मैंने मतलब स्टेप लिया था कि मैं इस चीज़ को फिर मैं आगे रन करूँगी और आगे इस चीज़ को ऑपरेट करना है। तो खैर काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जो मुझे काफ़ी सब कुछ मुझे सामना करना पड़ा, और स्टिल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, हर दिन डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, बट स्टिल कोशिश होती है कि रेस्टोरेंट को स्मूथली चले और कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस मिले।
2: चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, रेस्टोरेंट का अपना एक थीम होता है, एक खास तरीके की ऑडियंस होती है जिन्हें आप टारगेट कर रही होती हैं, तो आपके रेस्टोरेंट का पर्टिकुलरली क्या कॉन्सेप्ट और क्या थीम है, और आपने इसे किस तरह से डिसाइड किया, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको जहन में रख के आपने डिसाइड किया?
3: देखिए, जो हमारे जो रेस्टोरेंट की जो थीम है वो काफी मतलब मॉडर्न है और काफी वेलकमिंग भी है, आप इसको वेलकमिंग भी कह सकते हैं। लाइक हमें जो, क्योंकि जो हमारी अलमशाब ब्रांच जो है वो, उसके अंदर मतलब हम लोगों को ये चीज़ हमारी थी कि उस जगह उस एरिया पे पर्टिकुलर कोई फाइन डाइन हमारे पास रेस्टोरेंट नहीं था। तो हम लोगों ने उस चीज़ पर रखा, ज़्यादा फोकस हमारा ये चीज़ थी कि लोग आए और उनको क्वालिटी ऑफ फूड के साथ उनका एक एक्सपीरियंस, एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस भी हो। तो हमारा जो काफी मतलब इस चीज पर ज्यादा फोकस था और हमारा जो रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट है वो भी काफी मतलब फैमिली फ्रेंडली है और हमारे जो टारगेटेड है जो आपके कस्टमर जो आप कह सकते हैं वो यही है कि इंडियन पाकिस्तानी वहां पर ज्यादा है, खैर वहां पर अब लोकल्स भी हैं जो काफी मतलब आते हैं और वो उसको पसंद करते हैं काफी तो
2: इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अच्छा आजकल फारिया देखा जाए तो डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डर्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आप जो है पर्टिकुलरली इस चेंज को कैसे देखती हैं और आप अपने बिजनेस में से किस तरह से अडॉप्ट आपने किया है?
3: जी ये बात तो खैर है कि मतलब अब लोग जो है वो ऑनलाइन डिलीवरीज की तरफ ज्यादा गए हैं कंपैरेटिवली के लोग ज्यादा बाहर निकले उनको ज्यादा बेटर ये लगता है कि वो घर बैठे ऑर्डर करें। तो अब ये चीज है कि हम लोग ऑर्डर जब प्लेस कर रहे होते हैं लोग आते हैं हमारा मतलब आप जब डाइनिंग के लिए जाते हैं तो एक से दो चीजें आप ऑर्डर कर रहे होते हैं और हम उनको रेकमेंड भी करते हैं कि आप हमारी ये चीज भी ट्राई करें, बट ऑर्डर जब प्लेस होता है तब तो वो उस टाइम पे आपके पास से वो पर्टिकुलर ही ऑर्डर प्लेस किया जा रहा होता है तो हमारी अब इससे बिजनेस पे इफेक्ट होता है डेफिनेटली क्योंकि वो ही पर्टिकुलर ही चीज आ रही होती है, लेकिन ये कि लोग हमारे क्या कह सकते हैं कि आजकल का अब ये ट्रेंड ही ऐसा ही है कि अब लोग ज्यादा कोशिश हो रही होती है लोगों की कि भाई घर पे बैठ के बस फूड को एंजॉय किया जाए।
2: सही कहा आपने, बिल्कुल वहाँ पे तो आप कन्विंस कर सकती हैं एक आध चीजें और टेम्पटिंग भी लगती हैं लेकिन अब ऑर्डर में तो आप बिल्कुल ही पर्टिकुलर हो जाते हैं।
3: अच्छा बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाते
2: हैं। हाँ अरे एक चीज आपसे और जानूंगी, मैं हमेशा इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इंक्यूजिटिव रही हूँ कि मेन्यू डिजाइन करते वक्त एज ए रेस्टोरेंट ओनर आप लोग किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, कि आपको लगता है कि टेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या आपके हिसाब से प्रेजेंटेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या फिर प्राइसिंग और बजटिंग, उस हिसाब से अपने मेन्यू डिसाइड करते हैं?
3: मेन्यू तो देखिए हम लोगों का वही वाली बात है, पहले तो हमें प्राइस एंड बजटिंग की तरफ देखना पड़ता है क्योंकि वही बात है अगर आप ज्यादा प्राइस इसमें लगाएंगे तो लोग वैसे भी नहीं आएंगे कि भाई बहुत ही है। ये चीज़ है कि हम जो है हमारा जो मेन्यू होता है वो यही चीज़ पर डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल पे हमें बेहतरीन क्वालिटी और प्रेजेंटेशन पर भी हमारी फोकस की जाती है कि भाई प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई प्रेजेंटेबल हो फूड, पिक्चर्स दी जाती है वो आगे से आगे लोग रिकमेंड करते हैं आगे पोस्ट करते हैं तो इस तरह से हमारी मार्केटिंग भी होती है एक तरह की, तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं।
2: नाइस। अच्छा एक चीज़ कही जाती है कि जो है उनकी लोकेशंस बहुत मैटर करती हैं, तो आपके ख्याल में लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक रेस्टोरेंट की कामयाबी के लिए?
3: लोकेशन एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि अगर हम ऐसी लोकेशन पे रखे हैं जहाँ पर जिस तरह अभी मैंने आपको जो बताया कि स्टार्टिंग में हमने जो अपनी लोकेशन चूज की थी वो यही चूज की थी क्योंकि वहां पर हमें पता था कि भाई वहां पर इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा है, हमारे टारगेटेड कस्टमर्स भी वही है, तो अगर वहां पर दूसरी डिफरेंट कम्युनिटीज होंगी क्योंकि हमारा जो बेसिक मेन्यू है वो है ही थोड़ा सा इंडो एशियन कुजीन है तो हम उन्हीं लोगों को मतलब उन्हीं लोगों को ही हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी लोकेशन थोड़ी जरा आउट होगी तो लोग जाएंगे तो बट हमारी कस्टमर जितनी हमारी मतलब इतने ज्यादा लोग में से नहीं लगता कि इतने आएंगे क्योंकि अगर हमारी थोड़ी सी लोकेशन हमारी उन कस्टमर्स की तरफ नहीं होगी क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो कहते हैं नियर बाय जाना या उनके लिए

0: बड़ी चीज है जो मैटर करती है. सेंट्रली लोकेटेड आप कह सकते हैं ना कि वो एक ऐसी चीज है कि सबसे नियर भी हो वहाँ पर और लोग जाएं और इजीली अपना फैमिली टाइम एंजॉय करें.
1: बिल्कुल सही कहा. अच्छा फारिया, सोशल मीडिया का दौर है और कहा जाता है कि सोशल मीडिया स्पेशली रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा टूल बन चुका है, तो आप किस तरह से देखते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल को एंड एट द सेम टाइम आपकी खुद की प्रमोशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं?
0: हाँ, सोशल मीडिया तो आजकल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. मतलब आजकल हर कोई सोशल मीडिया की ही तरफ जा रहा है और उसी के लिए ही है, क्योंकि हम लोग वही है कि हम सोशल मीडिया पे अपने आप को अपडेट रखते हैं और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वही होती है कि हम सोशल मीडिया पे ही लाएं लोगों को, क्योंकि और हमारी जो होती है डिफरेंट रेसिपीज को भी हम लेकर आ रहे होते हैं और वो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं कि हमारी ये डिफरेंट रेसिपी न्यू रेसिपीज हैं जो हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं, वो हमारे जो फेसबुक पेज है, जो डिफरेंट इंस्टाग्राम पेज है, हम उस पे लेकर आते हैं ताकि लोग उसको देखकर लोग फिर आते हैं.
1: अच्छा,
0: तो हाँ, उसको देखकर लोग फिर आते हैं और फिर आके लोग आके रेकमेंड करते हैं, लोग आके डिफरेंट चीजों पे, मतलब इस तरह से लोग आपके जो सोशल मीडिया का जो दौर है उससे हमें काफी, मतलब कह सकते हैं कि आपको मदद मिल गई आपके जो बिजनेस है उसको ग्रोथ के लिए.
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने. अच्छा, फूड कॉस्ट और देखा जाए एक्सपेंसेस, इनको बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग होता है और आप इसे पर्टिकुलरली कैसे मैनेज करते हैं?
0: ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि हमारी फूड कॉस्ट को और जो हमारी जो मेन आइटम होता है उस पर हम लोगों को बैलेंस करना होता है, क्योंकि हमें जो एक चीज मिल रही होती है और फिर आगे हमें उसको सेल करना है. अगर हमने उस प्राइस को थोड़ा सा हाई किया तो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट पे आजकल जो कंपटीशन है, तो वो चीज होती है कि भाई ये चीज यहाँ तो ये प्लेट हमें इतने की वहां मिल रही है और उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स उठाए या कुछ भी, हमें उस चीज को बड़ा बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम उसी चीज को लेकर चल रहे होते हैं क्योंकि डिफरेंट फूड हमारे पास है. लाइक अगर आप एक एग्जांपल एक बिरयानी की ले लें, तो हमारे जो राइस है वो हम अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को. पर वही बात है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी की यूज करेंगे तो आपके ये प्राइसेस भी बढ़ रही हैं क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं अच्छी चीज. तो बात वही आ जाती है कि हमें फिर वही मेंटेन करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, और हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं उनकी ये बात होती है कि आपकी प्राइसेस के अकॉर्डिंग आपका जो वो जो आपके क्या कह सकते हैं उसकी क्वांटिटी आपकी वो इतनी ज्यादा मतलब आपकी मैच नहीं कर रही है, पर हमें काफी काफी कुछ करके देख के करना पड़ता है.
1: सही, ये भी अपने आप में चैलेंजिंग की है. अच्छा, ये जो होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, इसमें देखिए बहुत सारे नए ट्रेंड्स आते ही रहते हैं, तो आप अपने आप को इन चेंजेस के साथ किस तरह से अपडेटेड रख पाती हैं?
0: ये बस वही चीज है मैंने आपको पहले बताया कि वही सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको अपने आप को अपडेट रखते हैं. बिल्कुल नए चैलेंजेस हमारे होते हैं, डिफरेंट हर दिन एक नया चैलेंज होता है हमारे लिए और वही सोशल मीडिया के ही थ्रू हम अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो वही बात है कि आप मार्केट से बैक होंगे और हमारे जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है उसके लिए हमें हर वक्त एक सोशल मीडिया के साथ अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, अपने फेसबुक पेज को चलाना पड़ता है, अपने डिफरेंट रेसिपीज को और जो हमारे न्यू रेसिपीज हैं उनको जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है उनको अपने प्लेटफॉर्म में दिखाना पड़ता है ताकि लोग इसको देखकर फिर आए और आके एंजॉय करें.
1: अच्छा, ये इंडस्ट्री ऐसी भी है कि जिसमें बहुत सारे आपके टीम मेंबर्स हैं, उन सब के साथ एक अच्छा भरपूर कोऑर्डिनेशन, फिर उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस, फिर उनको एक्सपर्ट करना किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ये सारी चीज़ें क्या आप खुद ही इन्वॉल्व होती हैं, सब कुछ खुद करती हैं, और या कोई और तरीका है जहाँ पर आप इन्हें कहीं बाहर भेज कर उन्हें ट्रेन करवाना या सिखवाना? बिकॉज खाना भी जैसे आप बता रही हैं तो आई एम श्योर शेफ भी उस तरह के कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, तो ये चीज आप कैसे मेंटेन करती हैं कि जो फ्लेवर है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे और उसमें कोई खास वेरिएशन या चेंजेस ना आए?
0: ये सब चीजें तो खुद ही मुझे मैनेज करनी होती है और क्या नाम है, मेरी किचन स्टाफ के साथ मेरी कम्युनिकेशन रहती है बैक टू बैक, लाइक डेज में मेरी किचन स्टाफ के साथ, और जो वहाँ पर मतलब जो आइटम बन रहा होता है, जो फूड हमारा बन रहा होता है, वो मैं खुद जाके टेस्ट कर रही होती हूँ. کہ ہمارے کچھ ٹیسٹ میں کچھ چینجز نہ آئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اوٹ آپ ہمارے ریسٹورینٹ ہے اس کے اندر آپ کو کوالٹی, کوانٹیٹی, کنسسٹینسی یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر ہم لوگوں کو وہ

0: टेस्ट दोबारा दोबारा नहीं मिलेगा तो वो लोग दोबारा नहीं आएंगे, कि इनका हर दफा टेस्ट डिफरेंट है. तो हमें ये चीज है कि मुझे खुद जाकर ये पर्सनली खुद जाकर चीजें चेक करनी पड़ती हैं और खुद जाकर देखती हूँ. मेरा किचन स्टाफ के साथ काफी कम्युनिकेशन रहता है, खुद किचन में जाकर हर चीज को देखना, फूड टेस्ट को खुद करना और सब चीजों को मतलब मुझे खुद ही चेक करना पड़ता है. तो ये सब चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर ये सब चीजें नहीं हो तो हमारा जो फूड है वो टेस्ट वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वही बात है कि जब आप किसी पर सुपरविजन पे नहीं रहते हो तो वो अपने आप से कुछ ना कुछ चल रही होती है सिलसिले.
1: बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, हमेशा ऐसा तो होता नहीं है फारिया के लोग आपको जो है ना वो हमेशा अप्रिशिएट करें, खाने को अप्रिशिएट करें. आई एम श्योर कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते होंगे जो आपको यू नो नेगेटिव फीडबैक देते होंगे या वो उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते होंगे. तो उन नेगेटिव कमेंट्स के लिए किस तरह से आप और आपकी टीम तैयार रहती है, और क्या वाकई वो उन चीजों पर सजेशंस पर आप काम करते हैं, एंड हाउ डू यू हैंडल दोस कमेंट्स?
0: देखिये, असल में कस्टमर जो है ना वो देखें दो तरह के, एक डाइनिंग है और एक टेक अवे. अगर डिपेंड करता है कि हमारी डाइनिंग कस्टमर्स पे कोई हमारे कोई हमारे पास शिकायत आती है डाइनिंग कस्टमर पे रिलेटेड टू फूड क्वालिटी, या उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है कि आपके वेटर्स हैं उन्होंने हमें टाइमली खाना सर्व नहीं किया, तो वो चीज़ है कि उसी टाइम पे हम लोग उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. और अगर क्योंकि हर जो कस्टमर होता है उसकी जो डिमांड है एक्सपेक्टेशन होती है उनकी डिफरेंट होती है. तो वो आके अगर उन्होंने आके हमें ये बोला कि आपकी क्वालिटी या आपका फूड का मतलब अच्छा नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको नेक्स्ट मतलब ऑर्डर उसी टाइम पे ही उनके अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस उनको प्रोवाइड किया जाए और उनको सेटिस्फाई किया जाए. और अगर कोई सर्विस से रिलेटेड होती है तो उस टाइम पे तो खैर उनको हम टैकल करके, लेकिन बाद में फिर मेरी ये कोशिश होती है कि जो मेरा हॉल स्टाफ है उसके साथ मेरी मीटिंग की जाए और फिर मैं उनको इस तरह से हैंडल करती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम हुई क्या थी जो हमारी तरफ से ये नेग्लिजेंस हुई है. तो ये इस तरीके से मुझे सॉर्ट आउट करनी पड़ती है चीजें.
1: सही. अच्छा फारिया, कभी ये भी होता है कि सीजनल मेन्यूज हैं या फिर कुछ नई डिशेस हैं जो इंट्रोड्यूस की जाती हैं या करती होंगे आप, तो उस वक्त आपका डिसीजन प्रोसेस क्या होता है?
0: हाँ, सीजनल जिस तरह से हमारी मतलब गर्मियों में हमारी जो डिशेज होती हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जिसमें लेमन मतलब जूसेस से देख लें या डिफरेंट हमारी डेजर्ट में देख लें, और सर्दियों में हमारा डिफरेंट होती है, तो वो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सीजन हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड है कि मार्केट की डिमांड है, क्योंकि लोग आके डिमांड कर रहे होते हैं कि भाई अब जिस तरह सर्दियों में लोग मीठे की कुछ और डिमांड कर रहे होते हैं, तो वो हमारी डिमांड होती है, तो हम उस डिमांड के हिसाब से अकॉर्डिंग हम अपने मेन्यू में थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर आते हैं. एकदम से चेंज नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता मतलब एकदम से नहीं, क्योंकि हमारे लिए चेंजेस करना एकदम से बहुत मुश्किल भी है. तो मेन्यू में हम स्लाइटली चेंज करते हैं, एक या दो डिशेज को एड ऑन करके या एक डिशेज को हटा कर चेंज कर फिर हम लोग मतलब लोगों को इस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये डिमांड है हमारी मार्केट की, अब हमें उस चीज को तो कवर अप करना ही है.
1: बिल्कुल सही कहा. अच्छा, आजकल मुझे क्या लगता है कि आउटिंग या वीकेंड्स का मतलब है रेस्टोरेंट्स या बाहर जाके खाना खाना फॉर फैमिलीज एटलीस्ट. और स्पेशली अगर समर्स में देखिए तो बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो और भी ज़्यादा लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि भाई वीकेंड इंजॉय करना है, मतलब बाहर कहीं खाने खाना जाना. तो आजकल मुझे क्या लगता है कि कस्टमर्स जो है वो सिर्फ खाना नहीं खाते, बल्कि उनको एक पूरा एक्सपीरियंस चाहिए होता है फैमिली के साथ. तो आप अपने रेस्टोरेंट में इस एक्सपीरियंस को किस तरह से डिज़ाइन करती हैं या प्लान कर रही हैं?
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, आपकी बात सही है कि लोग आजकल जब जाते हैं बाहर तो उनको चाहिए होता है एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक प्रॉपर उनको सिटिंग चाहिए होती है जहाँ पर वो फैमिली के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. तो वो हम लोग उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं. और हमारा जो पहले नहीं मैंने कहा कि हमारी जो थीम है वो इसी तरीके की है कि लोग आएँ और वो यहाँ पर वेलकम हों और यहाँ पर आके अपना बहुत अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, जिसपे हम लोगों ने काफ़ी लोगों मतलब हमारा जो फूड है उनकी उसकी प्रेजेंटेशन पर भी हमने ज़्यादा अपना जोर दिया हुआ है, क्योंकि लोग अब आके पिक्चर्स लेते हैं. तो वही चीज़ है कि हमारी क्योंकि लोग आके देखते हैं कि आते हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और उनको अपना एक अच्छा एम्बियंस भी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, तो लोग आके इंजॉय भी कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी मिलता है हमें.
1: सही सही, बहुत ही अच्छी बात होती है. अच्छा फारिया, आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि लोग जो है ना वो हेल्दी ईटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने मेन्यू में भी जो है वो इस ट्रेंड को इंक्लूड किया हुआ है?
0: जी जी हमारे पास मेन्यू में कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, जिस तरह से वेज है, नॉन वेज है, हेल्दी भी है, सैलड्स भी है, मतलब काफी हद तक डिफरेंट हमारे पास मेन्यू है. अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स प्रेफरेंस हम उनको वो चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो अगर उनको हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है तो वो भी हमारे पास होते हैं, बट सिलेक्टेड है. हमारे पास ये नहीं है कि बहुत वास्ट हमारे पास ऑप्शंस है, लेकिन सिलेक्टेड है, क्योंकि हमारा जो मेन जो है वो तो आपको पता है कि वो अलग ही कुजीन है. तो हमारे लेकिन ऑप्शंस हमने फिर भी दिए हैं, बट बहुत सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं, बट स्टिल वी हैव एन ऑप्शन. तो वी कैन लाइक हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं अगर उनको चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस.
1: सही. अच्छा, आपके ख्याल में क्या एक रेस्टोरेंट को सर्वाइव करने के लिए, आज का जमाना टेक्नोलॉजी इनोवेशन का है, तो आप क्या मानती हैं कि इनोवेशन ज्यादा जरूरी है या फिर ट्रेडिशन को मेंटेन रखना, आई मीन ट्रेडिशनल फूड को मेंटेन रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
0: आई थिंक ट्रेडिशनल फूड को इम्प्रूव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग आजकल, क्योंकि रेस्टोरेंट जाने का मतलब लोग एम्बियंस तो देखते हैं बट वो सेकंड पे आता है. अगर आपका फूड अच्छा हो, फूड की क्वालिटी अच्छी होगी तो ही लोग आएंगे, वो दोबारा भी आएंगे और लोग रेकमेंड भी करेंगे. एम्बियंस इट्स अ फैक्टर कि मतलब वो अच्छी चीज है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड को लोग ज्यादा देखेंगे. तो हमारे जो वही जो ट्रेडिशन फूड है, हम उसी चीज को ही और उसकी क्वालिटी को, उसके टेस्ट को मेंटेन करना ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है.
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की आपने. अच्छा, क्योंकि आप खुद जो है, अब जाहिर है आप बिजनेस वुमन है, प्लस एट द सेम टाइम यू आर मॉम, आप मदर भी हैं, तो मुझे बताइए कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है और आप इसे कैसे हैंडल कर पाती हैं?
0: मुश्किल तो खैर है, लेकिन जब आपके पास एक पैशन होता है कुछ करने के लिए, कुछ करने की चाह होती है ना, तो आप अपने लिए खुद ब खुद एक टाइम निकाल लेते हैं. आप अपनी फैमिली को भी इग्नोर नहीं करते, आप फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हैं और आप इसके लिए भी आप टाइम निकाल लेते हैं. मतलब आपके लिए मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग है. मैंने जिस तरह से आपको बोला कि डेली लाइफ में मेरे पास डेली चैलेंजेस होते हैं जो मुझे उसको देखने पड़ते हैं. अपनी फैमिली को भी देखना है और रेस्टोरेंट को भी देखना है, बट ये मेरी खुद की पर्सनल डिसीजन थी, पर्सनल मेरा मेरी ख्वाहिश थी, मेरा खुद पैशन था कि मुझे ये करना है. तो वो आप जब आप खुद जो आप एक कहते ना पैशन से कोई चीजें कर रहे होते हो तो आपको वो चीज मुश्किल नहीं लग रही होती है, वो आप खुद ही अपने चाह पे कर रहे होते हो. तो अभी ये खुद की मेरी ख्वाहिश थी, तो अब वो चीज मुश्किल भी है लेकिन मैं उसको करके खत्म कर रही हूँ. मेरे लिए मेरी फैमिली लाइफ भी मतलब इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं चीज चल रही है और साथ साथ ये भी चल रहा है.
1: हैट्स ऑफ कि आप फैमिली लाइफ इतने अच्छे से जो है वो भी हैंडल कर रही है, एंड एट द सेम टाइम लेट मी अप्रिशिएट यू कि आप कितनी अच्छे तरीके से अपना बिजनेस भी हैंडल कर रही है. एंड यू आई नो एज अ पर्सन आप बहुत ही डाउन टू अर्थ, यू सच अ हम्बल, ऑलवेज ऑलवेज विद द स्माइल. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके उस बिजनेस पर भी रिफ्लेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी.
0: थैंक यू सो मच.
1: अच्छा फारिया, आज के वक्त में ना सस्टेनेबिलिटी की हर कोई बात कर रहा है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की हर कोई बात कर रहा है, तो ये प्रैक्टिसेस कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में?
0: रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बात है कि इको फ्रेंडली लोग अब वही बात आप अगर बात करते हैं, लोग आजकल बात कर रहे हैं, अब हम लोग को जो टेक अवे ऑर्डर देने होते हैं उसके अंदर भी लोग काफी बोल रहे होते हैं कि मतलब आपको पता है आजकल पेपर बैग्स और इन सब चीजों की तरफ भी ज्यादा लोग आ गए हैं कि हम प्लास्टिक फूड जो मतलब जो कंटेनर्स होते हैं उसको भी हमने थोड़ा सा जरा अवॉइड ही करा है. काफी हद तक हम लोगों ने जरा पैकेजिंग पे भी अपने काम करा है, क्योंकि लोग उस चीज तरफ भी आते हैं कि भाई प्लास्टिक पे गर्म फूड आप दे रहे हैं, उसके अंदर दे रहे हैं. बेशक हम लोग को होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारा फूड है वो हम दूसरी चीज पर नहीं दे सकते, लेकिन स्टिल हम उस पर वर्किंग हमारी चल रही है कि हम थोड़ा सा जरा इस इको फ्रेंडली की तरफ आए और क्या नाम है, हमारे फूड जो है वो जरा अच्छे तरीके से लोगों पर डिलीवर भी किया जाए.
1: नाइस. अच्छा बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे और आप लगातार बोल रही हैं, सॉरी मैं आपसे पूछती जा रही हूँ, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस इंटरव्यू में. पर्टिकुलरली आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फास्ट ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ या फिर स्टेडी ग्रोथ, और क्यों?
0: फास्ट ग्रोथ तो देखें बिल्कुल नहीं हो सकती आपके लिए, स्लो ही हो सकती है, क्योंकि हर चीज टाइम टू टाइम चले तो ही सही है. फास्ट ग्रोथ तो जरा वो मैनेज करना भी जरा मुश्किल होगा. वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस, वही वाला हिसाब है कि आप आराम से ही चलें, स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी आएगी, आपके अंदर आप अपने बिजनेस को प्रॉपर हैंडल भी कर सकेंगे. तो अगर फास्ट करने पर आपके लिए, मुझे अपना पर्सनली बिलीव है, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियन है, बट मेरे जो अपना ये है कि भाई जो अगर आप थोड़ा सा स्लो करके चलेंगे तो आपकी बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहेगी और आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रोथ की तरफ ही जाएगा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप अपने इस रेस्टोरेंट को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं? आई मीन और ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले टाइम में?
0: ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की डिमांड, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी फर्स्ट ब्रांच पे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था तो हम सेकंड ब्रांच की तरफ आए। तो अगर इंशाल्लाह अगर कस्टमर्स की डिमांड और होती है तो मे बी हम थोड़ा सा एक्सपेंड की तरफ सोचें, और अगर कस्टमर की डिमांड होगी देन आई थिंक इसकी तरफ भी वर्किंग की जा सकती है कि हम इसकी तरफ आगे जाएं और आगे अपने डिफरेंट ब्रांचेस को डिफरेंट कतर में डिफरेंट जगहों पे अपनी ब्रांचेस को खोलें हम लोग।
1: बिल्कुल इंशाल्लाह। एंड नाउ कमिंग टू द क्लोजिंग क्वेश्चन, बिल्कुल क्लोजिंग क्वेश्चन है, कोई अगर इसी तरह का रेस्टोरेंट यहाँ कतर में स्टार्ट करना चाहता है तो उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: देखिए अगर कोई यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट अपना करना चाहता है तो सबसे पहले तो वही है कि वो मार्केट स्ट्रेटेजी को ही समझे और उसका जो प्लान हो, जो क्लियर बिजनेस प्लान हो वो, और उसको मतलब वही चीज है वो फोकस इस पर करे कि भाई क्वालिटी और हाइजीन और कस्टमर सर्विस पर ही फोकस करे। जिस तरह यहाँ पर जो है मतलब आपको पता है यहाँ पर हाइजीन और इन सब चीजों से काफी ज्यादा मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री है वो काफी इन्वॉल्व है इन सब चीजों पर। तो हमारा एक क्लियर बिजनेस प्लान होगा और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो हम अपना आगे काम करेंगे और पेशेंस से काम करें तो वो मेरा ख्याल से वही है कि कामयाबी इंशाल्लाह होगी। और वो आगे आप अगर आपका पैशन और डेडिकेशन होगी तो आपका बिजनेस भी इंशाल्लाह वेरी स्मूथली रन भी करेगा।
1: और आप खुद देखिए मिसाल है कि आप बीइंग अ मॉम अच्छे से आप बिजनेस भी संभाल रही हैं। आपने ऑन एयर कहा कि मैं बिजनेस भी संभाल रही हूँ, फैमिली भी संभाल रही हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं कि फैमिली निगलेक्ट हो रही है ना ही आपका बिजनेस निगलेक्ट हो रहा है। देयर इज अ गुड बैलेंस। और थैंक यू सो मच फारिहा फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने बहुत ही कमाल के इंसाइट हमारी ऑडियंस के लिए शेयर किए। थैंक यू कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ आप जुड़े इस शो में।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज। Well, दोस्तों आज हमने बात की फारिहा से जो एक होटल की यहाँ ओनर है, और आप समझे कि किस तरह से होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री है और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो तेजी से बढ़ रही है और बढ़ने के इसके आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये सिर्फ खाने और रहने की मतलब खाने और खाने का एक्सपीरियंस करने तक महदूद नहीं है, मैं कहूँगी कि ये एक कंप्लीट पूरी तरह से एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हो गया है फैमिलीज के लिए, जहां लोग आते हैं अच्छा खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने कंफर्ट को एंजॉय करते हैं, सर्विस को एंजॉय करते हैं और क्वालिटी का मजा लेते हैं। कतर जैसी जगह पर जहां हम समझते हैं कि टूरिज्म और लाइफस्टाइल जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। होटल और रेस्टोरेंट को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहा जाता है, आप जानते हैं, और इसका मकसद ये है कि गेस्ट को बेहतरीन सर्विस दी जाए, अच्छा खाना हो, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए, और इसी बिना पे होटल जो है या होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो बहुत तेजी से कर रही है। जी हाँ, आज के रेस्टोरेंट्स अगर हम देखें तो वो सिर्फ खाने का जरिया नहीं रह गए बल्कि सोशल गैदरिंग्स हैं और एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुके हैं। लोग अपनी फैमिली गैदरिंग्स, अपनी बिजनेस मीटिंग्स, अपनी सेलिब्रेशंस, इन सारी चीजों के लिए रेस्टोरेंट्स को जो ऑप्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं होटल इंडस्ट्री तो यहाँ पर आपको हर तरीके के होटल्स मिलेंगे, हाई एंड से लेके लो एंड तक, मतलब हर आदमी की अपनी जिस तरह की उसकी उसका बजट उसे अलाउ करता है उस तरह से वो उसको ऑप्ट कर रहा होता है। वैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत वाइड है, इसके डिफरेंट तरीके भी बहुत सारे टाइप्स भी हैं। जैसे हमारी गेस्ट ने भी बताया कि कुछ चैलेंजेस तो इनिशियली हैं ही, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी एक सेटिस्फैक्शन होता है जब आप किसी को एक अच्छा खाना खिला देते हैं और वो वापस से आके कहता है कि जी मुझे आपके रेस्टोरेंट की ये डिश बहुत पसंद थी, एंड सो फॉर दैट मैं वापस फिर आया हूँ या फिर आई हूँ। तो ये सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा होता है, ये प्रॉफिट, ये पैसों में आप इसको तोल ही नहीं सकते। मैं कह सकती हूँ कि हर टाइप का, हर रेस्टोरेंट का जो है वो एक अलग चार्म होता है, उनकी अलग तरीके की ऑडियंस होती है, फिर उनकी अलग तरीके की सर्विसेज होती हैं, अलग तरीके का फूड एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज के टाइम में कस्टमर सिर्फ खाना खाने नहीं जाते हैं, वो एक एक्सपीरियंस लेते हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स दोनों का फोकस जो है वो एम्बियंस पे भी है, म्यूजिक पे भी है, डेकोर पे भी है, एक स्टाफ बिहेवियर को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे हमारी गेस्ट ने भी हमें बताया, वहीं पे सर्विस स्पीड आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और हाँ, जैसे हमारी गेस्ट ने कहा, फूड प्रेजेंटेशन, क्योंकि पहले तो आप खाना आंखों से खा रहे होते हैं, देखते हैं जो दिल आंखों को भा रहा होता है फिर वो आपके दिल को ऑटोमेटिकली छू जाता है। तो अगर कस्टमर्स को अच्छा

0: एक्सपीरियंस मिलता है तो वो बार बार दोबारा आना पसंद करते हैं. इसी को कस्टमर लॉयल्टी भी कहा जाता है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टाफ सबसे इम्पोर्टेंट एसेट भी है, और अगर स्टाफ के साथ एक अच्छा इंट्रैक्शन होता रहे, जैसे हमारी गेस्ट ने बताया, उन्हें ट्रेन किया जाए, वो पोलाइट हो, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस जो है वो ग्रो करता ही करता है. वहीं अपने चैलेंजेस भी हैं, हमारी गेस्ट ने वो भी मेंशन किया कि देखिए कॉम्पिटिशन भी है, कॉस्ट को मैनेज करना, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग तरीके से होती है, फिर स्टाफ को मैनेज करना, ये सारी चीजें थोड़ी सी चैलेंजिंग हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ आसानी से मैनेज हो सकता है अगर आप जो है वो पैशनेट हैं. आजकल टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्री को तो चेंज कर ही दिया है. वहीं पर अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट्स की या फिर होटल्स की, तो यहाँ पर भी डिजिटल टूल यूज करके आसानी से जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो एक्सपैंड किया जाता है. जैसे हमारी गेस्ट बता रही थी कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग एप्स है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, POS सिस्टम्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया अपने आप में बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है. यहाँ पर कितने सारे वीडियोस जो है वो डाले जाते हैं, बूस्ट किए जाते हैं, और हर साल फूड इंडस्ट्री को मैं देखूं तो नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं. कुछ नए ट्रेंड्स जो है वो हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस, जो हमने अपनी गेस्ट से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ट्रेडिशन जो है वो ट्रेडिशनल फूड की आज भी बहुत ज्यादा डिमांड है. देखा जाए तो फ्यूजन फूड या फिर फ्यूजन कुजीन को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हाँ हेल्दी फूड ऑप्शंस जो है उनको अगर हम अपने जहन में लाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सैलड्स ही आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे ग्रिल हो सकते हैं, लो कार्ब मील्स हैं, जूसेस हैं, एंड ऑफकोर्स सैलड्स तो हैं ही. उतना उन्होंने कहा हमारा फोकस नहीं है हेल्दी ऑप्शंस पे, लेकिन अगर कोई हमसे डिमांड करता है तो हम ऑन स्पॉट जो है वो डिश तैयार कर देते हैं उनके चॉइसेस, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग. हर चीज़ जो है इस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो बार बार आएगा. इसीलिए इस बिजनेस को हैंडल करना भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1-to-1 कहीं ना कहीं जो है ना ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है बस. लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक एक्साइटिंग और बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है. इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें हार्डवर्क है, इसमें डेडिकेशन है. जो लोग जो है वो पैशन से काम करते हैं और कस्टमर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को जो है वो समझते हैं, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं. आज के ज़माने में ये इंडस्ट्री सिर्फ खाना और खाना खाने और खाना खिलाने तक महदूद नहीं है, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है. हर दिन जो है वो नए नए इनोवेशंस और नए नए तरीके और ट्रेंड्स जो है वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं. तो अगर आप भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देन आई एम श्योर ये इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा. मुझे तो बेहतरीन मौका मिला कि मैं बहुत कुछ जानूं अपनी गेस्ट से, सीखूं, समझूं. और आज इस एपिसोड से पर्टिकुलरली मुझे सीखने को जो चीज़ मिली वो ये कि आप पहले तो काम कूल कंपोज हो. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक परफेक्ट होमवर्क होना चाहिए, फिर चाहे लोकेशन हो, फिर चाहे आपकी ऑडियंस हो, या फिर आपका स्टाफ हो, या फिर आपके मेन्यू को लेकर है. तो हल्का फुल्का तो देखिए तो हर कोई कर लेता है, हर कोई चाहता भी है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर पैशनेट हैं, मेहनत से आप घबराते नहीं हैं, डेडिकेशन है, तो इस इंडस्ट्री में आप अपनी पहचान बना लेंगे. अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बस इन बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और चाहिए तो वापस से इस इंटरव्यू को रिपीट में सुनिएगा. फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इजाजत दीजिए. आप सुन रहे थे कतर बिजनेस 360. इंशाल्लाह नए एपिसोड में एक और नए बिजनेस पर हम बात करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: गई।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
6: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं RJ कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
7: Top 10 Countdown।
6: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। वेलकम टू द शो टॉप 10 जिसका नाम है 10 गाने चलते हैं आपको बताइए और रैंकिंग वाइज चलते हैं। मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम दुहा वाला कबीर, एफएम 107 पर एक ठीक ठाक आरजे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस शो को लेकर, मुझे बड़ी उम्मीदें रहती है अगला हफ्ता जब आएगा तो लिस्ट में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई ऐसा गाना आएगा जो उथल पुथल मचा देगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आई हैड हाई होप्स, मुझे लगा था कि अल्फा से कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन भाई साहब आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मूवी तो मैंने देखी नहीं, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन गाने कोई व्हाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, उनकी मर्जी, पर हमारी लिस्ट वैसी की वैसी है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। आज की लिस्ट में एक गाना जो उसने जगह बनाई है अपनी और एक गाने को बाहर कर दिया है, एंड दैट इज ऑल, बिकॉज आज की लिस्ट भी उतनी खास है जितनी पिछले हफ्ते की थी। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, ऑल दी सॉन्ग्स आर गेटिंग देयर ड्यू, ऑल ऑफ देम आर चार्ट बस्टर्स। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा व्यूज पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो वायरल हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका हुक स्टेप वायरल है, कुछ ऐसे हैं जिनकी कोई लाइन वायरल है, कोई मुखड़ा वायरल है, यू नेवर नो। बट सब मिला के इतनी सारी वजहों के बाद ये गाने आए हैं। कुछ गानों की स्ट्रीमिंग जो है वो बाकी गानों से ज्यादा है, जबकि यूट्यूब पे हो सकता है आपको कम मिले। बट टेकिंग ऑल ऑफ दिस इन कंसिडरेशन, आपने भी बहुत सारे गाने भेजे तो बताइएगा कि आपका गाना इस लिस्ट में है कि नहीं। सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज हमें बता दिया करें कि आपको कौन सा गाना पसंद आ रहा है, कौन सा गाना आप चाहते हैं लिस्ट में ऐड होना, एंड उसी हिसाब से लिस्ट बनती चली जाएगी। बट फॉर नाउ लिस्ट जैसे जाती है, पेपर के बाद आ रही है आपको, या दिस पेपर्स एग्जैक्टली। तो हम जाएंगे 10 से सीधा 1 तक। फॉर नाउ 10, 9 और 8वें पायदान पे कौन सा गाना है? ऑल राइट, चलो भाई शुरू किया जाए। तो नंबर 10 पे जो गाना है, जैसे मैंने कहा था, गाने में सादगी जो है आजकल नजर नहीं आती है। देयर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली ट्यून इनटू अ सॉन्ग एंड से क्या बात है यार, क्या गाना बनाया है। हमें लगता है कि कोक स्टूडियो ही गाना हमें लाके देगा, तब जाके हमें लगेगा अरे वाह क्या लिरिक्स है भाई, मजा ही आ गया। बट कुछ सिंगर्स हैं अभी भी जो पॉप सिंगर्स हैं और जो लोग ओरिजिनलिटी दिखा रहे हैं, उनमें से ही हमारा एक भारतीय बंदा है जिसका नाम है स्टीवन बेन। बढ़िया बंदा है यार, मैंने इसको खामखा जज किया। स्टीवन बेन ने यहाँ पर कतर में आके परफॉर्म किया था, एंड व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट, मैं को भाई यार बढ़िया बना रहा है गाना ये तो, एंड ही हैज अ वेरी डिफरेंट वॉइस टोनैलिटी जो उनके हक में काम कर रही है। काफी अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, इन्होंने अभी गाना लॉन्च किया है, 10वें नंबर पर है। गाने का नाम है सादगी।
1: सादगी तो हमारी जरा देखिए,
0: एंड लिटरली यही मैं कहना चाहता हूँ, गाने में सादगी है भाई, बढ़िया भाई ने खो के गाया एकदम मलंग होके, और बढ़िया वीडियो है। एक ऐसा गाना जिसमें लिरिसिज्म है, एक ऐसा गाना जिसमें वीडियो का कोई स्ट्रक्चर है, एक ऐसा गाना जिसमें कोई सादगी है, ऐसा गाना जो बड़ा ग्राउंडेड लगता है। ये गाना 10वें नंबर पर है। इफ यू हैवंट सीन इट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू इट, एंड देन उसके बाद जाके वीडियो देखिएगा। मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर एक लंबी ड्राइव

0: रहे हैं, दोपहर वाली ड्राइव पर, नॉट रात वाली ड्राइव, उसमें अलग गाने हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा. बट अगर आप दोपहर वाली ड्राइव में, इफ यू गोइंग समवेयर किलोमीटर्स अवे, तो ये गाना गाड़ी में चलते हुए, आ हा हा हा, ट्रैफिक ट्रूफिक भाई साहब सब भूल जाओगे, मौज आ जाएगी. तो ये वाला गाना एट नंबर 10, इट्स कॉल्ड सादगी, स्टीवन बेन का गाना, एंड व्हाट अ ट्रैक. ओके, अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. गाना नंबर 9, पिक्चर आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है, फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया गया, सेकंड हाफ ने वही किया जो बॉलीवुड के राइटर्स करते हैं. क्यों नहीं लिखा जा रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, वैसे ही इस मूवी का हाल हुआ है. वेलकम टू जंगल अगेन, एक सीक्वल टू अनदर अगेन, एक मूवी जो किसी समय बहुत बड़ी हिट थी, वेलकम का थर्ड सीक्वल वेलकम टू जंगल. कोई जरूरत नहीं थी अगर इसी तरह गाना ही रिलीज कर देते, काफी होता. बट दे एक्चुअली डिसाइडेड टू रिलीज द होल मूवी, पर पूरी मूवी तो आ चुकी है, उसके कुछ गाने जो है वो लापता है. एक गाना है जो नॉस्टैल्जिया पे खेल गया है, एंड जैसे मैं कहता हूँ, एक होती है फैन सर्विस. फैन सर्विस करना बहुत जरूरी होती है. होता ना जब आप कोई मूवी, आप गाना देख रहे होते हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली आवारापन 2 का टीजर आया. आई एम सॉरी, मैं हूँ भाई, मैं आवारापन इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा. सो आवारापन 2 का टीजर जब आया, मैं एज अ फैन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कुछ ना कुछ तो भाई पहली मूवी से हुक होगा गाने के जरिए, एंड वही हुआ. जब बैकग्राउंड में आया तो फिर अरे भाई साहब, जो फैन सर्विस हुई है, दैट इज कॉल्ड फैन सर्विस. जब आपकी उम्मीद भी जागती है, आपको लगता है भाई ये गाना सुन के आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वैसा ही कुछ करने की कोशिश करी वेलकम टू जंगल के साथ. उनका फेमस ट्रैक पहली वेलकम का, जो 2017 में आई थी, फैम नॉट रॉन्ग, उसमें एक गाना था उच्च लंबक कद, और कैटरीना कैफ थी और उसमें अक्षय कुमार साहब थे. लेकिन अभी उसको वापस से 2.0 वर्जन बनाया गया है वेलकम टू जंगल के लिए, एंड नॉट एग्जैक्टली अ सेलिंग पॉइंट, क्योंकि सेलिंग पॉइंट तो उन्होंने भर के स्टार्स दिए, बट ये गाना स्टिल वर्क्स इन द फेवर ऑफ द मूवी. तो ये गाना ऊंचा लंबा कद इज एट नंबर 9 इस मूवी के अंदर. मुझे शिकायतें ही शिकायतें हैं, ठीक है भाई, आई एम रेंटिंग, मगर मैं सीरियसली बताऊं, इसमें जो है दिलेर मेहंदी क्या कर रहे हैं यार, मतलब क्यों है वो पिक्चर में, क्यों दिलेर पाजी दी, मैं इतनी इज्जत करता हूं, लेकिन फिर भी एक्टिंग मत कराओ ना उनसे. और मुझे पता क्या लगा था, सोने जाए सौ द ट्रेलर, मुझे लगा हो सकता है दिलेर पाजी का भी कोई गाना शाना इसमें होगा. नहीं है भाई, दे डिसाइडेड फैन सर्विस करने. फैन सर्विस करो अच्छी बात है, मगर गिव अस समथिंग. ऊंचा लंबा कद इज एट नंबर 9 क्योंकि गाना ही है जो मूवी को पार करा रहा है नदी, और इसलिए नंबर 9 पर है. दिस सॉन्ग इज द मोस्ट मेमोरेबल थिंग फ्रॉम द फर्स्ट मूवी इन वेलकम टू जंगल, अपार्ट फ्रॉम अक्षय कुमार, जिन्होंने पूरे कंधे पे इस पिक्चर को आगे तक ढोने का फैसला किया. कुडोस टू हिम, ही इज स्टिल गुड. लेकिन नंदलेस, तो 9 नंबर पर है ऊंचा लंबा कद एंड वेलकम टू जंगल का ये गाना अपने स्थान पर, अपनी जगह पे बना हुआ है. मूविंग ऑन भाई साहब, नंबर 8, ये वो सिचुएशन है जहां पे गाना या तो लिस्ट से बाहर होगा आने वाले वक्त में, या ये ऊपर जाएगा. ये पोजीशन बहुत बहुत मायने रखती है. जैसे क्रिकेट में टेल एंडर्स होते हैं, कई मरतबा टेल एंडर्स 100 भी मार देते हैं, और कई मरतबा ऐसा होता है कि टेल एंडर्स की बैटिंग ही नहीं आती है, और कई मरतबा वो लोग आउट हो जाते हैं. पर टेल एंडर्स पे कुछ भी कह नहीं सकते, इट इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन, यू नेवर नो. क्या कहते हैं उसको, अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है. तो नंबर 8 पे वो गाना बना हुआ है जिसके हुक स्टेप ने धमाल मचाया हुआ है. ये इनको, इस गाने को गाया भी उस शख्स ने है जो मुझे लगता है कि गाने बनाते ही टिकटॉक और रील्स के लिए है, बिकॉज ही नोज कि जो भी वो गाना बनाएंगे उसका हुक स्टेप अगर बढ़िया होगा, गाने में एक किस्म की रिदम होगी, तो गाना चलेगा ही चलेगा. आप समझ गए, मैं गुरु रंधावा की बात कर रहा हूं. गाना आया था उनका पहले कतल, याद होगा आपको. कतल के म्यूजिक पर नई लिरिक्स को बिठा दिया है, अपने ही गाने को कॉपी मार दिया भाई ने मगर फिर भी गाना काम कर गया है, इज बियॉन्ड क्रेजी टू मी. तो गाना है कहर.
1: बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़े कहर कुड़े.
0: अभी तक मैंने मूवी के बारे में बात नहीं करी, अब करूंगा. धमाल 4 से है ये गाना, अगेन अनदर सीक्वल. क्यों पर है, सीक्वल है धमाल 4. उसमें बहुत सारे और भी गाने हैं जो चल रहे हैं मार्केट में, मगर ये जो गाना है थोड़ा सा हटके, कहर जो गाना है.

0: है गुरु रंधावा का, इट डज दैट थिंग जो बाकी सारे गाने नहीं कर रहे हैं. मतलब कि जो हुक स्टेप्स हैं जो अक्सर वायरलिटी की सबसे सबसे बड़ी वजह बनते हैं, तो ये गाना भी वायरल हो रहा है. लिरिक्स पे भी जाऊंगा मैं, हाँ लिरिक्स भी ठीक है, मगर उससे जरूरी है इसके स्टेप्स. तो बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो डांसर्स हैं, जिनके डांसिंग स्टूडियोज हैं, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग रील्स ऑन दिस वन. एंड स्पेशली ये वायरल हुआ है उन कोरियोग्राफर्स के बीच में जो लोग क्लासेस देते हैं. तो अभी क्या होने लगा है ना, हम उस टाइमलाइन में आ चुके हैं जहां पर एक गाना अगर बढ़िया चल जाए, उसके हुक स्टेप्स बहुत बढ़िया हो, सो कोरियोग्राफर्स को मौका मिलता है वो हुक स्टेप्स बाकियों को सिखाने का, बिकॉज बाकी सीखना चाहते हैं. सो अ वेरी वेरी गुड हुक स्टेप, अ वेरी गुड ट्रैक गुरु रंधावा. आपसे उम्मीद है मेरी अभी भी बनी हुई है, जब आपने परफेक्ट लॉन्च किया था तो मेरी उम्मीद चटक गई थी, मैं सही बताऊं बहुत गुस्सा आया था. परफेक्ट, शी इज परफेक्ट, शुक्र है वो गाना आगे चला गया. भाई मेरे समझ नहीं आया था ये वाला गाना आया, तो थोड़ी उम्मीद जागी है. गुरु रंधावा विद कहर एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट फ्रॉम द मूवी धमाल 4. ओके, तो अभी लिस्ट को जरा सा रवा कर लेते हैं. आपने 10 नंबर पे सुना सादगी स्टीवन बैन का, काफी काफी ग्राउंडेड गाना, विच आई एक्सट्रीमली लव फॉर इट्स ओरिजिनलिटी. नंबर 9 पे है ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल, फैन फेवरेट एंड फैन सर्विस की गई है इस गाने के जरिए आपको याद दिलाने के लिए कि सुनो वेलकम पहली वाली देख गया हो, हैं बढ़िया लगी थी ऊंचा लंबा कद, कैसा लगा था, ये लो नॉस्टैल्जिया की बाल्टी में टुपकी लगा लो. तो ये वो गाना है जो आपको नॉस्टैल्जिया में जरूर ले जाएगा, डेफिनेटली. सो ऊंचा लंबा कद एट नंबर 9 फ्रॉम द मूवी वेलकम टू जंगल. एंड नाउ एट नंबर 8 पोजीशन, जैसे मैंने कहा गाने को आजकल वायरल होने के लिए दो ही चीजें लगती हैं, या तो उसमें मेलोडी हो वो वाली जो भट्ट साहब ने इमरान हाशमी के जरिए दी है, या फिर दूसरा तरीका है गाने को वायरल करने का कि उसमें कोई हुक स्टेप हो. तीसरा भी तरीका है, लेकिन दिस वन वर्क्स रियली गुड आज की तारीख में, और गाने के हुक स्टेप्स बहुत कमाल के, अमेजिंग कोरियोग्राफी. गुरु रंधावा कहाँ से पकड़ के लाते हैं लोगों को मैं नहीं जानता, पर एवरी सिंगल टाइम उनके गाने में कोरियोग्राफी बढ़िया होती है, ये कुछ तो सही कर रहा है बंदा. सो कहर फ्रॉम धमाल 4 इज एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट एंड इट इज ब्लास्टिंग ऑन रील्स एंड टिकटॉक. अब जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे 7, 6 और 5 की. जाना नहीं है आपने, ये है टॉप 10 दिस वीक. मैं दूंगा वाला कबीर आपके साथ, एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स रिमाइंडर बहुत जरूरी है. तो अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर अभी तक नहीं आए तो प्लीज प्लीज आ जाइए भाई, प्लीज हमसे जुड़िए. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो दोहा वाला कबीर FM107. ओके, जाना नहीं आपने, स्टैच्यू
1: FM107 टॉप 10 नंबर 10.

FM 107 Top 10, number 8.

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. Main Duha Wala Kabir FM 107 pe and this is Top 10 this week. 10 gaane jo bhai sahab taabad tod chalenge. इन गानों पे इन गानों में वो बातें हैं जो इनको टॉप 10 की लिस्ट में शामिल करती हैं. कोई स्ट्रीमिंग पे बढ़िया है, कोई यूट्यूब पर बढ़िया है, कोई सुनने में बढ़िया है, किसी का हुक स्टेप बढ़िया है, और किसी गाने में ऐसी एक लाइन है जो सीधा दिल पे लाके थ्रम माइंड माई साउंड इफेक्ट्स. अगर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो नंबर 10 पे था सादगी स्टेवन बैंड, नंबर 9 पे मुचलम बकद, नंबर 8 पे कहर धमाल से, और अब बारी है नंबर 7 6 और 5 की. तो नंबर 7वें पोजीशन पर नंबर 7 पे है असीम अजहर का गाना. मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ. मैंने कई मरतबा कहा है मैं इस बंदे को काफी काफी काफी टाइम से सुन रहा हूँ. असीम अजहर ने काफी रैपर्स से कोलैबोरेशंस भी किए हैं. असीम अजहर ने तला अंजुम तला यूनुस के साथ भी काम किया है. असीम अजहर ने सिंगल्स भी निकाले. उस टाइम पर उनके सिंगल्स इतने काम नहीं कर रहे थे जितने अब कर रहे हैं. बिकॉज पीपल नाउ अंडरस्टूड कि असीम अजहर जो है ये बंदा सोलो बहुत बढ़िया काम कर लेता है. हालांकि इन्होंने रैप में भी बहुत बढ़िया काम किया है, मगर असीम अजहर का गाना जो आरजू है जिसका नाम ब्यूटीफुली डन. इस गाने में जैसे मैं कहता हूँ कि आजकल स्टोरीज मिसिंग है. सो इफ अ सॉन्ग हैज अ स्टोरी, ये बहुत रेयर केस है. लेकिन इसमें

0: वो बात है, वो कहानी जो आप गानों में तलाशते हैं। होता है ना, कुछ गाने सुनते हैं आप फॉर द वाइब, है ना, वाइब आती है आपको, और कुछ गानों को आप समझ रहे होते हैं, और समझ के जब वाइब आती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर गाना जो है ना, आज के गानों की भीड़ में जहां गाने आते जाते रहते हैं, उसमें ऐसे गाने जहन में अटक जाते हैं। ये उन्हीं में से एक गाना है, आरजू बाय असीम अजहर। दिस इज ऑन द 7th नंबर हमारे टॉप 10 की लिस्ट में। ओके, नाउ एट नंबर 6, 7 के बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं, असीम अजहर फिर से आ गए। देखो, मैं एक और बात कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं, कोई अगर ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचा सके, कोई रिश्तेदार, कोई कजन, चाचा फूफा का लड़का हो जो जानता हो असीम अजहर को, इनको कोई बताए कि एल्बम निकालें, असीम अजहर साहब जो है अपने टैलेंट को, मैं नहीं कह रहा वेस्ट कर रहे हैं, बट ही नीड्स टू मेक एन एल्बम अर्जेंटली। इस बंदे में बात है, ये EP, एल्बम या LP कुछ भी निकाल सकते हैं, एंड मैं बता रहा हूँ आते ही वो जरूर जरूर चलेगी। ऐसे आर्टिस्ट के साथ क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, पर वो वेट करते हैं, वो वेट करते हैं कि जब मेरा बजट हो जाएगा, जब मैं 1-2 साल तक बिना किसी के पास काम के कमा पाऊंगा, तब मैं अपने एल्बम बनाऊंगा। एंड आई थिंक असीम अजहर उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। असीम अजहर कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एक एल्बम वो बना ही सकते हैं। जब वो बनाएंगे, मैं सबसे पहला बंदा हूं जो आपको ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि वी नीड एन एल्बम फ्रॉम असीम अजहर, बिकॉज जब वो अकेले अपने पेज पे डाल रहे होते हैं गाने, तो गानों में भाई कुछ खास ही होता है। दैट क्रिएटिव फ्रीडम इन हिज हेड रियली रियली वर्क्स। तो नंबर 6 पे भी असीम अजहर है, गाना है तू है वही।
1: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।
0: एंड इस गाने की बहुत सारी लाइंस हैं जो वायरल हुई हैं, इसका जो कवर आर्ट है वो भी वायरल हुआ है, पर बेसिकली जो गाने की लाइंस हैं वो बहुत वायरल हुई हैं, जो वो आएंगे तो आप समझ जाएंगे खुद ही। तो ये है नंबर 6 पे, तू है वही बाय असीम अजहर। एंड प्लीज अगेन, दैट एल्बम थिंग, आई रियली वांट कि असीम अजहर साहब जो है वो एक एल्बम निकाले, भले ही उसमें कोलैबोरेशन हो, मगर ही शुड बी देयर, है ये बात है। अब बढ़ते हैं आगे, गाना नंबर 5, कुंवर साहब का गाना। मैंने ये 2 मरतबा शिकायत करी, 3री मरतबा भी कर देता हूँ, गाना यार बहुत प्यारा है, और जब प्यारा गाना हो जल्दी खत्म हो जाए बड़ा दुख होता है, 2 मिनट के आसपास ये गाना खत्म हो जाता है। बट गाने के अंदर बात है, गाने के अंदर पोटेंशियल है कि गाना आगे जाए। ये गाना जो है एक ईजी पंजाबी और हिंदी को मिक्स करता है, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, वाइब भी है गाने की, पर एक और मुखड़ा होता, अंतरा होता तो मजा आ जाता है। मतलब गाना भी 2 मिनट समथिंग का है, इट शुड हैव बीन क्लोज टू 3 मिनट्स, या 3 मिनट से थोड़ा सा ऊपर, बढ़िया जाता, अभी भी बढ़िया है, तभी लिस्ट पर शामिल है। तो नंबर 5 पे है पीछे तेरे बाय कुंवर साहब, एंड आई लव्ड इट। अगर आपने गाना नहीं सुना अभी तक, या आपकी फीड में नहीं आया है अभी तक, तो लिसन टू दिस ट्रैक FM 107 पर, उसके बाद एक काम कीजिए, जब आप हमारे पास सुन लेंगे उसके बाद जाके इसका वीडियो देखिएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि गाने में वो बात है जो वीडियो को उतारी है। कई बार क्या होता है, लिरिक्स और वीडियोस मैच नहीं करते, बट इन दिस केस एवरीथिंग इज मैचिंग, वाइब भी मैच हो रही है, बहुत ही बढ़िया गाना है पीछे तेरे कुंवर। अब जरा जो है मैं लिस्ट को एक बार बता देता हूं, तो नंबर 10 पे है 7 ये स्टीवन बैन, नंबर 9 पे उछलम बकर, नंबर 8 पे कहर धमाल से, नंबर 7 पे आरजू असीम अजहर साहब, नंबर 6 पे तू है वही अगेन असीम अजहर, एंड नंबर 5 पे पीछे तेरे कुंवर साहब का गाना, साहब मैंने लगा दिया, कुंवर का गाना है। बाकी अब जो हम आगे बढ़ेंगे 432 की तरफ, एंड 1 भी बता दूंगा आपको। तो ये जो आने वाले गाने हैं, इनमें से हो सकता है आपको कोई पसंदीदा गाना हो, और अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया है कि नंबर 1 पे कौन सा गाना है, तो बताइएगा 666-22-107 पर, जाना आपने यानी बेस्ट जगह पर है।
2: FM 107 Top 10 नंबर 7।

0: qmc.qa or download the app QMC now.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: FM 107 Top 10।
4: Welcome back, Assalamu Alaikum, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, and this is Top 10 this week। अब बारी है गाना नंबर 4, 3 और 2 की। एक काम कर रहे, चारों तीन बताता हूं या सारी बता देता हूं। चलो, नंबर 4, 3, 2, 1 सबसे टॉप के गाना। तो नंबर 4 पे जो गाना है, ये गाना मैंने अभी रिसेंटली सुना। गाने के अंदर जो स्टोरी है मुझे गाने की याद दिला दी है। बापू जिम्मेदार के थोले के देविकार, आई नो उसकी वाइफ थोड़ी ज्यादा सादी है, इसकी इतनी भी सादा नहीं है, बट ब्यूटीफुल ट्रैक, ब्यूटीफुल ट्रैक, मुझे बड़ा पसंद आया। एल्विस यादव, सिमरत कौर, रंधावा और हर्ष, ये ऐसे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जिनमें गानों में कुछ होता है देखने के लिए। वरना आजकल फ्लैशी वीडियोस बना दो, डाल दो, किसे पड़ी है, मगर इसमें वो सब कुछ है जो अगर आप तलाशेंगे तो आपको पता लगेगा। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक। प्योर पंजाबी वाइब है, पंजाबी पटियाला सूट भी है जी इसमें, और मौज आ जाएगी अगर आप वीडियो देखेंगे इसकी ना, तो हो सकता है आपके अंदर का जो एक कॉलेज का लड़का है वो जाग जाए इस वीडियो को देख के, बिकॉज इसके जो जो लिरिक्स हैं, इसकी जो वाइब है वो आपको वहाँ पे लेके जाएगी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोग एक दूसरे को नहीं ढूंढा करते थे, ये उस दौर की बात है जब लोग एक्चुअली में एक दूसरे को ढूंढा करते थे, तलाशते थे और फिर समझ नहीं आ पाते थे कि देखते कैसे रहें। वो बेचैनी को ये गाना बहुत अच्छे से उतारता है और गाने का नाम है साड़ी सुन। भाई बहुत हैप्पी फेसेस हैं गाने में, ब्यूटीफुली सॉन्ग, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक। आजकल मेरे गाड़ी में यही बजा करे भाई, बड़ी अच्छी वाइब देता है गाना। तो नंबर 5 पे साड़ी सुन, सॉरी नंबर 4 पे है साड़ी सुन, एल्विस यादव और सिमरत कौर रंधावा, साथ में हर्ष एंड अंशुल गर्ग ऑन द सी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। All right, नंबर 3 पे अपनी जगह पे बना हुआ, अभी तक इसकी रील्स बन रही हैं, अभी तक ये वायरल हो रहा है, अभी तक ये टिकटॉक पर है और अभी तक इसके हुक स्टेप सिखाए जा रहे हैं। मैंने छोड़ो, इस गाने के सिंगर ने भी सोचा नहीं होगा कि गाना इतना उधम मचा देगा। चरणप्रीत साहब का नाम इससे पहले, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है, मैंने बहुत पहले सुना था, एंड उनके गाने वायरल हो जाएंगे, नेवर थॉट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड आर्टिस्ट, आई एम जस्ट सेइंग चरणप्रीत भाई, मुझे लगा था ये हार मान चुके होंगे, चले गए होंगे, क्योंकि ये ज्यादा गाने बना नहीं रहे थे। पर चरणप्रीत और बादशाह का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है इस गाने में, बन जा तू मेरी, आए हाय हाय क्या हुक है भाई,
5: बन जा तू मेरी, बन जा,
4: बन। आधी जान तो भाई इस गाने के हुक ने ले ली थी, हमने तो बेरा, अगर हुक बढ़िया चल ले ना भाई तो फिर गाना भी बढ़िया चल ले। इस गाने में तुमने एक और चीज नोटिस की होगी, इसका जो डांस स्टेप है ना, वाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हुक लाइन है, बहुत बढ़िया हुक स्टेप्स हैं। एंड दिव्या अग्रवाल जिन्होंने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है, उनका करियर बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है भाई। और आसी जिन्होंने इस गाने परफॉर्म किया है, जो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, अपेरेंटली दैट इज द यूएसपी शी इज कैरिंग, तो उन्होंने इस गाने में डांस किया है। उनके खुद के वीडियोज हैं बादशाह को, चरणप्रीत को ये गाना सिखाते हुए। बट मैन, आई लव दिस ट्रैक, आई लव दिस ट्रैक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस साल या पिछले साल, आने वाले सालों में ऐसा हुक गानों में मिलेगा। मैं तो इमरान हाशमी की अवारापन 2 से उम्मीद कर रहा था। लोग कह रहे होंगे आ गया ना अवारापन पे, भाई आ गया, मुझे उसी से उम्मीद है, पर इस गाने ने मेरी उम्मीद से ज्यादा दिया है। इस गाने में जो हुक लाइन है, एब्सोल्युटली किलर। बहुत कम गानों में आजकल ये सुनने को और देखने को मिलता है जहां पे हुक

लाइन आप गाते चले जाते हैं साथ साथ, वो जो क्या कहते हैं उसको, जो मेलोडीज होती हैं गाने की, वो आजकल मिलती नहीं, वो नहीं मिलता है, तो इस गाने में वो मिलेगा आपको। तो बढ़ जा तू मेरी, बढ़ जा वैसे गाने का नाम है, और चरणप्रीत और बादशाह ने इस गाने को परफॉर्म किया है। वंडरफुल रैप एंड अमेजिंग इलेक्ट्रिफाइंग लिरिक्स, आई लव्ड इट। तो बढ़ जा है एट, बढ़ जा तू मेरी एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट। अब ये नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे जो गाना है, ये भी एक फैन सर्विस है, लेकिन अच्छी वाली फैन सर्विस। आई एम नॉट सेइंग कि पिछले वाली फैन सर्विस अच्छी नहीं है, ऊंचा लंबा कहती अपनी जगह बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें एक्चुअली में कुछ किया गया है। अब क्योंकि ये गाना फिट करना कहने को बड़ा आसान है, अगर ठीक है ये गाना ऐसा है कि दो तीन चार दोस्त मिले हुए बैठे हुए और बात कर रहे हैं, बंधु हो तुम ही, सका तुम ही, और गाना खत्म हो जाएगा। नो, दे डिड अ वेरी गुड जॉब विद द ट्रैक, एंड इस गाने को जिस तरीके से रिप्रोड्यूस किया गया है, इस गाने को वापस रीमेक किया गया है, और फिर उसका जो जो उसको वीडियो वो उतारा गया है, इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बहुत ही सटल वे में, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया कि गाना खराब ही हो जाए, आपकी मेमोरी से इरेज ही करना चाहें आप। एंड कॉकटेल 2 का ये गाना भी बहुत बहुत बढ़िया है। आई नो प्रीति सेनन, रश्मिका, शाहिद कपूर है इसमें, वो आपको याद आएंगे वापस, दीपिका पादुकोण और डायना और साथ में सैफ अली खान। बट ये फैन सर्विस बहुत बढ़िया है, ऐसी फैन सर्विस का मैं कायल हूँ। ऐसी फैन सर्विस होनी चाहिए जहाँ पर आपको गाना कुछ याद भी कराए, जहाँ पर गाना खुद भी बढ़िया हो, और जहाँ पर गाने पर फिल्माया गया जो वीडियो है वो भी आपको लगे हाँ यार यहाँ इन्होंने काम किया है। I will not comment on the movie because I don't think movie इतनी कोई खास है, पता नहीं क्यों बनाई, क्यों शायद कब उनको कोई अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट दे दो यार। ठीक है, I will not rant about it क्योंकि मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बट गाना जो है, गाना बहुत बढ़िया है। बंधु is at number 2 on the list।

0: इन द फेवर ऑफ द प्रोड्यूसर्स तो ठीक है, ऊंचा लंबा कद एट नंबर 9। अब नंबर 8 पर जाते हैं जो कि है कहर गुरु रंधावा। ही नोज हिज थिंग, उन्हें पता है गाना बनाऊंगा, रील पर डलेगा और सबके सब नाचेंगे। वही हुआ है एग्जैक्टली इस गाने के साथ। उन्होंने अपने ही गाने की ट्यून निकाल के उसे यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा सा सटल वे में चेंज किया है, कत्ल का कहर कर दिया है और गाना बहुत बढ़िया है, इज एट नंबर 8। भाई साहब नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इसके बाद है नंबर 7 पे और 6 पे, दोनों पे असीम असर है। नंबर 7 पे है आरजू, मैं स्टोरी लाइन का खायल हूँ इस गाने की। एंड नंबर 6 पे है तू है वही, अगेन असीम अजहर, फैन ऑफ हिज वर्क एंड आई थिंक एल्बम जल्दी लाएंगे, ये लानी भी चाहिए इनको। फिर आते हैं नंबर 5 पे पीछे तेरे, कुंवर भाई साहब का गाना है ये। नंबर 4 पे है साडी सुन, एल्विश यादव एंड सिमरत कौर रंधावा, साथ में हर्ष नुस्से और अंशुल गर्ग। ये गाना आजकल मेरी गाड़ी में चलता है भाई, एक तो ये मुझे चीज़ा चंडीगढ़ ले जाता है, फिर दूसरी चीज़ मुझे कॉलेज में ले जाता है, तीसरी चीज़ वो जो इनोसेंस होती है या हुआ करती थी बिना व्हाट्सएप और बिना सोशल मीडिया की, उस एरा में कहीं ना कहीं आपको ले जाता है। एंड इट इज ब्यूटीफुली सॉन्ग, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे जब आप वीडियो में देखेंगे तो आपको खुद वाइब आने लग जाएगी कि हाँ यार बात तो है गाने में। एंड इसके बाद जो गाना है वो अपने हुक स्टेप्स की वजह से और अपनी हुक लाइन की वजह से, दोनों की वजह से फेमस है। बादशाह का रैप एक नंबर है, चरणप्रीत के लिरिक्स चरणप्रीत का गाया हुआ गाना एक नंबर है, आसी जिन्होंने डांस किया इस पे, ऐसी आसी क्या कहते हैं उनको, AHSI, मैं उनका भी फैन हो गया इस गाने के चक्कर में, क्या तो उन्होंने किया है। कोरियोग्राफ्ड बाय दिव्या गोयल, मैं उन्हें भी क्रेडिट दूंगा क्योंकि अगर वो इस गाने का हुक लाइन ना देती तो गाना तो हिट होता, लेकिन ये डबल ट्रिपल हिट कराना जो है वो हुक स्टेप की वजह से हुआ है। एवरीबॉडी इज ट्राइंग वो हुक स्टेप करना, तो बन जा तू मेरी बन जा, पर नंबर 3 पे, ठीक है, माइंड माई सिंगिंग जोश जोश में निकल जाता है, ठीक है। एंड नंबर टू पे है कॉकटेल 2 का गाना, गाना है बंधु 2.0, तुम ही हो बंधु सगा तुम्हें, याद है ना, तो गाने को बर्बाद नहीं किया गया है, जबरदस्ती का रिमिक्स, जबरदस्ती का EDM नहीं डाला गया है, गाना काम करता है और गाना आपको नॉस्टैल्जिक भी करता है, गाना आपको पर्दे पर भी अच्छा लगता है जब आप इसे स्क्रीन पे देखते हैं, मतलब फिल्माया भी उतना ही बेहतरीन तरीके से गया है। सो नंबर 2 पे है बंधु 2.0 कॉकटेल 2 से। नाउ एट नंबर 1 द अनडिस्प्यूटेड सॉन्ग ऑफ द वीक एंड द अदर वीक, ये सॉन्ग अपनी थ्रोन छोड़ने को तैयार नहीं है जब तक कोई बहुत ही बॉम्बास्टिक गाना नहीं आ जाता। गाना एट नंबर 1 ऑन आर लिस्ट टॉप 10 में है माशूका कॉकटेल 2 से। गाना जो है इतना लेड बैक है कि अच्छा लगता है, कुछ गाने गाए जाते हैं ना वो, ये जो लेड बैक एटीट्यूड है गाने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाना जो है ओरिजिनल है, थैंकफुली इसमें कोई भी रीमेक रीमेड ऐसा कोई वर्जन नहीं है। ओरिजिनलिटी के 10/10 नंबर दूंगा। स्पेनिश सिंगर से जो गवाया है उसको भी भाई साहब मैं 10/10 नंबर दूंगा। फिल्म आया बहुत बढ़िया गया है, शायद कपूर बहुत बढ़िया लग रहे हैं। माशुका ओरिजिनलिटी के चक्कर में पूरे नंबर ले जाती है एंड माशुका का गाना हैज द रिकॉल वैल्यू ऑन यूट्यूब ऑन स्ट्रीम्स ऑन रेडियो एवरीवेयर। सो माशुका कॉकटेल 2 से एट नंबर 1 ऑन आर लिस्ट, बेहतरीन गाना। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 की एंड आप इससे अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, ऑफ कोर्स डिसएग्री भी करेंगे अग्री भी करेंगे बिकॉज समटाइम्स गाने आ जाते हैं बीच में। अभी जब मैं आपसे बात करूं हो सकता है कोई नया गाना बीच में आ गया हो जो हमने ऐड ना किया हो, बट आप बताते रहिएगा सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar, आपके मैसेजेस के मैं इंतजार में रहूंगा। आई रियली वॉन्ट टू नो कि कौन सा गाना आपके दिल में जगह बना चुका है, हो सकता है कोई जैसे हमारे कतर के इन्फ्लुएंसर कहते हैं कोई हिडन जेम है आपके पास, भेज दीजिएगा। Let us have a look के कौन सा गाना है जिसे आप hidden gem मान रहे हैं आजकल। So 666-22-107 ये नंबर है, let me know कि कौन सा गाना जो है according to you is a gem और हमारी लिस्ट में अभी तक नहीं है, या कौन सा गाना आपको लगता है कि लिस्ट से बाहर हो सकता है। 666-22-107 is the number and it's time for me to sign off। बड़ा मजा आया सस्पेंस बना के लिस्ट बता के। अब इंशाल्लाह अगले टॉप 10 में मिलूंगा आपसे। आई रियली होप कि आवारा पंटू के गाने आ जाएं, और जब आ जाएंगे तो फिर लिस्ट तो फिर पूरा का पूरा रिफाइन करना ही पड़ेगा। बट फॉर नाउ दिस इज दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ, आपसे ज्यादा चाहूंगा अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मां सलाम।
1: FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद। मेरी पहचान, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा। FM 107 पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और आप हैं मेरे साथ हमारे खासम खास शो मेरी पहचान पर। तो ये बताइए कि आप सबकी सुबह आज कैसी रही? उम्मीद है थोड़ी सुकून भरी रही होगी, लेकिन सच बताइएगा, सुकून कहाँ मिलता है हमें? आज सुबह जब आप उठी होंगी, या जैसे मैं उठती हूँ, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या वो आपकी नींद अच्छी हुई ये होता है, या कुछ और? नींद अच्छी हुई ये तो नहीं होता है कि नहीं? सबसे पहला ख्याल होता है स्कूल का टिफिन, गैस पर रखी चाय, घर के और भी काम, या फिर ऑफिस का काम है। ये सारी लिस्ट इतनी लंबी है कि इसके बारे में सोचते सोचते हमारा खूबसूरत जो वक्त होता है वो निकल जाता है। कतर की ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, कभी कभी दिमाग ना थक जाता है हमारा। राइट नाउ आई नो एग्जैक्टली आप कहाँ हैं। शायद आप अपने बच्चों को वेस्ट बे के किसी स्कूल में ड्रॉप करने के लिए ड्राइव कर रही होंगी, या शायद लुसेल में अपने ऑफिस डेस्क पर बैठकर पहला ईमेल चेक कर रही होंगी, या फिर शायद आप किचन में होंगी, एक कप गरम करक चाय स्टिर कर रही होंगी, अगले 5 कामों की लिस्ट दिमाग में बना रही होंगी। फिलहाल एक लम्हे के लिए रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, और उस इनविजिबल बैकपैक की तरफ देखिए जो आपने पहना हुआ है। हम सब ने पहना है। ये वो बोझ है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर इसका वजन हमें हर पल महसूस होता है। आपने सुना होगा अक्सर लोग पूछते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप वर्किंग वुमन हो, आप दिन भर करती क्या हो? अरे उन्हें कैसे समझाएं कि ये जो बोझ है ये सिर्फ घर के कामों का नहीं है, ये बाहर के कामों का नहीं है, इट्स द मेंटल लोड। और ये वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जिसका कोई ऑफिस नहीं होता, पर इसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है। आपको पता है कि फ्रिज में दूध खत्म होने वाला है, आपको याद है कि अगले हफ्ते स्कूल में क्रेजी हेयर डे है, तो उसके लिए प्रॉप्स कहाँ से आएंगे, आपको मेडिसिंस का पूरा स्केड्यूल याद रहता है, कौन सी गोली कब खानी है, किसको कब देनी है, यहाँ तक कि बच्चों के जूते कब टाइट हो गए और नए कब लेने हैं, इसका रिकॉर्ड तक हमारे दिमाग में होता है। ओ माई डियर, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे हाउस होल्ड का वो हिस्सा है जो कभी भी सोता या खामोश नहीं होता। तो आज हम उस खामोश ताकत को सल्यूट करेंगे जिसके बारे में न जिक्र होता है ना ही कोई बात करता है। हाँ, अक्सर दिन के खत्म होने के बाद जब आप सोफे पर बैठती हैं और सोचती हैं कि मैं इतनी थकी हुई क्यों हूँ, आज तो मैंने बाहर का कोई काम, बड़ा काम किया ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि आपका दिमाग एक प्रोसेसर की तरह लगातार चल रहा है। हर वो छोटी चीज जो हैंडल हो गई, वो इसीलिए क्योंकि आपने उसे हैंडल किया। यू आर द इनविजिबल ग्लू जो कि हर चीज को साथ लेकर चल रही है, और ये थकान जिस्म की नहीं है, ये थकान रूह की, या यू कहे जहन की है। इट्स ओके टू फील टायर्ड, इट्स ओके कि हम कभी कभी बोलें कि आज मेरा दिमाग थक गया है। इसलिए आज मेरी पहचान पर हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने तो अपना बैकपैक आपको दिखा दिया है, अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर, और बताइए कि वो कौन सी एक इनविजिबल चीज है जो अभी इस वक्त आपके दिमाग में चल रही है, वो बात जिसके बारे में घर में किसी और को खबर तक नहीं है, पर आप उसे लेकर परेशान हैं। शेयर योर लोड विद मी, मैं यहाँ हूँ आपके साथ, आपकी बात सुनने के लिए। 6622107 पर अपने नाम के साथ हमसे जरूर शेयर करें, और हम मिलकर इस बोझ को ना थोड़ा हल्का करेंगे। तो कहाँ? यही मेरी पहचान पर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी पहचान सिर्फ आपके कामों से नहीं है, आपकी हिम्मत से भी है। तो बने रहिए, इस बेहतरीन गाने को खास तौर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

वेलकम बैक टू मेरी पहचान ऑन एफएम 107. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. अभी हम बात कर रहे थे उस एबल बैकपैक की जो हम औरतें हर वक्त पहने रखती हैं. अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर. आज की सोच में एक बहुत गहरी बात करते हैं, एक ऐसी गलत फहमी की जो हमने सदियों से पाली हुई है, और वो है हेल्पिंग वर्सेस ओनिंग. हाँ जी, अक्सर जब मैं अपनी सहेलियों से या अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ या कतर में किसी सोशल गैदरिंग में जाती हूँ, तो एक सेंटेंस अक्सर सुनने को मिलता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे हस्बैंड घर में बहुत हेल्प करते हैं. कम ऑन लेडीज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हेल्प, क्या ये सही लफ्ज़ है? जब हम कहती हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं, तो हम अनकॉन्शियसली ये मान लेती हैं कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है और वो तो बस एक एहसान कर रहे हैं. चलिए एक मिसाल मैं आपको देती हूँ. माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं, दोनों शाम को थके हुए वापस आते हैं. हस्बैंड किचन में आता है और कहता है, बताओ मैं क्या हेल्प करूँ, डिनर में क्या बनाऊँ. सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है, कितना केयरिंग है. लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर उन्हें आपसे पूछना पड़ रहा है कि डिनर में क्या बनाना है, अगर उन्हें ये नहीं पता कि फ्रिज में सब्जियां कहाँ है और कहाँ नहीं, या बच्चे को क्या पसंद है, तो मैनेजर अब भी आप ही हैं. उन्होंने प्याज काट दिए, वो टास्क था, पर प्याज काटने का फैसला लेना और ये इंश्योर करना कि बाकी चीजें तैयार हैं, वो ओनिंग है. हेल्पिंग एक टास्क है, पर ओनिंग वो जिम्मेदारी है जो उस काम के बारे में सोचने से आती है कि जब तक आप मैनेजर हैं, आपका दिमाग कभी रेस्ट नहीं कर पाएगा. ये सिर्फ मेरी आपकी कहानी नहीं है. यस, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में जो लेडीज हैं, जो औरतें हैं, मर्दों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा अनपेड केयर वर्क करती हैं. हमारी कम्युनिटी में हमने इसे प्यार का नाम दे दिया है, पर क्या ये प्यार है या सिर्फ एक आदत? हमने मर्दों को एग्जीक्यूटिव बना दिया है और खुद को लेबर और मैनेजर दोनों. उफ, डोंट टेक इट अदरवाइज. हाँ, हम उन्हें शॉपिंग लिस्ट बनाकर देते हैं, उन्हें बताते हैं कि बच्चे की फीस कब भरनी है, उन्हें याद दिलाते हैं कि उनकी अपनी जो मॉम है उनकी दवाइयां कब उन्हें देनी है. ये जो कांस्टेंट डेलीगेशन है ना, उफ, ये बहुत ज्यादा काम हमसे करवा लेता है. और यही वो चीज है जो हमें अंदर से खाली कर देती है, हम टायर्ड हो जाते हैं. और जब भी मैं बात करती हूँ मेरी पहचान में किसी भी एक मुद्दे के बारे में, न जाने क्यों मुझे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में हर एक चीज दिखाई देती है और श्रीदेवी के बड़े खूबसूरत से डायलॉग्स और उनकी सादगी सामने आ जाती है. और एक उनका डायलॉग था कि मदर, ठीक है, शी इज द वन who can take the place of all others, but whose place no one else can take. ठीक है, मतलब ये जब वो बोलती है तो सुनकर लगता है कि मतलब माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन माँ हर किसी की जगह ले सकती है. पहली बार सुनो तो आंखों में आंसू आ जाता है, कितना स्टेटस है ना एक माँ का, है ना. लेकिन मेरी सारी ब्यूटीफुल लेडीज, कभी इसका दूसरा रुख या यूं कहें दूसरा पहलू हमने देखा है? ये सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन यही वो सुपर वुमन मिथ है जो हमें थका देती है. जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता, तो हम हेल्प मांगना बंद कर देते हैं और हम हर चीज खुद परफेक्ट करना चाहते हैं. हम खुद ही करना चाहते हैं परफेक्ट लंच बॉक्स, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट करियर. ये सुपर वुमन का जो ताज है ना, असल में एक बोझ है. इट्स अ ट्रैप जो कि हमें बार बार ये चाहने या यूं कहें ये मांगने से रोकता है जिसकी हमें जरूरत है. तो आज की सोच का निचोड़ ये है कि आपको एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बेटी बनने के लिए सुपर वुमन बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इट्स ओके टू ड्रॉप द केप, इट्स ओके अगर कभी खाना टाइम पर ना बने, इट्स ओके अगर घर थोड़ा बिखरा हुआ हो. भाई इंसान बनिए, ठीक है, फरिश्ते बनने की हम कोशिश ना करें. खुद को इतना ज्यादा मत बर्न कीजिए कि आगे आप चीजें ना कर पाए, क्योंकि जब आप खुद को खो देती है ना, तो आपके परिवार के पास सिर्फ एक थकी हुई मशीन रह जाती है, वो खुश मिजाज माँ नहीं रहती, समझे. तो अपने पार्टनर से हेल्प मत मांगिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को कहिए, ओनरशिप शेयर कीजिए. समझ में आई बात?
वेल आप सुन रहे हैं मेरी पहचान और मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. बस एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुख करेंगे, उसके बाद वापस आके बात करेंगे कि भाई अभी जो मैंने एक सवाल पूछा है आपसे कि वो कौन सी एक चीज़ है जो इनविजिबल है, वो कौन सा लोड है जो आप हर वक्त सोचती रहती हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो आप मुझसे शेयर करेंगी 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ. और अभी बने रहेंगे FM 107 पर, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 पर मैं हूँ आपकी अमिताभ के साथ और आप हैं मेरे साथ शो मेरी पहचान पर। और मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएं वो कौन सा एक इनविजिबल लोड है, वो कौन सी एक बात है जो आपके जहन में 24 घंटे रहती है और इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं। तो चलिए हमारे कुछ मैसेजेस की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर मुझे फरीन का मैसेज आया है और वो कहती है कि अमिता मेरे दिमाग में हर वक्त एक चीज़ चलती रहती है कि क्या मैं अपनी बेटी को सही परवरिश दे पाऊंगी जो मुझे कभी नहीं मिल पाई। घर में सब सोचते हैं कि ना मैं बहुत सख्त माँ हूँ पर अंदर से मैं सिर्फ उसके फ्यूचर के लिए डरती हूँ। देखिए फरीन, बात कुछ ऐसी है कि एक माँ की फिक्र है ना, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी बेटी ज़रूर कामयाब होगी, बस थोड़ा भरोसा रखिए और दूसरों की बातों पर गौर ना फरमाइए, ठीक है। अब मुझे जोया का मैसेज आया है और ये कहती हैं कि मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ पर किसी को खबर नहीं कि मुझे लोनलीनेस महसूस होती है, सबके बीच होकर भी मैं अकेली होती हूँ। जोया, मैं आपको कहूँगी कि कभी कभी खुद से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। शायद आपने औरों के चक्कर में खुद को प्यार करना, खुद को अहमियत देना छोड़ दिया है। याद रखिए, यू नॉट अलोन, मैं आपके साथ हूँ ना। वेल, सीमा का मैसेज आया है एंड शी इज सेइंग कि मेरा इनविजिबल बोझ ये है कि मैं फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे इस उम्र में स्कूल, बस यही कश्मकश चलती रहती है और मैं सोच नहीं पाती। देखो सीमा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो नॉलेज है, इल्म है, हासिल करने की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, सो गो फॉर इट। आप पढ़ सकती हैं एंड आप कर सकती हैं, ठीक है, बस ये भरोसा रखिए। फिर यहाँ पर मारिया का मैसेज है कि, और थोड़ा उनका डिफरेंट मैसेज है, कहती है कि मैं बीमार हूँ पर घर में किसी को बताया नहीं क्योंकि सब मुझ पर डिपेंडेंट है। ओहो, उनका सुकून ना छिन जाए इसीलिए मुस्कुराकर दर्द छुपाती हूँ। आए हाय मारिया, मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल मेरी मम्मी टाइप हो, पता है, मतलब जब से मुझे समझ आई मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया कि भाई देखो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, खाना बाहर से आ जाएगा, टेंशन ना लें, डॉक्टर को हम दिखाएं, दवाई लें, आराम करें, सब कुछ सीख जाएंगे और अगर हमें चीज़ें नहीं आती तो हम सीख लेंगे। ये कह कह के मैंने अपनी मॉम को सम हाउ यू नो अब जाकर थोड़ा सा सेटल किया है। तो मैं आपको कहूँगी मारिया, इट्स वेरी सिंपल, आपको अपना ख्याल रखना होगा, थोड़ा ब्रेव होना होगा लोगों को बताने के लिए और वो भी अपनों को ही बताना है कि भाई मैं आज जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मेरी हालत ख़राब है, बस करके देखिए, सुकून मिलेगा। फिर हिना का मैसेज है, मैं हमेशा परफेक्ट बेटी और बहू बनना चाहती हूँ, इस प्रेशर में मैं भूल गई हूँ कि असली हिना कौन है, मेरी अपनी पसंद नापसंद अब मेरे दिमाग से निकल चुकी है। हिना, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, खुश होना ज़रूरी है, आज थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, ठीक है, बाकी सब होता रहेगा। और फिर नीलोफर का मैसेज है जो कहती है कि मेरे दिमाग में अपने पुराने घर की यादें घूमती हैं, उफ, मैं नए शहर में सेटल तो हूँ पर पुरानी गलियाँ आज भी ख्वाबों में आती हैं, किसी को बताती नहीं क्योंकि सब सोचते हैं मैं यहाँ खुश हूँ। देखो नीलोफर, यादें जो है ना वो हमेशा सुकून देती हैं, उन्हें बोझ मत बनाइए बल्कि उन्हें अपनी मुस्कुराहट की वजह बनाइए और फिर नई यादों को बनाइए ना, किसने रोका है आपको। वेल, हमारी लेडीज, इतने खूबसूरत मैसेजेस आपने जो किए उसका बहुत बहुत शुक्रिया और सच में बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी बातें शेयर की और बताया कि ये हमारा इनविजिबल बोझ है और आप ही की तरह हर किसी का कुछ ना कुछ इनविजिबल बोझ होगा। वैसे मेरा भी इनविजिबल बोझ यही था कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं टीनेजर थी तब से मेरे कबर्ड्स हमेशा सेटल रहे, ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं बड़ी हुई, फैमिली हुई, सारी चीज़ें चेंज होती गई तो कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड्स के अलावा जब मैं अपने कबर्ड्स वगैरह ठीक करती हूँ मेरा कबर्ड थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है, लेकिन अब आके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ कि इट्स ओके कि थोड़ा मेस्ड अप है तो क्या हुआ, चीज़ें तो रखी हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ें ना हमें अपने लिए लेनी पड़ेंगी, कुछ डिसीजंस हमें अपने लिए लेने पड़ेंगे ताकि हम आराम से इत्मीनान से जी सकें और हमारे आस पास के लोग भी हमें देख कर खुश हो सकें और ये खुशी झूठी या दिखावे की ना हो, ये खुशी असलियत की हो, है कि नहीं। चलिए आगे, आज हम जो अपने मेरी पहचान शो पर बातें कर रहे हैं इस पर एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ठीक है? हम सब के साथ ही रोज होती है, दोपहर के 4 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, जब भी मतलब बच्चों की स्कूल बस आ जाती है या शायद आप उन्हें पिक करने जाती हैं, ठीक है? किचन में शाम की चाय की तैयारी हो रही है और अचानक आपको फील होता है कि आपका पेशेंस जो है वो खत्म हो गया है, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता है और आप चिड़चिड़ करने लगती हैं कि भाई मतलब मत पूछो, बात ही मत करो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शाम के 4-5 बजते बजते आपका जो मिजाज है वो अचानक क्यों बदल जाता है? इसे साइंस में कहते हैं डिसीजन फटीग। सुबह से शाम तक आपने हजारों छोटे छोटे फैसले लिए होते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं आपने ये फैसले लिए, दूसरों के लिए लिए। कि टिफिन में क्या जाएगा, बच्चों ने स्वेटर पहना कि नहीं, ऑफिस की मीटिंग्स का क्या होगा, हमारे घर में सामान है कि नहीं लाइक ग्रोसरीज वगैरह, हम अच्छे दिख रहे हैं या हमें कहीं जाना है, उसकी भी तैयारी हमें ही करनी होती है। और कतर की जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, कई बार हमें थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। देखिए, ये हर बार हमारे दिल में आता है कि हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट होनी चाहिए। एक कांस्टेंट प्रेशर हमारे अंदर बना रहता है, बेस्ट स्कूल, बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बेस्ट ऑर्गेनिक फूड, बेस्ट बर्थडे पार्टीज़। उफ़, हम एक ऐसी रेस में हैं जहाँ हम हर किसी की प्लेट भर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी प्लेट ना खाली होते जा रही है। हम सबके लिए अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, बॉस के लिए, सास ससुर के लिए एंड सोसाइटी के लिए, लेकिन कभी अपने आप से पूछा है कि भाई मेरी अपनी हेल्थ का क्या? हमने थकान को एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया है। हमें लगता है कि जितना हम थकेंगे उतनी ही अच्छी हम केयर गिवर हैं। ओ हो हो, कम ऑन लेडीज, यहीं पर हम गलत हैं। ये सिर्फ एहसास या फीलिंग्स नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन यूके की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जो क्रॉनिक मेंटल लोड होता है ना, ये हम उठाते हैं, ये हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स के जो लेवल्स हैं उनको ऊपर नीचे कर देता है, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब ये लेवल हाई हो जाता है तो इसका सीधा असर हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है उस पर पड़ता है और हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। वेल, क्या आपको रात को लेटे लेटे ढेर सारी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो याद आती हैं, ख्याल आते हैं? क्या आपकी धड़कन अचानक से तेज़ होती है, फिर कम होती है, तेज़ होती है, ऐसा होता है? ये सब भाई मेंटल लोड की एग्जाम्पल्स हैं, मेंटल लोड की कहानी है। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने नर्वस सिस्टम को थका रहे हैं। इसे इग्नोर मत कीजिए, ये चिड़चिड़ापन गुस्सा नहीं है, ये आपके शरीर की एक SOS कॉल है। यस, इट्स एन इमरजेंसी कॉल, ठीक है? इसे हमें बैलेंस आउट करना है। तो आज का सबक क्या है, इसे कहीं लिख लीजिए या जहन में याद रखिएगा कि रेस्ट इज नॉट अ रिवॉर्ड फॉर फिनिश्ड वर्क। समझ में आई बात? इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर योर एग्जिस्टेंस। मतलब अगर आप सोचते हैं कि हाय मुझे आराम करना है लेकिन मेरा ये काम छूट जाएगा, इसके चक्कर में आप अपने एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट को कम कर रही हैं। सो डोंट डू दैट, ठीक है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि सारा काम खत्म हो जाए फिर आराम करेंगे, काम खत्म होगा ही नहीं और आराम कभी होगा ही नहीं। सुकून कोई तोहफा नहीं है या कोई और आपको आके देगा, सुकून आपका हक है, तो इसे लीजिए, चाहे 10 मिनट हो, 20 मिनट हो या आधा घंटा हो, ठीक है? लेकिन तब तक एक लंबी सांस लीजिए, जस्ट ब्रीथ एंड प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हम रुक करेंगे और उसके बाद वापस आके अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ ऑन FM 107 पर, दिल से देसी।

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और शो का नाम है हमारे मेरी पहचान. वेल, अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ ना, हो सकता है तो प्लीज उसे आंखें बंद करके सुने. मतलब अगर सिचुएशन आपके लिए इजी है, अगर आप ड्राइव कर रही हैं तो जस्ट अवॉइड इट. एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग की उस टू डू लिस्ट को एक पल के लिए पॉज कर दीजिए. एक सवाल उन सबके लिए जो मुझे सुन रही हैं, हु इज शी? वो लड़की कौन थी मम्मा बनने से पहले? वो लड़की कौन थी किसी के घर की बहू बनने से पहले? कम ऑन, थिंक, गिव मी द आंसर. जरा पीछे मुड़िए, जस्ट टर्न अराउंड. अपने पास्ट के उन पन्नों को पलटिए. याद कीजिए उस लड़की को जो शादी और बच्चों के शोरगुल से पहले कहीं रहती थी. वो लड़की जिसे शायद घंटों तक खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना पसंद था. उसकी अपनी हॉबीज थी, शायद वो पेंटिंग करती थी, शायद वो एक अच्छी एथलीट थी, या शायद उसे सिर्फ पुरानी किताबें पढ़ना पसंद था. ऐसी किताबें जिनका पेरेंटिंग, रेसिपी बुक्स या हाउसहोल्ड मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है. उसके कुछ ऐसे ख्वाब थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, जो आज स्कूल फीस, बच्चों के यूनिट टेस्ट और ग्रोसरी लिस्ट के ढेर के नीचे दब गए हैं. हम इतना आगे निकल गए ना कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें ब्लू रंग पसंद था या रेड. क्यों, सही कह रही हूँ ना? क्योंकि अब हम अक्सर वही रंग पहनते हैं जो बच्चों को पसंद है या हमारे घर वालों को पसंद है. हमने अपनी पसंद को जरूरत के पीछे यूं कुर्बान कर दिया है कि पूछिए मत. वो छुपी हुई मैं, द हिडन मी, अब भी वही है. आप समझती हैं, वो कहीं गई नहीं है. वो आपके ही अंदर एक कोने में बैठी है, आपके इंतजार में. वो इंतजार कर रही है कि कब आप उसे दोबारा पहचानेंगी. तो अपने आप को, अपनी उस छुपी हुई मैं को पहचानिए. जब हम सिर्फ एक केयर टेकर की पहचान चुन लेते हैं ना, तो हम धीरे धीरे अपनी असली शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को खो देते हैं. हम एक इंसान से एक रोल बनकर रह जाते हैं. घर में आवाजें आती हैं, मम्मी मेरे सॉक्स कहाँ है, बेगम खाना कब बनेगा, बहू चश्मा कहाँ रखा है. इन सब सवालों के बीच आपका अपना वजूद एकदम धुंधला सा पड़ गया है. आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाती हैं. प्लीज डोंट माइंड, आज ये बात मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. प्लस मैंने अपने घर में, मैं भी एक जॉइंट फैमिली से हूँ, ये सारी चीजें महसूस की हैं. और लेडीज, यह एक बहुत कड़वा सच सुनाई देता है. जब हम खुद को पूरी तरह भुला देते हैं ना, जब हम अपने आप को एम्प्टी कर देते हैं, तो हम अपने परिवार को भी ना एक डिप्लीटेड वर्जन दे रहे होते हैं, मतलब जो कि खत्म हुआ हुआ है. हम थक जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. तो क्या हमें अपने परिवार को ऐसी लड़की देना है जो उदास हो? हमारी शख्सियत जो इतनी खुश मिजाज है, क्या हमें ऐसे उदास होना चाहिए? आज मैं चाहती हूँ कि आप उस औरत का एक छोटा सा हिस्सा वापस मांग ले. हाँ ना, रिक्लेम हर. चाहे वो कॉर्निश पर 10 मिनट की अकेले वॉक हो, जहाँ आप दरिया की लहरों को देखेंगी, सुकून के पल एंजॉय करेंगी, ना कि ये सोचेंगे कि घर जाकर क्या पकाना है. या फिर आपकी फेवरेट पुरानी बॉलीवुड प्लेलिस्ट जो आप लाउड वॉल्यूम पर सुनना पसंद करती हैं. कम ऑन, यू कैन डू इट. करिए ना, अपने लिए कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए तो करती ही हैं. अपने लिए कीजिए चीजें और फिर देखिए कि आपको आपकी फैमिली में एक अलग तरह की एनर्जी फील होगी. अपनी मुस्कुराहट को ना पहले ढूंढिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. और अब आखिर में एक सवाल आता है कि अमिता, बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये सब सुनने में, लेकिन हम करें तो करें कैसे? बोझ तो है, उठाना तो पड़ेगा, बिल्कुल सही, लेकिन अब और क्या करें जिससे कि हमारी हर चीज बैलेंस हो जाए? चलिए सोचते हैं कि कैसे सॉल्यूशंस निकालें. तो एक है द फेयर प्ले मेथड. कामों को सिर्फ आधा आधा मत बांटिए, ठीक है? टोटल ओनरशिप दीजिए अपने परिवार के हर शख्स को, ताकि जो घर का काम है ना, वो डिवाइड हो सके. और इजीली हर कोई जब हाथ बटाता है अपने घर के कामों में, ना कि आपका, तो अपने आप हर चीज स्मूथ होती है और आप भी एनर्जेटिक रहती हैं. उसके बाद 10 मिनट ऑफ ड्यूटी. हाँ भैया, ये रोल बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है. हाँ, दिन में एक वक्त ऐसा फिक्स कीजिए कि जब आप घर में

है, मतलब हमें नहीं करना कुछ, और कोई हमसे सवाल नहीं पूछेगा, ना कोई फोन कॉल्स होंगे, ना ही मतलब हम कुछ नहीं, जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे 10-15 मिनट के लिए, और इस दौरान कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा ताकि हमारा जो दिमाग का प्रोसेसर है वो कूल डाउन हो सके. और इसके बाद एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है. जैसे कि हमारी अक्सर आदत है कि हम अंदर ना घुटते रहते हैं, हम अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं. किसी ने हमें अगर बुरा भी कह दिया तो हम सुन के ले लेते हैं कि जाने दो, घर का बड़ा शख्स है या जो भी है. सच तो ये है कि अक्सर हम देखें तो और लोग हमारे जो घर के हैं उन्हें वो चीज़ नहीं दिखती कि आप घुट रही हैं. तो आप ना अपने इस बैकपैक को, इस इनविजिबल बैकपैक में ना चीज़ें ना डालते जाएं और बर्डन ना बढ़ाएं. ऐसा करें कि सीधा आप एक्सप्रेस करें, थक गए हैं तो बोलें, किसी की बात बुरी लगी है तो कहें, कहीं नहीं जाना है तो जता दें कि नहीं जाना है. ये बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया. करके देखिए, फिर देखिए कि आपको कितना आराम मिलता है. वेल, मेरी आज की ना सबसे बड़ी टिप है, यू कहें इसे हमेशा याद रखिए, मी टाइम सेल्फिश होना नहीं है. हमारी सोसाइटी ने ना हमें सिखाया ही नहीं है कि भाई एक अच्छा इंसान, एक अच्छी औरत वो है जो अपने लिए भी चीज़ें अच्छे से कर सके, बल्कि ये सिखाया है जो कुर्बानी देगी वही बेस्ट है. लेकिन ये गलत है. तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि अगर आपको ज़िंदगी में बेहतर बनना है, सुकून चाहिए, तो अपने आप को सबसे पहले चुनिए. वैसे इस वक्त जाने का वक्त हो गया है और हमारी जो कॉन्वर्सेशन, हमारी गुफ्तगू खत्म नहीं होने वाली है. आज हमने सिर्फ एक पर्दा उठाया है उस मेंटल लोड से जो हम सब ना उठाए फिरते रहते हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं हैं. अगले हफ्ते मेरी पहचान पर हम एक बहुत ही संजीदा, एक सीरियस कॉन्वर्सेशन लेकर आएंगे और वो होगा ब्रेकिंग द साइलेंस, कल्चरल स्टिग्मा अराउंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ. यस, आज हमने थोड़ा सा इस बारे में जिक्र किया और आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले हफ्ते. तो आप बिल्कुल ना मिस करें हमारा मेरी पहचान शो. वैसे आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकती हैं 666-22-107 पर, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़ सकते हैं हमारे FM 107 के, या फिर आप आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकती हैं. देखिए, ये शो खास तौर से हमारे लिए हमने डिज़ाइन किया है, तो कोई भी बात जो आपको लगता है, जिसका जिक्र नहीं होता है, जिसके बारे में आप बात करना चाहती हैं, उसका सजेशन भी आप मुझ तक पहुंचा सकती हैं. फिलहाल के लिए अब आप मुझे दीजिए इजाजत, इंजॉय कीजिए आपका रेस्ट ऑफ द डे. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास।

0: countdown for liftoff.
1: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा, और आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में जानकर आप थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा क्यूरियस जरूर होंगे। साथियों, आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ रोमानिया के एक शहरी इलाके के करीब, जो कि हरियाली से घिरे हुए धीमे उतरते चढ़ते पहाड़ी दामन में मौजूद है, जहाँ पर मिलते हैं कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग पत्थर जिनको लोकल लोग ट्रोवेंस कहते हैं। इन्हें देखकर पहली नजर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये पत्थर जिंदा हों। कभी आप उन्हें देखें तो वो आपको गोल और स्मूथ नजर आती हैं, और कभी कभी उनकी सतह पर टाइनी सी टेंगल नॉट्स नजर आती हैं। कभी कभी तो लोगों को इन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों ने अपनी बैग पर छोटा बच्चा उठाया हुआ है। लोग कहते हैं ये पत्थर बढ़ते हैं, बारिश के बाद इनकी सतह पर नई परत आ जाती है, जैसे पत्थर ने कुछ वेट गेन कर लिया हो। मगर ये जिंदगी बायोलॉजिकल नहीं, जियोलॉजिकल है। साथियों, ट्रोवेंस असल में सीमेंटेड सैंडस्टोन कॉन्क्रीशंस हैं, यानी रेतीली मिट्टी और छोटे छोटे जर्रात जो जमीन के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर पत्थरी मास बन जाते हैं। वक्त के साथ पानी की रवानी और केमिकल रिएक्शन इनकी सतह पर नई लेयर्स जमा करती रहती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पत्थर पर नई जड़ों वाला पौधा उगाया हो, और इसी प्रोसेस को लोग ग्रोथ समझ लेते हैं। आज के इस एपिसोड में हम रोमानिया के इन लिविंग रॉक्स की साइंस, रिवायात, मकामी कहानियां और फील्ड ऑब्जर्वेशन समझेंगे। आप और मैं मिलकर ये समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सा रेत का ढीला केमिकल दुनिया की एक छोटी सी लेबोरेटरी में तब्दील होकर ऐसे पत्थर बनाता है जो हमें हैरान कर देते हैं। साथियों, रोमानिया जहां कार्पेथियन माउंटेन्स एक बड़े कॉस की शक्ल में मुल्क को घेरे हुए हैं, उन्हीं के सब कार्पेथियंस फुट हिल्स के दरमियान वेलेसिया कंट्री का इलाका आता है। कॉस्टेसी गांव के करीब रोड पर आपको एक छोटा सा जियोलॉजिकल रिजर्व मिलता है, जिसे लोग म्यूजियल त्रोवेंटिलो यानी टॉरवेंट म्यूजियम नेचुरल रिजर्व कहते हैं। ये खुली हवा का म्यूजियम एक ऐसा मकाम है जहां जमीन के ऊपर बिखरे हुए डजंस ऑफ कंक्रीट दिखाई देते हैं, छोटे बड़े गोल, कुछ बिल्कुल बन जैसे स्मूथ और कुछ पर गुठलियां जैसी निकली हुई होती हैं। इस इलाके की बुनियादी मिट्टी पुराने मायोसिन दौर के सैंडी पत्थरों पर मुश्तमिल है। ये वो जमाना था जब यहाँ के क्लाइमेट और पानी ने रेत और चूनों को मिलकर सीमेंटेड लेयर्स बनाई। जमीन के नीचे से गुजरने वाला मिनरल रिच ग्राउंड वाटर जब किसी नुक्ते पर रुकता या धीमा होता तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जमा होना शुरू हो जाता, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके केटल में भी वक्त के साथ साथ स्केल जमा होता जाता है। मगर यहाँ ये जमा होने वाला नक्शा गोल या एलिप्टिकल शक्ल बनाता, और यूं एक नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीशन की शक्ल इख्तियार कर लेता। बारिश, हवा, धूप, तमाम वेदर फैक्टर्स फिर उन पत्थरों को जमीन के रेस्ट से अलग करके ऊपर कर देते हैं। जैसे जैसे ऊपर की मिट्टी बह जाती है, ये पथरीले गोले सबसे पहले जमीन की सतह पर नजर आने लगते हैं। इसीलिए आज आप इन्हें खुली जमीन पर देखते हैं। हालांकि इनकी पैदाइश की कहानी जमीन के नीचे की कीमियाती दुनिया से शुरू होती है। साथियों, आप अगर पहली दफा कॉस्टिस्टी के रिजर्व में जाएं, तो आपको ये पत्थर फोटोजेनिक लगेंगे। धूप पड़ते ही हल्की सी चमक, बरसात के बाद रंग थोड़ा सा गहरा, और कुछ पत्थरों पर तो बिल्कुल सैटेलाइट जैसी छोटी गुठलियां चिपकी हुई होती हैं। लोकल लोगों का ये मानना है कि ये पत्थर जिंदा होते हैं क्योंकि इन पर बडिंग नजर आती है। ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किसी बड़ी सी शय से कोई छोटी सी शय निकल कर आई हो। लोकल लोगों के मुताबिक कुछ रिवायात ये कहती हैं कि बरसात के बाद ये पत्थर बढ़ गए या जरा फूल गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कभी कभी पत्थर हिल भी जाते हैं, यानी अपनी जगह से थोड़ा सा सरक कर दूसरी जगह पर होते हैं। हालांकि इसकी वजह ज्यादातर सॉइल इरोजन या इंसान का इन्हें कहीं ना कहीं हिला देना होता है या कभी स्लोप पर धीमा धीमा सरकना। जियोलॉजिस्ट की नज़र में ये तमाम औरों यानी गोल पत्थरों की कहानियाँ दरअसल एक कीमियाई नशोनुमा की कहानी है। जब मादनियात से भरा हुआ पानी जो कि अक्सर औकात कैल्शियम कार्बोनेट वाला होता है इन पत्थरों की सतह तक पहुंच जाता है तो वहां कार्बोनेट जमा होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दही जमता है। हर बारिश के बाद जब पानी खुश्क हो जाता है तो एक नाजुक सी तह पीछे रह जाती है। सालों और दहाइयों में ये तहें इकट्ठी होकर एक नुमाया उभार की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अगर आप इनमें से किसी पत्थर को क्रॉस सेक्शन से काट कर देखें, जो कि सिर्फ रिसर्च परमिट से मुमकिन होता है, तो इसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग नजर आएगी जो कि बिल्कुल दरख्त की ग्रोथ रिंग की तरह होती है। ये रिंग्स सालाना कैलेंडर नहीं होती लेकिन ये बताती हैं कि ग्रोथ एपिसोडिक यानी वक्फे वक्फे से हुई, यानी जब जब पानी और कार्बोनेट की सप्लाई मिली तब तक नई लेयर बनी। कुछ रिवायतों में इन पत्थरों को नजर से बचाने, घर की हिफाजत या फार्मिंग के लिए खुशहाली लाने की चीज समझा गया। कुछ लोग तो छोटे ट्रोवेंट्स को दरवाजे के करीब रख देते थे कि वो बुरी नजर से महफूज रखेंगे। साथियों आजकल क्योंकि ये इलाका प्रोटेक्टेड है इन्हें उठाना, तोड़ना या घर ले जाना गलत समझा जाता है ताकि ये नेचुरल लेबोरेटरी अपनी असल सूरत हाल में कायम रहे। साथियों ग्रोथ से मुराद कार्बोनेट लेयर्स का जमा होना है जो बरसात और मिनरलाइज्ड पानी की वजह से प्रेसिपिटेट होती रहती हैं। कभी कभी ये ग्रोथ मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में जज की जा सकती है जो कि बहुत लंबी मुद्दतों में होती है। साथियों एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्रोथ कंडीशंस पर डिपेंड करती है पानी का अवेलेबल केमिस्ट्री, फ्लो पाथ्स, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट्स की कॉम्पोजिशन। कुछ कंक्रीशंस मुकामी तौर पर इनएक्टिव भी रहती हैं। अगर सीधी जबान में समझाया जाए तो ट्रोवेंट्स इज इक्वल्स टू कंक्रीशंस यानी रेड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की सेमेंटेशन से बनने वाले गोल या अंडे नुमा सांचे। कॉन्सेंट्रिक लेयर यानी अंदर की हिस्ट्री बुक जो कि बताती है एपिसोडिक ग्रोथ का चैप्टर। बडिंग शेप्स जिससे सरफेस पर लोकलाइज्ड प्रेसिपिटेशन से छोटी गुठलियां नुमा निकल आती हैं, जिसे लोग इन पत्थरों के बच्चे भी कहते हैं। और फिर बात आती है एरोजन्स और एक्सपोजर्स की, यानी ऊपर की मिट्टी हटती गई, कंक्रीशंस जमीन पर नुमाया होते गए। तो साथियों एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, सुबह की हल्की धूप में जब आप रिजर्व के किनारे चल रहे होते हैं तो गीली मिट्टी की खुशबू और घास की मिठास मिलकर एक साफ नम सी हवा बनाती हैं। आपको एक गोल सा टॉरवेंट दिखाई देता है जिसकी सतह पर आपको छोटे छोटे उभार ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने मिट्टी के लड्डू पर उंगली से हल्के से निशान बना दिए हों। करीब झुककर देखने पर आपको रेत के जर्रात, बीच बीच में चूने की हल्की चमक और कैल्साइट की नरम सी झलक नजर आती है और यही वो लम्हा है जब जमीन की कहानी सांस लेती महसूस होती है, जहां केमिस्ट्री और वक्त मिलकर एक ऐसी शक्ल तख्लीक करते हैं जो इंसानी आंख को जिंदा लगती है। चलिए साथियों, अब हम थोड़ा साइंटिफिक नजर से इन टॉरवेंट्स को देखते हैं। ये पत्थर सिर्फ सरफेस पे अजीब नहीं बल्कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हैरत अंगेज है। टॉरवेंट्स मोस्टली सैंड और सीमेंटेड मिनरल्स से बने हुए होते हैं, लेकिन उनका अंदर का कॉम्पोजिशन उनको यूनिक बनाता है। साइंटिस्ट ने लैब टेस्ट और थिन सेक्शन माइक्रोस्कोपी के जरिए उनके अंदर के लेयर्स और रिंग्स को स्टडी किया है। बिल्कुल ऐसे जैसे पेड़ के रिंग्स हमें उनकी एज बताते हैं, वैसे ही टॉरवेंट्स के कॉन्सेंट्रिक लेयर्स उनकी ग्रोथ हिस्ट्री और एनवायरनमेंट के बारे में क्लूज देते हैं। लैब टेस्ट्स ये दिखाते हैं कि ये स्टोन्स मेनली कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने हैं और उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जहाँ से पानी और मिनरल्स इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन उनके ग्रोथ रिंग्स को बनाती है और ये लेयर्स रिकॉर्ड करती हैं क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस का वक्त के साथ बदलना। तो अब सवाल ये है साथियों कि टॉरवेंट्स बढ़ते कैसे हैं भाई? इसका जवाब हाइड्रोकेमिस्ट्री में छुपा है। जब बारिश होती है या ग्राउंड वाटर पत्थरों के पोर से गुजरता है तो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं और फिर प्रेसिपिटेट करते हैं। ये कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन कहलाता है। और साथियों, एक और प्रोसेस है कैपिलरी एक्शन, जहां पानी पत्थर के अंदर छोटे छोटे चैनल से मूव करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और नए लेयर्स क्रिएट करता है। और इस सब में कहीं ना कहीं क्लाइमेट का भी असर होता है। वार्म और वेट सीजन ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं जबकि ड्राई पीरियड्स ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन सालों में टॉरवेंट्स विजिबली बड़े लगने लगते हैं।

साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये एक नेचुरल सीमेंटिंग मशीन है जो सैंड और मिनरल्स को ग्रेजुअली नई लेयर में ट्रांसफॉर्म करता है। साथ ही टॉरेंट्स रोमानिया के लिए यूनिक हैं, लेकिन दुनिया में और भी सिमिलर फिनोमिनास पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोइराकी बोल्डर्स की, जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ये भी राउंडेड कॉन्क्रीशंस हैं, लेकिन उनका साइज और फॉर्मेशन अलग है। ये मोस्टली मड और सिल्ट से बनते हैं और उनका सरफेस स्मूथ और पॉलिश्ड लगता है। और ऐसी ही एक चीज कजाकिस्तान में भी पाई जाती है, जिसे कोरियश कहा जाता है। ये स्टोन्स डेजर्ट्स में स्कैटर्ड हैं और टॉरेंट्स की तरह अनयूजुअल शेप्स और ग्रोथ रिंग्स शो करते हैं। यूएसए में भी उताह कॉन्क्रीशंस पाए जाते हैं। ये ज्यादा हार्ड और डेंस होते हैं और मोस्टली सैंडस्टोन और कैल्साइट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इन सब स्टोन्स का एक कॉमन पॉइंट है मिनरल डिपोजिशन और एनवायरमेंटल इंटरैक्शन, लेकिन हर रीजन का सॉइल क्लाइमेट और ग्राउंड वाटर का बिहेवियर उनकी फॉर्मेशन और ग्रोथ का अलग स्टाइल देता है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरेंट्स के फ्यूचर रिसर्च और उनके साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के बारे में। ये स्टोन्स सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी हैं। उनके ग्रोथ रिंग्स और इंटरनल लेयर्स क्लाइमेट चेंज, सॉइल कॉम्पोजिशन और मिनरल इंटरैक्शंस को समझने के लिए एक नेचुरल रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम इन्हें स्टडी करें तो पलायोक्लाइमिक कंडीशंस का आइडिया मिल सकता है, यानी कि हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले का एनवायरनमेंट कैसा था, हमें ये पता चल सकता है। ये स्टोन्स एक तरह से जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल्स हैं। साथ ही अगर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस के बारे में बात की जाए तो चलिए जरा एडवांस इमेजिनेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, यानी मॉडर्न टूल्स जैसे सिटी स्कैन और 3D एक्सरे टोमोग्राफी, जिनसे टॉरेंट्स के अंदर के स्ट्रक्चर और मिनरल्स डिपोजिशन पैटर्न्स को और क्लियरली स्टडी किया जा सकता है। चाहे तो हम केमिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, इससे उनके बढ़ने की रेट और फैक्टर्स का एग्जैक्ट एस्टिमेशन पॉसिबल है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का असेसमेंट भी हो सकता है। और तो और कंपेरिजन स्टडीज भी हो सकती हैं, जो कि हमें बताएंगी कि डिफरेंट कंट्रीज के लिविंग स्टोन्स जैसे मोइराकी बिल्डर्स और टॉरिश के टॉरवेंट से कंपेरिजन करके फॉर्मेशन मैकेनिज्म और एनवायरमेंटल इफेक्ट समझे जा सकते हैं। साथ ही टॉरवेंट्स रोमानिया के एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज हैं और लोग यहाँ आकर इन स्टोन्स को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स और लोकल अथॉरिटीज ये वार्न करते हैं कि इन्हें टच या मूव करना उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। साथियों, इन जगहों पर कंजर्वेशन मेजरमेंट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिससे ये नेचुरल वंडर्स सेफ रहें और फ्यूचर जेनरेशन के लिए प्रिजर्व रहें। ये स्टोन्स हमें ये भी सिखाते हैं कि नेचर कितनी क्रिएटिव और मिस्टीरियस हो सकती है। एक सिंपल सैंड और मिनरल का कॉम्बिनेशन सदियों के इंटरेक्शन के बाद एक ऑब्जेक्ट को बढ़ाता हुआ और ऑलमोस्ट लिविंग बनाता है। ये सिर्फ जियोलॉजिकल फिनोमेना नहीं, बल्कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर हम टॉरेंट्स को ऑब्जर्व और स्टडी करते हैं तो शायद फ्यूचर में और भी अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ अनकवर कर सकते हैं। हर नई डिस्कवरी हमें नेचर के इंट्रिकेट प्रोसेस को समझने और रिस्पेक्ट करने का मौका देती है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरेंट्स के उन मिस्ट्रीज और पब्लिक फैसिनेशन के बारे में जो प्योरली नेचुरल और साइंटिफिक हैं। रोमानिया के टॉरेंट्स लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के लिए एक यूनिक क्यूरियोसिटी पॉइंट हैं। लोग यहाँ आते हैं, इन स्टोन्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बढ़ने की फिनोमिना से हैरान होते हैं। साथियों, जहाँ तक साइंटिफिक एविडेंस का ताल्लुक है, टॉरेंट्स का ग्रोथ नेचुरल केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से होता है, लेकिन उनकी अजीब शेप्स और ग्रोथ पैटर्न्स ने लोकल्स को इमेजिनेटिव स्टोरीज क्रिएट करने पर मजबूर किया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि स्टोन्स मूव करते हैं या बढ़ते हैं, और ये फैसिनेशन सेंचुरी से चली आ रही है। ये स्टोरीज प्योरली क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं और नेचर के वंडर्स को सेलिब्रेट करती हैं। साथियों, टॉरेंट्स जियोलॉजी और अर्थ साइंसेस को समझने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स फील्ड

ट्रिप्स के लिए यहाँ आते हैं और हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेते हैं। ये स्टोन्स लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो जियोलॉजी, हाइड्रोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करें। रोमानिया के टॉरवेंट्स नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड साइट्स में लोकेटेड हैं, जहां कंजर्वेशन मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। विजिटर इंटरेक्शन कंट्रोल्ड होता है ताकि उनके नेचुरल ग्रोथ और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ये अप्रोच ये डेमोंस्ट्रेट करती है कि ह्यूमंस और नेचर का बैलेंस मेंटेन करना बिल्कुल पॉसिबल है। साथियों, साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट के लिए टॉरवेंट सिर्फ एक नेचुरल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि रिसर्च का गोल्ड माइन है। उनके ग्रोथ पैटर्न्स, मिनरल कॉम्पोजिशन और एनवायरमेंटल इंटरैक्शन हमेशा नए क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस रेज करते हैं। ये स्टोन्स हमें ये सिखाते हैं कि अर्थ के सिंपल एलिमेंट्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक फिनोमेना क्रिएट कर सकते हैं, जो सेंचुरीज तक स्टडी और ऑब्जर्वेशंस के लायक होते हैं। साथियों, टॉरवेंट्स की यूनिकनेस और उनकी नेचुरल ग्रोथ के फिनोमेना लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनकी स्टडी से एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने का मौका मिलता है। ये स्टोन्स हमें क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाते हैं और ये इस बात का सबूत है कि नेचर में अभी भी भाई बहुत कुछ है ऐसा जिसको हमें अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं टॉरवेंस के फ्यूचर और उनके कंजर्वेशन के बारे में। ये स्टोन्स सिर्फ एक नेचुरल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि जियोलॉजिकल हेरिटेज का पार्ट हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर केयर ना करें तो उनकी यूनिक ग्रोथ पैटर्न्स और साइंटिफिक वैल्यू फ्यूचर जनरेशंस के लिए लूज हो सकती है। रोमानिया के टॉरवेंस अब ऑफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया में इंक्लूड हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनके आसपास कंस्ट्रक्शन या माइनिंग एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। ये इन स्टोन्स को ह्यूमन इंटरेक्शन से बचाता है। और तो और, यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्ट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि स्टोन्स को टच या मूव ना करें। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन और फोटोग्राफी अलाउड है। गाइडेड टूर्स और एजुकेशनल पैनल्स के जरिए लोगों को ये एक्सप्लेन किया जाता है कि उन पत्थरों का बढ़ना नेचुरल केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से होता है और किसी भी डिस्टर्बेंस से ये प्रोसेस रुक सकता है। साथियों, साइंटिस्ट्स और यूनिवर्सिटीज के बीच कोलैबोरेशन प्रमोट किया जा रहा है ताकि टॉरवेंट्स के ग्रोथ रेट, मिनरल कॉम्पोजिशन और एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस का डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट हो सके। इससे स्टोन्स की लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और मॉनिटरिंग पॉसिबल है। साथियों, टॉरवेंट्स सिर्फ एक लोकल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि ग्लोबल जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी वैल्यूएबल हैं। इन स्टोन्स को स्टडी करके क्लाइमेट चेंज, सॉइल कॉम्पोजिशन और हाइड्रोकेमिकल प्रोसेस का आइडिया मिलता है। फ्यूचर रिसर्च में इन्हें मुख्तलिफ कंपेरिजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ग्लोबल जियोलॉजिकल पैटर्न्स और मिनरल फॉर्मेशन प्रोसेसेस को समझा जा सके। साथियों, इनके मुतालिक पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। इनकी कंजर्वेशन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पब्लिक अवेयरनेस है। लोकल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज यहाँ फील्ड ट्रिप्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स और विजिटर्स हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस करते हैं। ये अप्रोच टॉरवेंट्स को सिर्फ नेचुरल वंडर नहीं बल्कि एजुकेशनल टूल भी बनाता है। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन की, तो भाई क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंज का टॉरवेंट्स पे डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। साइंटिस्ट्स रेकमेंड करते हैं कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और केमिकल एनालिसिस कंडक्ट की जाए ताकि उनकी ग्रोथ और इंटीग्रिटी पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझा जा सके। इससे फ्यूचर जनरेशन भी इन लिविंग रॉक्स की ब्यूटी और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को एंजॉय और स्टडी कर सकेगी। साथियों, टॉरवेंट्स रोमानिया की एक यूनिक नेचुरल ट्रेजर हैं। उनका स्टडी और प्रिजर्वेशन हमें जियोलॉजी, मिनरोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस का डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। ये स्टोन्स नेचर की क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है और उनकी मिस्ट्रीज हमेशा क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। टॉरवेंट्स रोमानिया के लिए एक लिविंग नेचुरल वंडर हैं। उनका ग्रोथ, स्ट्रक्चर और इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ हमें दिखाता है कि जियोलॉजी सिर्फ रॉक्स की स्टडी नहीं बल्कि डायनेमिक और एवर इवॉल्विंग सिस्टम है। ये स्टोन्स क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। और साथियों, इसी के साथ हमारी जर्नी यहीं पे खत्म होती है, यानी स्टोन्स दैट ग्रो। रोमानिया के मिस्टीरियस लिविंग रॉक्स का फैसिनेटिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए। साथियों, नेचर के हर कॉर्नर में अभी भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी को चैलेंज करते हैं। साथियों, रोमानिया की ये मिस्टीरियस लिविंग रॉक्स, जिनको लोकल लोग टॉरवेंट्स भी कहते हैं, सिर्फ एक जियोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि जिंदगी और वक्त के

0: बेहतरीन सबूत भी हैं। ये पत्थर ना सिर्फ देखने में इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि इनके अंदर छुपी केमिस्ट्री और नेचुरल प्रोसेसेस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे हमने ये जाना कि इनका वजूद किसी भी आम पत्थर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता सालों और दहाइयों का सफर करते हैं, अपनी शक्ल और साइज को बढ़ाते रहते हैं। इस प्रोसेस को समझना इंसानी क्यूरियोसिटी और साइंस दोनों के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देता है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि टॉरवेंस का वजूद मिनरलाइज्ड वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट के इंटरप्ले का नतीजा होता है। जब बारिश का पानी इन पर पड़ता है तो ये केमिकल्स सैचुरेट होते हैं और छोटी छोटी लेयर्स बनाते हैं, यानी बिल्कुल दही जमाने के तरीके की तरह। हर बारिश के बाद ये लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता जमा होती हैं और वक्त के साथ साथ ये लेयर्स इतनी थिक और सॉलिड हो जाती हैं कि इंसानी आंख को ये एक जिंदा शय लगने लगती हैं। इस फिनोमिना को देखकर ये समझ आता है कि नेचर का पेशेंस और कंसिस्टेंसी कितना पावरफुल है। एक प्रोसेस जो सालों तक चलता है और आखिरकार हमें एक ग्रोइंग स्टोन के रूप में नजर आता है। साथियों, टॉरवेंट्स का ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ उनकी ग्रोथ तक महदूद नहीं होता। उनकी सरफेस पर छोटे छोटे उभार, रेत की जर्रात और हल्की चमक वाले कैल्साइट के पार्टिकल्स इन्हें एस्थेटिक तौर पर भी बहुत दिलचस्प बनाते हैं। जब सुबह की हल्की धूप इन पर पड़ती है तो ये पत्थर जिंदा लगते हैं, यानी एक तरह की नेचुरल स्कल्पचर जो नेचर और टाइम के मिलने का सबूत है। ये रॉक्स हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अर्थ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, जो कि अक्सर हमारे लिए इनविजिबल होते हैं, कितने गहरे और मीनिंगफुल रिजल्ट्स ला सकते हैं। साथियों, इंसानी पर्सपेक्टिव से ये टॉरवेंट्स सिर्फ रॉक्स नहीं बल्कि एक स्टोरी कहते हैं। टाइम, केमिस्ट्री और पेशेंस की स्टोरी। ये हमें सिखाते हैं कि हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है और ग्रोथ हमेशा इंस्टेंटली नहीं होती। ये रॉक्स एक मेटाफॉर भी हैं इंसानी जिंदगी के लिए। जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, वैसे ही इंसानी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस भी वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं। आखिर में रोमानिया के ये मिस्टीरियस लिविंग स्टोन्स हमें नेचर की क्रिएटिविटी और पावर का एहसास दिलाते हैं। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम पेशेंस और ऑब्जर्वेशन के साथ दुनिया को देखें और हर छोटी चीज में भी ग्रोथ और लाइफ के सबूत तलाश करें। टॉरवेंट्स सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर नहीं बल्कि जिंदगी और वक्त के नेचुरल लेसन भी हैं, जो हमेशा हमें ये याद दिलाते रहेंगे कि लर्निंग और ग्रोथ कभी नहीं रुकती, चाहे वो रॉक्स हों या इंसानी जिंदगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराज 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराज ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है मेत्राज 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो,
3: and he's hooked that away. That's four runs.
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
5: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Check.

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अहमद अलादीन के बारे में। अहमद अलादीन कतर के उभरते हुए फुटबॉल सितारों में से एक हैं, जो अपनी रफ्तार, ड्रिबलिंग और अटैकिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। अहमद अलादीन कतर के वेरियस एज ग्रुप्स को क्रॉस करते करते आज वो सीनियर टीम के एक अहम मेंबर हैं। उन्होंने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और लगातार मेहनत के जरिए प्रोफेशनल सतह तक अपना सफर तय किया। विंगर के तौर पर वो मैदान में दोनों किनारों से खतरनाक हमले करने की सलाहियत रखते हैं और अपनी टीम के लिए स्कोरिंग चांसेस पैदा करते हैं। अहमद की सबसे बड़ी खूबी उनकी स्पीड और डिफेंडर्स को वन ऑन वन सिचुएशंस में बीट करने की सलाहियत है। अच्छा, वो तेज काउंटर अटैक्स में भी अहम किरदार अदा करते हैं और अपनी एक्यूरेट क्रॉसिंग और फिनिशिंग से मैच का रुख तब्दील कर सकते हैं। क्लब फुटबॉल के साथ साथ उन्होंने कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी भी की और मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स मैचेस में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। यंग फुटबॉलर्स के लिए अहमद एक मिसाल है कि मेहनत, डिसिप्लिन और मुसलसल प्रैक्टिस से बुलंद मकाम हासिल किया जा सकता है। उनका जज्बा और परफॉर्मेंस कतर में फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है। आने वाले सालों में भी उनसे मजीद बेहतरीन खेल और यादगार परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के

0: लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है वैक्सीनेशन की अहमियत और वैक्सीनेशन कैसे बीमारियों से हमारी हिफाजत करती है। वैक्सीन जो जदीद तिब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमें मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। हमारे जिस्म में एक कुदरती दिफाही निज़ाम मौजूद है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जब वायरस या बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये निज़ाम उन जरासीम के खिलाफ लड़ता है। वैक्सीन में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का कमज़ोर और गैर फाल या बेजरर हिस्सा शामिल किया होता है और जब ये जिस्म में दाखिल किया जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसे पहचानता है और इसके खिलाफ जो दिफाई कुव्वत है वो पैदा करना सीख लेता है, बगैर इसके कि कोई इंसान बीमार हो उस बीमारी की वजह से। इस अमल के नतीजे में जिस्म में बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और बाद में अगर असल बीमारी का जो जरासीम है वो जिस्म में दाखिल हो तो फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है फौरी तौर पर उसका मुकाबला करता है और बीमारी को संगीन होने से रोकता है। वैक्सीन खास तौर पर शीरखार बच्चों और कम उम्र बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं होता। वैक्सीन सिर्फ एक फर्द को ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जब ज्यादा अफराद वैक्सीन लगवाते हैं तो बीमारियों के फैलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। कुछ अफराद वैक्सीन के बारे में बहुत से खदशात रखते हैं लेकिन हकीकत ये है कि वैक्सीन इस्तेमाल से पहले सख्त साइंसी जांच और तहकीक के मराहल से गुजरती है ताकि उनकी हिफाजत और को और ज्यादा मौसर और यकीनी बनाया जा सके। वैक्सीन के बाद बाजू में कुछ हल्का दर्द हो सकता है, सूजन या फिर मामूली बुखार हो सकता है, लेकिन ये अलामतें बिल्कुल आरजी हैं।

0: और बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं। याद रखिए कि बीमारियों के खतरात वैक्सीन के मामूली और वक्ती असरात से कहीं ज़्यादा संगीन होते हैं। अपने डॉक्टर या हेल्थ सेंटर से राबता कीजिए और यकीन दहानी करें कि आप और आपके अहल खाना की तमाम ज़रूरी वैक्सीन जो हैं वो मुकम्मल हैं। सेहतमंद रहिए और वैक्सीनेशन के जरिए अपनी और अपने खानदान की हिफाजत कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो मिलकर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। भाई देखिए, आज का टॉपिक शायद सुनकर आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो बस इतनी सी बात है और क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कभी कभी सबसे छोटी से छोटी आदत ही सबसे बड़ा असर छोड़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग वाटर वाइल ब्रशिंग, यानी दांत साफ करते हुए मेहरबानी करके पानी बचाएं। हम सब दिन भर में कम से कम दो बार या एक बार तो ब्रश करते ही करते हैं, ये हमारी रूटीन का कॉमन सा हिस्सा है। ये रूटीन इतनी कॉमन है कि हम इस पर कभी गौर ही नहीं करते, कोई जरूरत ही नहीं है गौर करने की। देखिए, ब्रश हाथ में आता है, टूथपेस्ट हम उसके ऊपर लगाते हैं और बिना सोचे समझे क्या होता है, कभी कभी टैप भी ऑन रह जाता है। फिर दो मिनट तक हम जो है वो टीथ ब्रश करते रहते हैं, अपने दांत ब्रश करते रहते हैं, पानी बेइंतहा चलता रहता है टैप में और हम ये समझते हैं कि बस थोड़ा सा ही तो टाइम हुआ है, थोड़ा सा ही तो पानी गया है, या कभी कभी तो पानी के ऊपर तवज्जो भी नहीं जा रही होती जो रनिंग टैप वाटर चल रहा होता है। लेकिन इको स्विच हमें ये सिखाता है कि हर रोज एक रूटीन में छुपा हुआ वेस्ट ही असली चैलेंज होता है। जब रोजाना की छोटी छोटी आदतें बदली जाती हैं ना, तभी दुनिया बदलती है। चलिए साथियों, एक सीन इमेजिन करते हैं, ठीक है? ये मेरे ख्याल से सबकी डेली रूटीन होती होगी। सुबह 6:45 बज रहे होते हैं, हम सब जो है ना वो अलार्म बड़ी मुश्किल से बंद करते हुए उठते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, किसी ने अपनी ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, किसी की ऑनलाइन क्लास होती है। होता क्या है, बाथरूम में ब्रश चल रहा होता है, बाथरूम में हम ब्रश करना शुरू करते हैं, लेकिन साथ साथ मोबाइल नोटिफिकेशंस भी चेक कर रहे होते हैं, कपड़े भी सेलेक्ट हो रहे होते हैं और दिमाग भी हमारा पूरे दिन भर के प्लान्स ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है साथ साथ। और इस पूरे वक्त में पता है क्या होता है, वही काम होता है जो हम रोज कर रहे होते हैं। सुबह उठ के जब ब्रश करते हैं तो टैब ऑन करते हैं, पानी का टैब ऑन करते हैं, तो भाई उससे क्या होता है, टैब खुला रहता है। कभी किसी ने उस बहते हुए पानी की आवाज को नोटिस ही नहीं किया, वो बस बहता रहता है और हर सेकंड के साथ लीटर्स के हिसाब से भाई पानी ड्रेनेज में जा रहा होता है। अब जरा सोचिए, अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो हर शख्स सिर्फ ब्रशिंग के दौरान ही टैप खुला छोड़ देता है, तो रोजाना तकरीबन 100 लीटर पानी से ज्यादा तो वेस्ट हो ही जाता है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पानी का ज्यादा हिस्सा हम यूज कम करते हैं और वेस्ट ज्यादा करते हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा थिंक डिफरेंटली करते हैं ना। देखिए, अगर पानी की जगह पैसा बह रहा हो, थोड़ा सोचें, कुछ आपका माइंडसेट फ्लिप करते हैं। पानी की जगह अगर पैसा बह रहा होता तो एक छोटा सा सवाल है, पानी की जगह अगर पैसा बह रहा होता, अगर वॉश बेसिन के टैप से पानी की जगह पैसा बह रहा होता, मान लीजिए हर सेकंड ₹1 या $1 ड्रेन में जा रहा होता, तो क्या हम टैप इतनी देर तक खुला छोड़ देते? बिल्कुल नहीं ना, हम फौरन उस टैप को बंद कर देते भाई। लेकिन जब पानी बहता है ना तो हमें उसकी वैल्यू का कोई एहसास ही नहीं होता, हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट सी चीज है, ना कोई आवाज करती है ना कोई शिकायत करती है। लेकिन याद रखिए, वाटर बिल सिर्फ पैसों का नहीं होता, एनवायरमेंट का भी होता है। साथियों, अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। देखें, एक रनिंग टैब एक मिनट में तकरीबन 6 से 10 लीटर पानी वेस्ट कर सकता है। अगर ब्रशिंग के दौरान 2 मिनट के दौरान टैप खुला रखा जाए तो लगभग 10 से 20 लीटर पानी भी जा सकता है। अच्छा, अगर एक शख्स सिर्फ ब्रश के वक्त टैप बंद करता है या अपने आप को टैप बंद करने की आदत देता है तो वो साल भर में हजारों लीटर पानी बचा सकता है। और दुनिया में आज भी 2 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं है, यानी जिस पानी को हम बिना सोचे समझे ड्रेन में भेज रहे होते हैं ना, दुनिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं है। जरा सोचिए, पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो जाता है हमारा अगर हम इसे पर ध्यान दें तो। देखें, अक्सर हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि भाई पानी वेस्ट हो गया, लेकिन असल कहानी तो उससे भी ज्यादा बड़ी होती है भाई। देखिए, हर ड्रॉप जो हमारे घर तक पहुंचता है उसके पीछे पंपिंग स्टेशंस होते हैं। फिल्ट्राइजेशन होती है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है। यानी जब हम पानी वेस्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ पानी वेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पानी को ट्रीट और ट्रांसपोर्ट करने वाली एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे होते हैं। और हमारा इको स्विच इसी चेन रिएक्शन को रोकता है। एक टैप बंद करना सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, बल्कि पूरी सप्लाई चेन के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन होता है। देखें, आपके घर का इको चैलेंज एक मैं आपको देती हूँ। आज एक छोटा सा फैमिली चैलेंज ट्राई करें। देखिए, कल सुबह से ना घर के हर मेंबर को सिर्फ एक काम करना है, ब्रश करते वक्त टैप को बंद रखना है। दिन के एंड पर देखिएगा कि कितनी दफा किसने किसको याद दिलाया कि टैप बंद रखो। हो सकता है बच्चे पेरेंट्स को रिमाइंड करा रहे हों, हो सकता है पेरेंट्स बच्चों को रिमाइंड करा रहे हों, और आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंज एक हैबिट बन जाए। देखिए, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करने के लिए हमेशा बड़ी कैंपिंग की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक फैमिली चैलेंज ही काफी होता है। साथियों, इसी के साथ आपको अब मैं बात कर लेती हूँ, आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ प्रैक्टिकल इको स्विच टिप्स। देखिए, सबसे पहली टिप तो ये है कि ब्रश करते वक्त टैप को सिर्फ उस वक्त ऑन करें जब ब्रश गीला करना हो या उसे साफ करना हो। दूसरी बात ये कि गार्गल करने के लिए या मुंह साफ करने के लिए आप बजाय इसके कि आप रनिंग टैप वाटर खोल के खड़े हो जाए, आप एक कप एक ग्लास इस्तेमाल करें, इससे पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तीसरी बात ये कि अगर मुमकिन हो तो लो फ्लो टैप्स इस्तेमाल करें, यानी पानी का प्रेशर मेंटेन रखते हैं वो टैप्स, लेकिन कंजम्पशन कम करते हैं पानी की। चौथी बात ये, बच्चों को, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये हैबिट सिखाएं कि ब्रश करते हुए पानी का टैप बंद रखें। जो आदतें बचपन में इंसान सीखता है ना साथियों, वो जिंदगी भर साथ रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉश बेसिन के पास एक छोटा सा स्टिकी नोट लगा दें, टैप ऑफ व्हाइल ब्रशिंग। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर ही आदत बदलने के लिए काफी होता है साथियों। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की गई है कि जब घर का एक मेंबर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैबिट अडॉप्ट करता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता घर के बाकी लोग भी उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कल्चर बनता है, पहले एक शख्स टैप बंद करता है, फिर पूरा घर, फिर बच्चे स्कूल में ये हैबिट अपनाते हैं, और फिर बाकी दोस्त भी आपसे ये चीज सीखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात पूरी कम्युनिटी में फैलती है। इसीलिए भाई, इको स्विच सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं करता, इको स्विच पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की भी बात करता है। साथियों, आज का इको स्विच सिर्फ इतना सा है, अगली बार जब आप ब्रश करें टैप को कंटिन्यूसली चलने ना दें, सिर्फ जरूरत के वक्त टैप को ओपन करें। इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सफा, और आप सुन रहे थे FM 107 पर इको स्विच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट के साथ, जो हमारी जिंदगी भी बेहतर बनाएगी और हमारे प्लेनेट को भी हमारे लिए बेहतर बनाएगी। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

लाइफ सेव करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ऐसा माना जा रहा है. वहीं अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की तो देखिए AI गवर्न सिटीज में सिक्योरिटी भी एडवांस्ड होगी. स्मार्ट सर्वेलेंस होंगे, शहर में कैमरास होंगे जो फेसेस और बिहेवियर को एनालाइज करेंगे. अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो सिस्टम फौरन अलर्ट ऑटोमेटिकली भेज देगा. वहीं AI डेटा एनालाइज करके प्रिडिक्ट करेगा कि किस एरिया में क्राइम का चांस ज्यादा है. पुलिस वहां पहले से डिप्लॉयमेंट कर सकती है, ये कितना अच्छा हो जाएगा. वहीं ऑटोमेटेड पॉलिसिंग भी होगी. कुछ केसेस में रोबोट्स या फिर ड्रोन्स भी यूज होंगे जो एरिया को मॉनिटर करेंगे और पुलिस को रिपोर्ट करेंगे. ये सिस्टम पब्लिक सेफ्टी को इम्प्रूव

0: जो है वो चौंका रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम इन सारी चीजों के आदि हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे, है ना। अपने आप में कितनी बड़ी बात। वही अभी मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। थोड़ा सा आप भी वक्त लीजिए, सोचिए समझिए, इन सारी चीजों को जो है वो एब्जॉर्व कीजिए। कल जब वापस आऊंगी तो इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगी। कल मैं बात करूंगी अर्बन मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर। इस पर भी बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस तरह से AI जो है वो सिर्फ ट्रैफिक या फिर हॉस्पिटल्स तक महदूद रहेगी, पूरे शहर को मैनेज करेगी। कल इसी टॉपिक पे बात होगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: FM 107
3: दिल से देसी।

Late Night Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है. अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है. मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के

वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुंच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए जहन्नम की आग है, न उनका किस्सा पाक कर दिया जाएगा कि मर जाएं, और न उनके लिए जहन्नम के अजाब में कोई कमी की जाएगी। इस तरह हम बदला देते हैं हर उस शख्स को जो कुफ्र करने वाला हो। वो वहां चीख चीख कर कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें यहां से निकाल ले ताकि हम नेक अमल करें उन आमाल से मुख्तलिफ जो पहले करते रहे थे। उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी जिसमें कोई सबक लेना चाहता तो सबक ले सकता था, और तुम्हारे पास मुतनब्बेह करने वाला भी आ चुका था। अब मजा चखो, जालिमों का यहां कोई मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की हर पोशीदा चीज से वाकिफ है, वो तो सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है। अब जो कोई कुफर करता है उसके कुफर का वबाल उसी पर है, और काफिरों को उनका कुफर इसके सिवा कोई तरक्की नहीं देता कि उनके रब का गजब उन पर ज्यादा से ज्यादा भड़कता चला जाता है। काफिरों के लिए खसारे में इजाफे के सिवा कोई तरक्की नहीं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो? मुझे बताओ, उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी क्या शिरकत है? अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो, क्या हमने इन्हें कोई तहरीर लिखकर दी है जिसकी बिना पर ये अपने शिर्क के लिए कोई साफ सनद रखते हो? नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और जमीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फैसलाए आजाब के मुस्तहक हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वो ठोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। इनके लिए यकसां है तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, ये न मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बे देखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मगफिरत और अजरे करीम की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, जो कुछ अफाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब्त कर रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनके तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा, हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा, तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा, हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे, हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संगसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया, तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो।

हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आए। उन सब को एक रोज हमारे सामने हाजिर किया जाना है।

चांद जमीन एक निशानी है, हमने उसको जिंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये उससे फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो जात जिसने जुमला अकसाम के जोड़े पैदा किए, खा वो जमीन की नबातात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौए इंसानी में से या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं। इनके लिए एक और निशानी रात है, हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। और चांद, उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहां तक कि उनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख की मानिंद रह जाता है। न सूरज के बस में यह है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया और फिर उनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये न बचाए जा सके, बस हमारी रहमत ही है जो इन्हें पार लगाती और एक वक्त खास तक जिंदगी से मुतमत्ते होने का मौका देती है। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयत भी आती है ये उसकी तरफ इल्तिफात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिज्क तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफर किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो।

وحفظا من كل شيطان مارد.